0: सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुंदर बोले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

0: रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रोपाई करें, और आगे के लिए

0: काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहाँ पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहाँ पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है

0: 0345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: अरे यार फिर पिट गया, बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?

0: आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
4: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अर्का निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
2: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें।

0: नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती है। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी,

0: अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है, चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
1: मतलब अब एआई बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमियों के
0: आम आदमी के आसपास आ चुका है। गूगल का जो एआई स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं, तो एआई जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए एआई नया है तो उनके बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, एआई जॉब खा जाएगा, एआई हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई, टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के, ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो एआई इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि एआई को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन ना समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
0: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है एआई से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम एआई की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें, तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा

0: रहा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है, उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से यह तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए, कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, मतलब और काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल संस्मरण लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए, तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते

0: हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि AI की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब AI की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें AI की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और AI और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि AI से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी AI आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में AI इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह

0: रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टीलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टीलेज में 20 की बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, चूँकि बाजार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पे होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहां पर भी इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियाँ भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं,

0: नई नई खेती, इस सब चीजों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की जरूरत है। तो किसान भाई, इस तरह के जो खेती है उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप, जरूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए, एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जब 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहां पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा, बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहां 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था। तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया, वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया। तो क्या हुआ, वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो, लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। एआई जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने एआई से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से एआई की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने

0: और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
9: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
9: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
10: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
4: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। किसान भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रमुख दलहनी फसल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं राजमा के बारे में। राजमा की खेती कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है, सब कुछ जानेंगे हम। हमारे

0: इस बारे में बात करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उमा।
0: मैम सबसे पहला सवाल और बहुत ही बेसिक सा सवाल कि राजमा क्या है और इसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल क्यों माना जाता है?
1: जी, राजमा देखिए एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसकी उपज क्षमता चना और मटर से अधिक होती है। यह पोषण और समृद्ध स्रोत होता है और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर ये विशेष रूप से लोकप्रिय दलहनी फसल है। इसके सूखे दाने दाल के रूप में तथा हरी फलियां सब्जियों के रूप में बहुत उपयोगी होती हैं और आजकल तो मतलब ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है।
0: तो मैम राजमा के कुछ पोषण मूल्य भी हैं और इनकी उपयोगिता के बारे में भी बता दीजिए।
1: राजमा केवल स्वादिष्ट भोजन ही नहीं बल्कि पोषण से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक फसल है। इसमें लगभग 23% प्रोटीन और 60% कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन का स्रोत होता है। और अगर बात करें इसके 100 ग्राम दानों की तो इसके 100 ग्राम दानों में लगभग आपको 260 मिलीग्राम कैल्शियम, 410 मिलीग्राम फॉस्फोरस और लगभग 6 मिलीग्राम आयरन भी प्राप्त होता है जो शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में बड़ा उपयोगी है। और स्वास्थ्य की दृष्टि में जैसे राजमा हृदय रोग, कब्ज, ब्लड शुगर, एनीमिया जैसी समस्याओं में बहुत लाभकारी है। और भारतीय खान पान में तो खासकर उत्तर भारत में राजमा चावल बड़ा लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है और साथ ही साथ इसे दालों, सब्जियों और अन्य जो है अनाजों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है।
0: मैम राजमा के कृषि और आर्थिक महत्व के बारे में भी कुछ बता दीजिए।
1: जी, अब कृषि की महत्ता की बात करें तो राजमा कम लागत में अच्छी कीमत देने वाला एक लाभकारी फसल है। इसे फसल चक्र में शामिल करने में भूमि की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसे पहाड़ी, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसे मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मक्का के साथ जो है अंतर फसल के रूप में लगाया जाता है जिसमें कि एक पंक्ति मक्का और दो पंक्ति राजमा की तरह बुआई की जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसे आलू और सरसों की कटाई के बाद वसंत ऋतु में बोया जाता है। और अगर आर्थिक महत्ता की बात करें तो राजमा किसानों को कम निवेश में अधिक लाभ देती है और पोषण, कृषि तथा सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा भी है राजमा। और अगेती आलू के साथ इसे 2:2 या 2:3 के रूप में अंतर फसल के रूप में ये लगाया जाता है।
0: तो अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि राजमा की खेती कैसे होती है और उसके लिए कौन कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, कौन कौन सी मृदा उपयुक्त होती है?
1: जी, राजमा ठंडे और शुष्क मौसम में अच्छी तरह उगती है। इसके लिए आदर्श जो तापमान होना चाहिए वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि इसके अंकुरण के लिए जो तापमान होना चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये इसके लिए जो है फसल पाला या जल जमाव या अत्यधिक गर्मी में जो ये फसल है बहुत संवेदनशील है, तो इसका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी की बात करें तो राजमा बलुई, दोमट से लेकर के चिकनी मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली अगर दोमट मिट्टी है तो इसका जो है बहुत अच्छी इसकी खेती होती है उस तरह की मिट्टी में।
0: मैम हमने जलवायु के बारे में जान लिया, मिट्टी के बारे में जान लिया, अब ये जानना चाहेंगे कि बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है और इसके लिए बीज दर कितना रखना चाहिए?
1: देखिए राजमा को जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि राजमा को मोस्टली इसको पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसे खरीफ के मौसम में लगाते हैं और उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे रबी के मौसम में लगाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई जो करते हैं वो जून के अंत से जुलाई के पहले सप्ताह तक होती है, जबकि उत्तर

0: बेहतर होता है और बीज की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है वो बढ़ जाती है। और बीज को मतलब राजमा के बीज को हल्की नमी देकर ही बोने से उपज बहुत अच्छी मिलती है, तो हल्की नमी होनी चाहिए बीज में।
1: तो मैम राजमा की बुआई किस विधि से की जाती है?
0: जी, राजमा के बीज देखिए कठोर होते हैं, इसलिए खेत की जो है अच्छी जो तैयारी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और खरीफ की फसल की कटाई के बाद खेत की जुताई 2 से 3 बार कर पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। और रबी में जो है इसमें जो पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है वो होना चाहिए 40 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी रबी मौसम में वो होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसकी जो खेती है हमारे यहाँ रबी में होती है, या उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसकी खेती रबी में होती है, तो वहाँ पर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और बीज की जो गहराई होनी चाहिए वो 6 से 8 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं।
1: मैम अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजमा में उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: राजमा एक दलहनी फसल है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उमा कि दलहनी फसल में एक प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, लेकिन राजमा उस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें उसमें उर्वरक देने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो प्रति हेक्टेयर उसके लिए हम 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद डालें, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता बढ़ती है। और इसके साथ साथ 100 से 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश दें। और नाइट्रोजन को जो है वो आधी मात्रा उसको बुआई के समय दें और बाकी जो है उसकी मात्रा सिंचाई के बाद देनी चाहिए। और अगर मिट्टी में जो है जिंक की कमी है तो फिर जिंक या सल्फर की कमी है तो बुआई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम सल्फर डालना बहुत लाभकारी होता है।
1: मैम अब सिंचाई की बात करते हैं, तो मैम राजमा में सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा अर्ध शुष्क फसल है, इसलिए अधिक पानी की ज़रूरत तो नहीं होती है इसमें। अच्छी उपज के लिए 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त है, और पहली सिंचाई बुआई से पहले करें ताकि कठोर जो बीज है वो अंकुरण उनका अच्छा हो सके। और इसके बाद इसकी जो सिंचाई है यानी बुआई से 25वें दिन पे करें, फिर दूसरी जो इसकी सिंचाई है वो बुआई के 50वें दिन पे और आखिर में बुआई के 60वें दिन पर इसकी सिंचाई करें। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि अधिक सिंचाई से जड़ सड़ भी सकती है, तो उसके लिए जो पानी का जमाव है वो ना होने दें, खेत जो है समतल रखें और पानी का जमाव जो है ना होने दें।
1: मैम राजमा में निकाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा में जो है खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। इसमें जो प्रमुखतः जो खरपतवार जो होते हैं वो होते हैं मोथा, बथुआ, दूब घास और कनकवा होता है मोस्टली। और इसके लिए जो है रासायनिक प्रबंधन हम रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए जो है बुआई के बाद और अंकुरण से पहले आप पेंडीमेथिलिन का छिड़काव कर सकते हैं, और कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली जो निराई गुड़ाई होती है वो होती है 25 से 30 दिन पर, और दूसरी जो निराई गुड़ाई होती है वो 45 से 50वें दिन पे होती है। और इसमें जो है जो पौधा है उसको जो है हल्की मिट्टी से चढ़ा दे ताकि फलियों को सहारा मिल सके।
1: मैम अब एक और ज़रूरी बात जो किसान भाई बहनों के मन में आ रही होगी कि राजमा की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं?
0: जी, राजमा की जो उन्नत किस्में जो भारत में जो प्रचलित हैं वो हैं PDR-14, जिसे हम उदय के नाम से भी जानते हैं, मालवीय 137 या VL-63 या

0: राजमा 125, अंबर, उत्कर्ष, वरुण, मालवीय 15 और स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल आदि के नाम से। लेकिन राजमा में जो प्रचलित किस्में हैं वो जैसे हैं अंबर, जिसकी जो बुआई है वो 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होती है और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो 120 से 125 दिन तक, और औसत जो इसमें उपज मिलती है अंबर में वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इसके जो दाने होते हैं वो लाल चित्तीदार होते हैं। और इसके बाद जो प्रभेद आता है वो है, प्रचलित प्रभेद आता है वो है उत्कर्ष, उसकी जो बुआई का समय है वो है 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और पकने की जो इसकी अवधि होती है वो है 130 से 135 दिन तक, और इसकी जो उपज क्षमता है वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और दाने इसके गहरे चित्तीदार होते हैं। और इसी क्रम में जो है तीसरी जो प्रभेद आता है वो है PDR 14, उदय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो बुआई का सही समय है वो 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और पकने की अवधि इसकी 115 से 125 दिन और तक होती है, और इसकी जो उपज क्षमता है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, और इसके भी दाने जो है लाल चित्तीदार होते हैं। और आखिर में जो सबसे प्रचलित किस्म है वो है मालवीय 15, जिसकी बुआई का समय 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होता है, और इसकी पकने की अवधि 110 से 115 दिन तक होती है, और उपज जो क्षमता है वो इसकी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, और इसके जो दाने होते हैं वो उजले रंग के होते हैं।
1: मैम, अब रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। राजमा में प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं और कीट कौन कौन से लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: राजमा में कई रोग और कीट लगते हैं जिसमें समय पर प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट जो कॉमन जो रोग लगते हैं वो हैं जैसे एंथ्रोक्नोज और पत्ती धब्बा रोग। इसके लिए सबसे पहले तो रोग मुक्त बीज बोएं और बीज उपचार ज़रूर करें, और इस रोग के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। और दूसरा जो आता है वो है जड़ सड़न की दिक्कत आती है, उसके लिए खेत में पानी का जमाव कभी ना होने दें, बीजोपचार ज़रूर करें और फसल चक्र का जो है इस्तेमाल, उस फसल चक्र को अपनाएं। और फिर आता है पीली मोज़ेक रोग, ये सफ़ेद मक्खी से ही जो है फैलता है, तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना बड़ा ज़रूरी है इसमें। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं, और अगर पौधा रोगग्रस्त हो चुका है तो उसको तुरंत जो है नष्ट करें उस पौधे को। और जो प्रमुख कीट इसमें लगते हैं वो हैं फली छेदक इल्ली, और इसके लिए जो हम प्रबंधन कर सकते हैं वो हम स्पाइनोसाइड से इसका जो है छिड़काव करें। ये स्पाइनोसाइड एक जैविक कीटनाशी है, और इसका जो है छिड़काव हम इमीमाक्टिन बेंजोएट से भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे जो दूसरे कीट जैसे माहू भी लगते हैं, उसके लिए आप नीम का तेल या इमिडाक्लोप्रिड से जो है इसका प्रयोग करके जो है नियंत्रण कर सकते हैं। और सफ़ेद मक्खी के लिए भी जैसा हमने पहले बताया, इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
1: मैम, अब एक और सवाल कि राजमा की कटाई कैसे करें, कटाई कब करनी चाहिए और भंडारण कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा की फसल देखिए लगभग 120 से 130 दिन में तैयार होती है। जब फलियां पीली होकर सूख जाएं और बीज जो है खड़खड़ाने लगे तभी कटाई करें, और जो है पौधों को जड़ से काटकर 3 से 4 दिन धूप में सुखाएं, पर अधिक देर तक धूप में ना रखें ताकि फलियां ना फटें। बीज की जो नमी होनी चाहिए वो लगभग 9 से 10% होनी चाहिए, और तभी उसको हाथ या मशीन से अलग करें, और ध्यान रखें कि दाने टूटने ना पाए, और यदि नमी अधिक हो तो दानों को फिर से सुखा सकते हैं, और सुखाकर उसे ठंडी और नमी रहित जगह पर बंद बोरियों में सुरक्षित रखें।
1: मैम, एक और बहुत ज़रूरी सवाल कि राजमा की खेती से किसानों को कितनी आय प्राप्त हो सकती है?
0: राजमा की खेती से किसानों को अच्छी आय मिलती है।

0: समतल क्षेत्रों में सिंचित अवस्था में इसकी जो उपज है वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें मिल सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती में इसकी जो उपज है वो 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे मिल सकती है। और इसके साथ साथ पशुओं को भी जो है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूसा प्राप्त होता है। सही प्रबंधन अगर किसान करें तो लगभग इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध लाभ मिल सकता है।
1: तो मैम, जिस तरीके से राजमा की खेती से किसान भाई बहनों को आय मिल सकती है, तो उम्मीद है कि बिहार में भी और बड़े पैमाने पर राजमा की खेती होगी। आपने बहुत उपयोगी बातें बताई मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसल का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से।

0: खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली के आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अर्का निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित

बकरन वाली ये लागे शुमार पाछे लगनेस गाइस रन लाछे

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर,
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक विषय लेकर आए हैं जो काफ़ी खास है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, अक्टूबर माह की हम बात करें तो इस समय विलंब से लगाए गए धान की फसल में क्या कुछ प्रमुख कार्य आपको करने हैं किसान भाइयों, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद, जो कि वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
12: धन्यवाद मैडम।
11: डॉक्टर साहब, इस माह में धान के फसल के लिए जो महत्वपूर्ण शस्य क्रियाएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे।
12: सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को अपनी तरफ से अभिवादन करना चाहूँगा और उन्हें ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का जो महीना होता है वो धान की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि पता है, सभी किसान भाई जानते भी होंगे और उनके

0: खेतों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रभेदों के धान लगे होंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होगा। कुछ प्रभेद पकने की अवस्था में होंगे, कुछ में फूल आ रहे होंगे, तो कुछ प्रभेद ऐसे होंगे जिसमें गाभा या गंभर वाली अवस्था होगी और कुछ में दूध वाली अवस्था होगी। तो फसल की आवश्यकता अनुसार किसान भाइयों को उचित उपाय करने होंगे, तभी उन्हें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त हो सकती है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल पकने की अवस्था यानी दूध वाली अवस्था को पार कर चुकी हो, उसके खेत से जो खेत में जो पानी लगा होगा उस पानी को बाहर निकाल देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब पर्याप्त नमी है खेतों में, अच्छी बारिश हुई है, तो उस अवस्था में अब ज़्यादा पानी लगा हुआ रहने के वजह से फिर आगामी जो रबी फसल है उसमें विलम्ब हो सकता है। तो जो दूध बनने की अवस्था में है आ चुकी है फसल, उसमें अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वो लगभग 15-20 दिनों तक उसमें पर्याप्त नमी रहेगी और दाना भी अच्छा भर जाएगा और पानी को ड्रेन करने से आने वाली रबी फसल की बुआई भी वो समय से कर पाएंगे। तो ये सावधानी बरतनी है उन भाइयों को जिनके खेत में धान का फसल लगभग दूध बनने की अवस्था को पूरी कर चुका है। और मैं क्रमवार ढंग से बताना चाहूँगा, चूँकि अभी हर तरह के प्रभेद उनके खेतों में हैं और अलग अलग अवस्थाओं वाली हैं, तो जो फसल पक गई हो या पक जाने की अवस्था में है उसकी कटाई भी उनको समय से कर लेनी है, और जो फसल अभी गाभा वाली अवस्था में या गंभर वाली अवस्था में है उसमें यूरिया का अंतिम उपरिवेशन उन्हें करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उनको करनी है। और जिस धान फसल में बाली निकल रहा हो, बाली निकलने वाली अवस्था या बाली निकलने वाली है, उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाली निकलने के समय ही धान का एक रोग जो फॉल्स स्मट कहते हैं या ठेठ भाषा में उसको कंडवा रोग भी कहते हैं, उसका प्रकोप होता है और इसके रोग के कारण दाना के जगह पर फफूंद या फंगस के कणों का काला या हरा पुंज बन जाता है जो पके दानों को नष्ट कर देता है। तो इस बीमारी से भी बचाव हेतु उन्हें आवश्यक उपाय करनी है। तो ये सारी बातें हैं जो किसान भाई को अपनानी चाहिए और इस माह में उन्हें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इस माह में बहुत सारे धान की फसल तैयार हो रहे होंगे, फूल भी लग चुके होंगे बहुत सारे में, तो ऐसे में इस दौरान क्या कुछ सावधानियां हमारे किसान भाइयों को बरतनी चाहिए?
0: अभी जैसा कि हमने बताया कि जो फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें एक कंडवा रोग होता है जिसको फॉल्स स्मट बोलते हैं, और कभी कभी हमारे किसान भाई इसको बोलते हैं लक्ष्मीनिया रोग है। तो इसकी शुरुआत होती है उसी समय जिस समय धान में बाली आना शुरू होता है, ये फंगस है, तो इससे बचाव के करने की ज़रूरत है। और इस बीमारी के अलावे और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो धान को काफ़ी प्रभावित करती हैं, और जैसा कि आपने देखा कि इस महीने में अच्छी बारिश हुई है और उस बारिश के वजह से धान को बहुत राहत मिली है, लेकिन इस बारिश के कारण और ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण और तापमान में भी थोड़ा सा उस तरह का उतार चढ़ाव रहा है, और ख़ास करके 30 डिग्री सेल्सियस से ही लगभग ऊपर तापमान रहा है, तो इस वजह से बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ा है। अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं जिसमें आवरण झुलसा जिसको सीथ ब्लाइट भी बोलते हैं, तो इसका प्रकोप भी अब देखने को मिल रहा है और खेतों में धान की फसल में ये बीमारी आती है। तो मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि इसके लक्षण क्या हैं और उसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये जान लें कि धान में जो ये आवरण झुलसा जिसे अंग्रेजी में सीथ ब्लाइट कहते हैं और पर्ण अंगमारी रोग भी कहते हैं हिंदी में, तो इसका जो लक्षण है वो धान फसल में इस प्रकार से दिखता है, और उसके कारण भी कुछ ऐसे हैं जो खास करके हम लोगों की गलतियों से या आपकी गलती से हो जाती है।

0: आप धान को ज़्यादा घना लगाते हैं या धान में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का या यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जब लगभग 96-97% रहता है और साथ में तापमान भी 30 डिग्री या 32 डिग्री सेल्सियस होता है तो पत्तियों पर आयत के समान आयताकार अनियंत्रित भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और जो पत्र आवरण जिसको शीथ ब्लाइट कहते हैं उसके प्रमुख भागों में धूसर रंग का तथा किनारे किनारे भूरे रंग का मार्जिन नज़र आता है। तो ये शीथ ब्लाइट का लक्षण है और ये खास करके फसल जब परिपक्व होने लगता है या जब उम्रदराज फसल हो जाता है तो उसमें इसका ज़्यादा प्रकोप हो जाता है और वो सहन नहीं कर पाता है। तो इससे बचाव करने की ज़रूरत है और अगर ऐसा आपके खेतों में नज़र आ रहा है तो आप तुरंत जो है उसमें कोंटाफ नाम की एक दवा है जिसको हेक्साकोनाजोल के नाम से ये प्रचलित है और इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी इसका आप छिड़काव कर सकते हैं और ये छिड़काव आपको 3 बार करना है 10 से 12 दिनों के अंतराल पर। दूसरी दवा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, वो शीथ मार बोलते हैं, वेलिडोमाइसिन के नाम से ये मिलता है। इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको डाल करके आप इसी तरह से कॉन्टाप की तरह इसका छिड़काव करेंगे। अगर इन दोनों में से अगर कोई दवा आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो डाइथेन M45 जो बहुत पुरानी दवा है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से। वैसे इस बीमारी से बचाव के लिए आप अपने खेतों में जब अगली बार फसल लगाएंगे तो उसमें सीडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम की जो दवा है उसका लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर में मिला करके आप रोपाई के 30 दिन बाद अगर प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से बचाव हो सकता है। खरीफ फसल में छिड़काव के लिए आप इसी सीडोमोनास फ्लोरोसेंस का 0.2% का स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे तो आपको बचाव हो जाएगा
1: जी।
0: इसके अलावे और एक बीमारी है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है जिसको जीवाणु झुलसा रोग कहते हैं। इसके कारण पत्ती के टिप से किनारों या मिड रिब से होकर नीचे की ओर पुआल रंग का धब्बा बनता है जो बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। तो इससे बचाव के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आप सीड ट्रीटमेंट अगर नहीं किए होंगे तो आपको छिड़काव ही करना पड़ेगा और इसके लिए आपको छिड़काव करने की ज़रूरत है और उस छिड़काव के लिए आपको ब्लाइटॉक्स नाम की एक दवा है और इस ब्लाइटॉक्स नाम की दवा का प्रयोग आपको करना है। ब्लाइटॉक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाएंगे और घोल आपको जो इस्तेमाल करना है 1 हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको 2.5 किलोग्राम ब्लाइटॉक्स और 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये दोनों दवा को मिला करके आप 1000 लीटर पानी में घोल देंगे और उससे अगर छिड़काव करते हैं तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से बचाव हो सकता है। इसके अलावे और भी बीमारियां हैं जैसे ब्राउन लीफ स्पॉट है जो पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे गोल अंडाकार धब्बे नज़र आते हैं जो बाद में आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप डाइथेन जेंस Z78 या इंडोफिल M45 का प्रयोग कर सकते हैं और इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो आप लीफ स्पॉट से भी बचाव कर सकते हैं फसल का। और अगर ये दवा नहीं है तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से रोग से आप बचाव कर सकते हैं। तो इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके अभी जो धान का फसल है उसमें कीट का भी प्रकोप काफ़ी हो रहा है और उसमें खास करके तना छेदक कीट और गंधी कीट जहाँ जो दूध बनने वाली अवस्था है तो उसमें गंधी कीट का प्रकोप हो रहा है और ये मुझे जानकारी किसान भाइयों से ही मिल रही है। तो

0: मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के खेत में धान अभी दूध वाली अवस्था में आ गई है, तो दूध बन रहे हैं उसमें, तो उसमें आप इकालक्स नाम की दवा है और इसका क्विनल फॉस 5% है, इसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर यानी 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय जिसमें पत्तियों पर ओस रहता है उस समय इसका भुड़काव करेंगे या डस्टर के द्वारा पूरे खेत में अगर इसको बिखेर देंगे समान रूप से, तो ये गंधी कीट जो है उसके गंध से आपके खेतों से भाग जाएगा और जो दाने में दूध बन रहे हैं भर रहे हैं तो वो दूध को चूस नहीं पाएगा और आपका फसल गंधी कीट के से बच पाएगा।
1: जी, क्या इस माह में और भी कुछ फसल की सुरक्षा के उपाय हमें करने चाहिए डॉक्टर साहब?
0: जी हाँ, ये अक्टूबर का माह भी जो है कीटों को भी काफ़ी निमंत्रण देता है, तो इस समय भी एक और हानिकारक कीट है जिसको ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं, भूरा मधुआ, इसका भी काफ़ी प्रकोप होता है और किसान भाई बहुत खुश होते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी है, इस बार अच्छी पैदावार मिलेगी, लेकिन जब एक सप्ताह बाद अपने खेतों में जाते हैं तो उनको लगता है कि जगह जगह पूरा एकदम जल सा गया है। तो एक्चुअली ये भूरा मधुआ क्या है कि नीचे से पूरी चाटते हुए पत्तियों को चाटते हुए ऊपर तक आ जाता है और पूरा जो उसकी हरितिमा है उसको चाट लेता है और जिसके वजह से पत्तियां जो है पीली होने लगती है। तो इससे बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने खेतों में, अगर आपके खेतों में इस कीट का प्रकोप नहीं भी है, बगल के खेतों में है, तो आप प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इमीडा क्लोप्रीड 17.8 एसएल दवा का प्रयोग करें और इसके लिए 125 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें। और दूसरी दवा आप प्रयोग कर सकते हैं एजाडिरेक्टिन, जो बाज़ार में अलग अलग नामों से आता है, इसका 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी में घोल करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो ब्राउन प्लांट हॉपर से भी बचाव हो सकता है। इसके अलावे स्टेम बोरर की भी समस्या किसान भाइयों को देखने को मिल जाती होंगी, अभी होगी समस्या, जिसको तना छेदक कहते हैं, और ये क्या करता है, कीट का लार्वा तने में छेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है और बीज के भाग को खा जाता है, जिस वजह से पत्तियां सूख जाती हैं और उसको खींचने से आसानी से वो खींचा जाता है और बाली की अवस्था संपूर्ण बालियां सफ़ेद हो जाती हैं, जिसे इसको डेड हर्ट भी बोलते हैं, मृत कल्ला भी हेड बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये डेड हर्ट जो बनने की समस्या है वो इंडिकेशन है कि आपके खेतों में स्टेम बोरर का प्रकोप है। तो इससे बचाव के लिए आपको अगर सुरक्षात्मक ढंग से करना चाहते हैं तो फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसके लिए 12 ट्रैप जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम आपको अपने खेतों में लगाना चाहिए। और अगर आप फेरोमोन ट्रैप आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है और आपके खेतों में पर्याप्त नमी है, तो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड नाम की दवा जो है कीटनाशक दवा, इसका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेतों में आप छींट दें तो इससे बचाव हो जाएगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो फिप्रोनिल 0.3 ग्रेन्यूल परसेंट ग्रेन्यूल जो है ये 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, ये दानेदार है दवा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर एजाडिरेक्टिन उपलब्ध है तो 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करेंगे तो उससे भी धर छेदक कीट से, तना छेदक कीट से आपका बचाव हो जाएगा। तो इस तरह से किसान भाई अपने फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। और चूंकि ये माह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है धान के लिए और धान की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए, अपने मेहनत को सफल करने के लिए, तो थोड़ी सी सावधानी बरतकर उचित रोग और कीट नियंत्रण के द्वारा किसान भाई अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, और आगामी रबी फसलों के लिए डॉक्टर साहब क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को?
0: मैं अपने किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप रबी की बुआई समय से करना चाहते हैं तो जो फसल अभी पक गया है उसका तुरंत कटाई करें और

उसकी झराई अच्छी तरह से कर लें और खेत में अगर एक्सेस पानी लगा हुआ है तो उसको पानी को बाहर निकाल दें। जिस फसल में बालियां निकल गई हैं और दाने भर रहे हैं तो उसमें एक्सेस वाटर अगर है, ज़्यादा पानी है, तो उस पानी को भी अब रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो भोजन का अब भोजन को जो पौधा ले पाएगा

0: जो पौधा अपना भोजन का आदान प्रदान करने की क्रिया को बंद कर दिया है ज़मीन से, उसमें अब किसी तरह का भोजन पौधे को मिल नहीं रहा है। और जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट का जो एक जगह से दूसरे जगह वितरण है, वो सब पूर्ण हो चुका होता है। तो उस अवस्था में फसल को काट लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि फसल समय से पहले कट जाएगा और जो हरा चारा के रूप में धान के पत्ते जो हरे रहते हैं उसको मवेशियों को भी खिला सकते हैं, और उसके वजह से खेत भी जल्दी खाली हो जाएगा और आगामी रबी फसलों की बुआई भी वो समय से कर पाएंगे। तो ये दो बात किसान भाइयों को ध्यान में रखने चाहिए कि जो धान पक गए हैं या पक रहे हैं तो उसमें अब ज़्यादा पानी की खेत में ज़रूरत नहीं है, उस पानी को अब कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी खेत से बाहर निकल जाए। जो धान पकने वाली अवस्था हो तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में उसकी कटाई कर लें, और जो हरे पत्ते हैं या उसका प्रयोग मवेशियों को चारे के रूप में खिलाएं, और फसल की अच्छी समय से झराई करके सुखा करके फिर उसका स्टोरेज करें और रबी फसल की बुआई वो समय से फिर कर लें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आज के इस वार्ता से आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, और इस प्रकार आप इस माह में विलंब से लगाए गए धान की फसल में प्रमुख कृषि कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपकी उत्पादन अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
5: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
6: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई

0: बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना है कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ

0: पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और

0: न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 cm की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: नमस्कार मित्रों, मैं नरेश कोहली NCERT के भाषा शिक्षा विभाग से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, आज हम लोग NCERT की 8वीं के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3, उसमें संकलित एक कहानी कामतानाथ की कहानी है, वो लाख की चूड़ियां, जो कि आपका पाठ नंबर 2 है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कहानी हम सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहानी कहना और कहानी बुनना, कहानी के बारे में समझना जितना आसान लगता है, कई बार वो थोड़ा सा लगता है कि हम उसको ज़्यादा सहज ले लेते हैं, तो चीज़ों को जिस अर्थ में हमें ग्रहण करना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए थोड़ी सी आज हमारी कोशिश होगी कि इस कहानी को बच्चों के साथ हम लोग साझा करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, और शिक्षकों से भी कुछ बिंदु इस बात में उभर के आ सकते हैं, वो भी हमारे ध्यान में है कि क्या क्या बातचीत हो सकती है बच्चों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी का जो मूल विषय है और जो कहानी का आनंद है वो दोनों ही आप तक पहुंचे। जैसा कि मैंने बताया कि कामतानाथ की लिखी हुई कहानी है ये लाख की चूड़ियां, तो सबसे पहली जो जिज्ञासा बनती है वो यही बनती है कि चूड़ियां तो हमने बहुत सुनी है कि भाई कांच की चूड़ियां सुनी है, सोने चांदी की भी सुनी है, लेकिन लाख की चूड़ियां खास संदर्भ में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों में, या जैसे कि किसी भी विवाह के, शादी ब्याह के अवसर पर इस तरह की चूड़ियों का विशेष उपयोग होता है, और हम लोग देखते हैं कि लाख की चूड़ियां खास अवसरों पे भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लाख की चूड़ियां हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थी, और उसको बनाने वाले जो कारीगर थे वो भी हमारे दैनिक जीवन में सामान्य रूप में विद्यमान रहते थे, सामान्य रूप में पाए जाते थे। ये कहानी भी हमें लाख की उन चूड़ियों की कहानी बताती है जो कि आजकल पर्सनल में कम हो गई हैं, यद्यपि एक नए रूप में वो फिर से आ रही हैं, लेकिन ये कहानी अगर हम कहें कि 70-80 के दशक के आसपास, आज से लगभग 50 साल पहले या उसके बाद, जब गांव में कारीगर लाख की चूड़ियां बनाते थे, उसके बारे में है कि किस तरह से लाख की चूड़ियां बनती थी, कैसे वो कारीगर बनाते थे, क्या गांव वालों का लगाव होता था, और उसके साथ साथ बच्चों का भी उनसे क्या जुड़ाव होता था, ये सब इस कहानी में हम लोग देखेंगे। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, एक तो जो कहानी कह रहा है वो, जो कि अपने आप को कह रहा है कि मैं गांव में गया, या दूसरा जो इसका मुख्य पात्र है जो लाख की चूड़ियां बनाता है वो बदलू चूड़ी वाला है जो चूड़ियां बनाता है। लेखक इसमें मैं शैली में ये पूरी कहानी कहता है कि जैसे हम भी, आप भी, जब भी अपनी कोई कहानी कहना चाहें, अपनी बात कहना चाहें, कि चाहे वो मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में, इस कहानी को हम लोग एक कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक संस्मरण की तरह भी। जैसे इसमें जो मुख्य पात्र है, मैं जो बार बार कह रहा है, या कहानीकार है, वो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता है, और उसके मामा

का जो है वो गांव है, गांव में वो उस चूड़ी वाले से मिलता है जो कि लाख की चूड़ियां बनाता है, मनिहार है जो, उसका नाम बदलू काका है। और बदलू काका अपने गांव में सबसे सुंदर लाख की चूड़ियां बनाते हैं, और ना केवल गांव में बल्कि आस पड़ोस में भी वो बहुत ही चर्चित और बहुत प्रसिद्ध कहना चाहिए कि कारीगर है जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं। मेरी एक साथी आपसे ये भी है कि हम लोग लाख की चूड़ियां बार बार कहते हैं। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे एक सवाल अपने मन में किए आया कि कई बार हम लोग यही नहीं जानते कि लाख होता क्या है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, तब आप इसका और आनंद ले पाएंगे कि लाख एक तरह का कहिए कि प्राकृतिक पदार्थ है जो कि एक लाख का कीड़ा होता है, जो जैसे रेशम का कीड़ा होता है, और वो पेड़ पौधों पे लग के उसका धीरे धीरे जो लाख उससे उत्पन्न होता है वो उसको फिर प्रोसेसिंग में या कहिए कि संशोधन करके पेड़ों से उतार के फैक्ट्री में ले जाके या छोटे मोटे उद्योगों में ले जाके उसको बनाया जाता है, और वो प्राकृतिक पदार्थ की तरह होता है। लगभग आप जैसे इसको समझिए जैसे रेशम का कीड़ा रेशम देता है, वैसे ही ये लाख का कीड़ा हमें लाख का पदार्थ देता है, और लगभग मोम, लगभग जो गोंद होता है उसकी तरह की कुछ चीज है, और उसको ब्राउनिश भूरे रंग का ये पदार्थ है, और इसमें कई चीजों में इस्तेमाल होता है। ये चूड़ियां उससे बनाई जाती है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, नेल पॉलिश में जो शाइनिंग आप देखते हैं, या और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि लाख की चूड़ियां अपने क्या अर्थ रखती हैं आज के समय में। मैं कह रहा था चूड़ियों से ही, जब हम चूड़ियों की बात करते तो विद्यार्थी जीवन में या बाद में भी आपको एक कहानी और कविता कहना चाहिए, कहानी नहीं, कि नागार्जुन की एक कविता है गुलाबी चूड़ियां, कि नन्हे हाथों की गुलाबी चूड़ियां जो हैं वो मुझे अक्सर याद आती है, और ये कहानी पढ़ते भी वो मुझे याद आई कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों की जो गुलाबी चूड़ियां हैं वो भी याद आई। चूड़ियां लाख की हैं और उसको बनाता कौन है, वो बदलू काका बनाते हैं। ये कहते हैं कि जब भी मैं, लेखक कहता है कि मैं जब भी गांव में जाता था गर्मी की छुट्टियों में, वो उसके मामा का गांव है, और उस गांव में जो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगता था वो बदलू काका थे। बदलू काका क्या करते थे, वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, और मेरा उनसे विशेष लगाव का एक कारण ये था कि लाख की चूड़ियां बनाने के साथ साथ वो मुझे लाख की छोटी छोटी गोलियां देते थे, रंग बिरंगी गोलियां बना के देते थे, जो लाख बच जाता था उससे वो छोटी छोटी गोलियां देते हैं। और हम सब जानते हैं बच्चों को जो रंग बिरंगी गोलियां होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं, लेखक को भी लगभग वैसा ही है, उसको वो रंग बिरंगी गोलियां बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ पे एक बात और लेखक कहता है कि मैं जो बदलू काका वो कहते हैं उसको, मूलतः तो वो उनके एक तरह कहना चाहिए कि बदलू मामा कहना चाहिए उनका, क्योंकि उनके मामा के गांव का है, लेकिन वो उनको बदलू काका कहते हैं। और इसका कारण क्या है कि ये बच्चों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, आदत होती है कि हम सब जो बच्चे होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को जब देखते हैं आस पड़ोस में जो जिस नाम से बुलाते हैं, बच्चे भी उसी नाम से बुलाने लगते हैं। जैसे कई बार हम लोग दादी को माँ कहने लगते हैं, माँ को देख के, या बड़ी अम्मा कहने लगते हैं। तो ये गांव के बच्चे, क्योंकि ये तो मामा कहता है लेकिन क्योंकि गांव के बच्चे उसको बदलू काका कहते हैं, तो ये भी बदलू काका कहने लगता है और लगातार उनके यहां जाता है। फिर कहानी में लेखक कहता है कि बदलू काका जहां पे काम करते थे वो थोड़ा सा गांव का जो एक थोड़ा ऊंचा हिस्सा था उस पे उनका मकान था, और मकान में बहुत बड़ा एक आंगन था, आंगन में एक नीम का पेड़ था, और उस नीम के पेड़ के पास एक भट्टी थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे, और उस भट्टी के पास एक कहना चाहिए कि तिपाई या चौखट के कि लकड़ी की एक सूतलियों से बनी हुई चौकी कहिए आप उसको, मचिया जिसको कहा गया है, मचिया पे बैठ के वो अपने काम को करते थे और चूड़ियां बनाते थे। चूड़िया बनाने का प्रोसेस क्या था, उसकी प्रक्रिया क्या थी कि वो उसको पिघलाते थे और फिर उसको आकार देते थे, और उस आकार को एक पतले, जब वो चूड़ी के साइज का बन जाता था तो

उसको बेलनुमा जो मुंगेरियां कहा गया है उसको, कि मुंगेरियां एक लकड़ी का वो एक बेलनुमा छड़ जैसा होता है और उसपे वो चूड़ियों को चढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे जब वो गोल और एकदम चिकनी बन जाती है तो उस पर रंग करते हैं। जब बदलू काका चूड़ियां बना रहे होते थे तो लेखक भी वहां पहुंच जाता था, ये अपन जो कहानी कह रहा है, और कहते हैं कि मेरा अधिकतर समय दोपहर का वहीं बीतता था और मैं वहीं पे दूसरी मछिया पे बैठ के ये सब देखता रहता था। एक यहाँ पे जरूर हमें बड़ा रोचक वाक्य है, वो जरूर जानना चाहिए कि इस कहानी में जो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, कि जब वो एक जोड़ा दो जोड़ा बन जाते थे, चार छह जोड़े बन जाते थे, तो वो बदलू काका उनको एक उस बेलन पे चढ़ा के जब देखते थे, वो देखने वाली वो लाइन हमारे लिए बड़ी रोचक है। और वो लाइन क्या है कि जब पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधु की कलाई हो। देखिए, लेखक बीच बीच में बड़े सुंदर वाक्यों का इस्तेमाल करता है कि कहानी में ये भी कह सकता है भाई चूड़ी बन गई, लेकिन उन चूड़ियों को बेलन नुमा उस पे चढ़ा के वो बेलन नहीं लगता, मानो किसी नए शादीशुदा जो महिला है, उनकी नव वधु है, उसके हाथों में वो चूड़ियां हो, मानो उसकी वो कलाइयां, अर्थात वो अपनी कला पे, अपने उस पे एक कहना चाहिए उसको नाज है कि उसने इतनी सुंदर चूड़ियां बनाई है। अब कहानी में आगे थोड़ा सा लेखक और बताता है कि बदलू मनियार क्या थे, और वो क्योंकि उनका पैतृक व्यवसाय था, पैतृक पेशा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये काम करते आते हैं, और एक खास बात और वो बताते हैं कि बदलू काका इन चूड़ियां बनाने के बदले में, किसी के लिए भी जब वो चूड़ियां बनाते थे तो वो उसके बदले में पैसा नहीं लेते थे, बल्कि वो वस्तु विनिमय के तरीके से अपना कार्य व्यापार करते थे। ये जानना जरूरी है कि वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय का आशय यहाँ पे ये है कि गांव में थोड़ा पुराने समय में सामान्यतः होता यही था कि हम एक चीज देते थे, मान लीजिए आपने अनाज दिया, बदले में आपने चूड़ियां ले ली, आपने अनाज दिया, बदले में आपने मटके ले लिए। तो ये जो आदान प्रदान होता था उसमें पैसे का, नगद मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था, चीजें आपस में अदला बदली की जाती थी। और बदलू वैसे किसी से कभी पैसे नहीं मांगता था, जिसने जो दे दिया वो रख लिया, लेकिन एक बड़ी रोचक बात कहानीकार ये कहता था कि बदलू वैसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब किसी के यहाँ शादी ब्याह का कोई अवसर होता था, विवाह का कोई अवसर होता था, तो वो मानो एक तरह से जिद पकड़ लेता था और फिर जैसा वो चाहता था अच्छा खासा उसको कहना चाहिए कि सामग्री मिलती थी, कपड़े मिलते थे, और थोड़ा बहुत जो अनाज था, रुपए भी मिलते थे, वो सब मिलता था, और शादी के अवसर पर कोई भी उसको नाराज नहीं करना चाहता था। लेखक बताता है कि एक बार जब वो गांव में गया हुआ था तो थोड़ा सा किसी बात पे वो नाराज हो गया, तो उसको मनाने में कहता है कि मानो लोहे लग गए। ये देखिए, कहानीकार कामतानाथ की भी ये खूबी है, और आप ये प्रेमचंद की कहानियों में भी देखेंगे, या कोई भी अच्छा रचनाकार धीरे धीरे अपनी जब भाषा में खूबसूरती पैदा करने के लिए कहीं पे वो मुहावरों का इस्तेमाल करता है, कहीं पे वो तुलना करता है, जैसे मैंने बताया था अभी कि वो नव वधु की मानो कलाइयां हो, और यहाँ पे वो कह रहा है कि जैसे उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी लोहे चबाने वाला एक मुहावरा एक तरह से है कि बहुत कठिनाई से वो मानता था और सब कुछ उसको मिलता था, ये उसका काम करने का तरीका था। लेकिन असली सवाल अब थोड़ा सा धीरे धीरे कहानीकार उस बात की ओर इशारा करता है मित्रों, जो वो कहता था कि बदलू को वैसे तो सब ठीक था, लेकिन उसको जो ये कांच की चूड़ियां थी उनसे बड़ी चिढ़ थी। वैसे बहुत सीधा और बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, लेकिन उसे कांच की चूड़ियों से कहीं ना कहीं चिढ़ थी, और वो अंदर अंदर इस बात को लेकर कुड़ता रहता था, अर्थात थोड़ा परेशान था, गुस्से में था। और जब किसी महिला को वो देखता था कि भाई उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ दो चार बातें सुना भी देता था। फिर देखिएगा कि कहना दो चार बातें सुना देना, अर्थात कुछ ना कुछ छोटों का टिप्पणी कर देता था। जब लेखक
उनको चूड़ी बनाते हुए देखता था तो कहता था कि मैं

घंटों वहां बैठा रहता था और इस दौरान लेखक तो देखता ही रहता था उसके बारे में कि कैसे चूड़ी बन रही है, कैसे कार्य कर रहे बदलू काका। लेकिन बदलू काका भी उसके बारे में पूछते थे, और भाई तुम शहर में क्या करते हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारा रहन सहन क्या है, कैसा है। तो वो कहता कि उसी संदर्भ में वो कहते हैं, जब वो कांच की चूड़ियों की बात आती है तो कहते हैं बदलू काका शहर में तो सभी लोग महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा मजेदार है और थोड़ा सा कहानीकार ने उसमें हास्य और व्यंग्य का पुट दिया है, और वो कहता है कि ये भी वाक्य थोड़ा रोचक है, इसको देखना चाहिए कि हाँ बदलू काका कहते हैं शहर की बात है, शहर की बात तो और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। देखिए कि जो बदलू काका का हास्य व्यंग का अंदाज है वो भी थोड़ा मीठा मीठा सा देखिए चुभन वाला, और उसमें आपको देखेंगे कि वो कहता है कि शहर के बारे में उनकी एक राय है कि वहां सब कुछ चलता है और महिलाएं घूमती हैं जैसे भी वो कह रहे हैं, लेकिन ये कि उनकी कलाइयां नाजुक होती है, और अगर वो चूड़ कह रहे हैं कि लाख थोड़ा भारी होता है और अगर लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो मोच ना आ जाए, तो ये वो व्यंग्य करते हैं हल्का सा। इसी दौरान लेखक ये भी कहता है कि जब मैं बदलू काका के यहाँ बैठा होता था तो वो मुझे बहुत कुछ खाने पीने को, जिसको कहते हैं कि मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते थे, और जब उनके यहाँ एक गाय भी थी, जब गाय के दूध होता था तो वो मुझे अच्छी खासी मलाई खाने को देते थे, और सबसे बड़ा कारण मेरा यही था, बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ ना डेली प्रतिदिन एक या दो गोली, दो चार गोली जरूर मिलती थी लाख की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और वो कहता है कि ये क्रम लगभग हर साल चलता रहता है, मैं हर गर्मी की छुट्टियों में जाता हूँ, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की बदली दूर किसी शहर में हो गई और मैं 8-10 साल तक फिर वहां जा नहीं पाया, और 8-10 साल बाद जब वो वापस गर्मी की छुट्टियों में जाता है तो वहां वो देखता है कि भाई धीरे धीरे उसको वो भूलने लगा, और गांव में जाके भी उसको बदलू काका की याद नहीं आती, लेकिन उसके मामा की एक लड़की है, और ये कह रहे हैं कि कहानीकार का है कि वो बरसात के दिन थे वो गिर जाती है, और जब गिर जाती है तो वो जो उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई है बच्ची ने, तो वो टूट के उसकी कलाई में लग जाती हैं, और कलाई में लग जाती हैं तो खून आता है और फिर वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं। इसी दौरान जब वो कांच की चूड़ियों की बात करते हैं तो उसे बदलू काका याद आते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि आज शाम में बदलू काका से मिला जाए, और वो शाम में घूमते फिरते बदलू काका के यहाँ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पे लेटे हुए हैं, और जाके वो कहते हैं कि नमस्ते करते हैं, बदलू काका भी उनको नमस्ते करते हैं, और वो देखते हैं कि बदलू काका शायद उनको पहचान नहीं पा रहे, तभी वो कहते हैं कि अरे काका मुझे पहचाना नहीं, मैं हूं, मैं कौन भाई, मैं कहते मैं जनार्दन हूं, आपसे बचपन में जो लाख की गोलियां बनवा कर लेके जाता था मैं। हाँ अच्छा अच्छा, तब उसको याद आता अचानक। एक बड़ा सुंदर वाक्य कहानीकार ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो भी देखना चाहिए कि ये भाषा की खूबसूरती है, जब हम कहानी कहते हैं सुनते हैं, खास तौर से जब हम पढ़ते हैं, कहने सुनने में तो जो कहानी कहने वाला होता है उसका अंदाज, बातचीत का उतार चढ़ाव, हाव भाव, खास तौर से उसकी आवाज का जो अंदाज है, कहने का अंदाज है, वो कहानी में रंग भरता है, लेकिन जब हम कहानी, लिखी हुई कहानी को पढ़ते हैं तो वो कहानीकार उसमें शब्दावली भी एक देखता है कि वो सुंदर शब्दावली इस्तेमाल होती है, और वो शब्दावली देखी कह रहे हैं कि जब उनको याद नहीं आ रहा तो कैसा लग रहा है कि मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। देखिए ये है अपने बदलू काका अपनी यादों के जो पटल पे जो बीत गया है, जो अतीत है, उसके उसकी तस्वीर उतार रहा है, उसको ऐसा लगता है वो याद करने की कोशिश कर रहा है, और जब याद आ जाता है तो फिर वो कहते हैं हाँ हाँ बैठो, उसके लिए वो एक फिर से मचिया लेके आते हैं और वो बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके आसपास ना तो वो भट्टी है और ना ही वो जो जिसपे बदलू काका बैठ के बनाते थे वो लाख की चूड़िया, ना वो मचिया है।
तो पूछते हैं कि क्या काका आपने काम बंद कर

दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे पहली बार उसकी चिंताएं हमें दिखाई देती हैं कि हाँ काम तो बदलू काका कहते हैं, हाँ काम तो कई साल हो गए, अब बंद हो गया है। और वैसे भी अब गांव में मेरी चूड़ियों को पूछता ही कौन है, क्योंकि गांव में क्या है कि अब पूरे गांव में कांच का प्रचार हो गया है और सब लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। एक सवाल जो इस कहानी का मेन कहना चाहिए कि केंद्र बिंदु है, वो जो है वो यहाँ पे पहली बार उभर के आता है और वो कहते हैं कि पहले हाथ से काम होता था और अब मशीनों से काम होता है, इसीलिए हाथ से काम करने वाले बेरोजगार होते जा रहे हैं और मशीनी युग आने से वो पूरा का पूरा उस कामकाज पे मशीनों का प्रभाव आ गया। कह रहा है कि हाँ मशीनी युग है लल्ला, अब तो सब काम मशीन से होते हैं, चाहे चूड़ी बनाने का हो, चाहे खेत जोतने का हो, सब कुछ मशीन से होता है। और फिर कांच की चूड़ियां होती भी तो बहुत सुंदर हैं, तो ऐसे में लाख का ये सब कम, लाख की चूड़ियों पे काम करना कहाँ संभव रह जाता है। वो मशीनी युग के आने से जो हमारे कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग, जो घरेलू उद्योग, जो एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उसकी चिंता जाहिर करता है। और लेखक कहता भी है कि हाँ काका वैसे कांच होता भी खतरनाक है और जल्दी टूट जाता है। इसी दौरान एक चीज और लेखक रेखांकित करता है, वो देखता है कि उसको काका को, बदलू काका को खांसी आ रही है और उसे लगा कि कहीं इतने लंबे समय तक काका ने काम किया, कहीं उनको दमा तो नहीं हो गया, और शरीर भी उनका लगभग थोड़ा सा ढला हुआ लग रहा है, नशे उबर आई है माथे की हाथों की, वो थोड़ा आयु का उनके ऊपर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बदलू काका देख लेता है कि वो मेरी खांसी को कुछ और समझ रहा है, तो वो कहते नहीं नहीं नहीं ये तो मुझे सामान्य फसली खांसी है जो थोड़े 10-15 दिन में ठीक हो जाती है। खैर वो वाक्य यहाँ पे फिर से लेखक सोचता है और ये बड़ा मार्मिक वाक्य है और इस कहानी का कहना चाहिए मुझे तो केंद्रीय बिंदु लगता है। लेखक ये सोचता है उसकी पीड़ा को देख के काका, वो कहता है कि हाँ इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मशीनी युग ने हाथ काट दिए हैं, यानी रोजगार का काम बंद हो गया जो हाथ से, हाथ काटना मुहावरा है, किसी का रोजगार छीन लेना, काम छीन लेना, यहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ और यही इसका केंद्र है एक तरह से। वो कहता है खैर धीरे धीरे बात शांत हो जाती है और फिर वो कहते हैं कि गाय भी वहां दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं गाय का क्या हुआ, कहता बेटा वो तो 2 साल हुए पहले वो बेच दी हमने, क्योंकि अब गाय के लिए चारा जुटाना भी एक समस्या है, उसको खिलाते कहां से। फिर ये भी देखते हैं तो जब गाय की बात आती है तो उसको आम भी याद आते हैं। वो कहता और इस साल आम की फसल कैसी हुई है काका, पूछते हैं हालचाल में जैसे हम लोग बातचीत में ये सब पूछते हैं एक दूसरे से। वो कहते हाँ आम तो हुआ है। तभी वो अपनी बेटी को आवाज देता है कि अरे मैं तो वो सोचता है कि इसको खिलाना भूल ही गया। तभी वो कहता है कि अपनी बेटी को पुकारते हैं और उसका नाम रज्जो है इसमें कहानी में, कि रज्जो बेटा जरा कुछ आम लेके आना, देखो लल्ला आए हैं उनको खिलाएंगे। तो तभी उसकी बेटी आती है और वो एक डलिया में आम लेके आती है, काफी आम काफी अच्छे हैं। वो कहते हैं हाँ आम की फसल बहुत हुई है अब की बार। फिर कहता है कि वो पूरी डलिया उसके सामने रख देता तो खाओ, कहते कि वो कहता कि अरे मैं इतने कहाँ खा पाऊंगा। तो यहाँ पे फिर बदलू काका एक हल्का सा मजाक करते हैं कि हाँ भाई तुम तो शहरी ठहरे ना, इतने कैसे खा पाओगे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो तुमसे चार गुने, इससे चार गुने खा जाता था, वो भी एक समय में। ये बातचीत चलती रहती है और हंसी मजाक के साथ साथ वो कुछ आम ले लेता है। लेकिन जब बदलू काका की बेटी रज्जो हाथ में 4-5 आम, अंजलि में लिखा हुआ है इसमें कि अपनी अंजलि में 4-5 आम रख के बढ़ाती है, तभी लेखक की नजर या जो इसमें मैं है, ये जो पात्र है कहानी का, उसकी नजर उसकी गोरी गोरी कलाइयों में जो लाख की चूड़ियां थी उनके ऊपर जाता है। अर्थात रज्जो ने लाख की चूड़ियां पहनी हुई हैं और वो उसके हाथों पे बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेखक निकले और फब रही हैं वो उसके हाथों पे। यहाँ पे भी एक चीज देखिए कि उस रज्जो के हाथों में चूड़ियां सुंदर लग रही हैं, लेकिन
यहाँ पे भी बदलू।

की नजर उस बात की ओर चली जाती है कि जो लेखक है वो कहीं उनकी बेटी के हाथों में जो चूड़ियां हैं लाख की उसको देख रहा है। और उस वाक्य बड़ा जोरदार है, मजेदार है। देखिए कि बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, कि लेखक कहां देख रहा है, कि उसकी नजर को उसने देख लिया कि ये लाख की चूड़ियों को देख रहा है, दृष्टि देख ली। मैं बड़ा सुंदर लगा मुझे कि ये दृष्टि देख लेना भी, देखिए कितना सुंदर वाक्य है। और फिर वो कहता कि हाँ बेटा, बस यही एक आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया था, और ये भी मैंने जो जमींदार थे उसकी बेटी की शादी के लिए बनाया था, लेकिन वो इसका दाम है वो बहुत कम दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि वो कुल मिला के 10 आने मुझे दे रहे थे, और मैं हिसाब लगा रहा था कि 10 आने का मतलब क्या। आज के समय जैसे हम उसकी गिनती लगा, 10 आने, 8 आने, 12 आने और उसके 60 पैसे लगभग, कि अगर इतना कम दाम मिल रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने वो जोड़ा दिया नहीं, और जमींदार से कहा कि नहीं आप शहर से ले आओ, और यही वो जोड़ा है वो अब उसकी बेटी ने पहन रखा है, जो कि एक तरह से आखिरी जोड़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये आखिरी जोड़ा शब्द भी बड़ा रोचक है, कि पूरी कहानी में ये बता रहा है कि अब काम लगभग बंद हो चुका है और ये आखिरी था। और अंत में फिर लेखक अपने बातचीत करने के बाद सोचता है कि घर की तरफ चला जाए, और वो घर अपने लौट आता है। लेकिन चलते चलते वो ये सोचता है और उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि बदलू काका ने काम बेशक बंद कर दिया हो, लेकिन उसके अंदर एक जिजीवसा है, जीने की इच्छा है, और वो अभी हारा नहीं है। वाक्य ये है कि लेखक कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वाक्य में पढ़ना चाहूंगा कि बदलू ने हारकर भी हार नहीं मानी थी। ये हारकर भी हार ना मानना देखने वाली चीज है। और फिर उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात मेहनत कस जो मजदूर हैं, जो अपने हाथ से काम करते हैं, बेशक वो कहीं ना कहीं उनमें निराशा है, दुख है, व्यथा है, काम की बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। वो कांच की चूड़ियों की तरह से नहीं है कि वो इतनी जल्दी टूट जाए। और लेखक इस बात के साथ अपने घर चला जाता और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये तो वो कहानी है जो लेखक ने कही है सीधे सीधे, और मैंने कोशिश की कि आप लोगों से उस बातचीत के माध्यम से साझा किया जाए। लेकिन मित्रों, सवाल यही है कि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिनके सहारे खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़ी जनसंख्या को हाथ का काम मिला हुआ था, रोजगार था, उनकी आजीविका चल रही थी, वो कहीं ना कहीं मशीनी युग आने से, मशीनी पूरी की पूरी कहना चाहिए कि सभ्यता विकसित होने से वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। और यही इस कहानी में कहा गया है कि मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए हैं। ये कहानी हमें उस और भी लेके जाती है कि जरा हम अपने मूल उद्योगों के बारे में भी थोड़ा सोचे, ताकि एक संतुलन बना रहे। मित्रों, ये तो थी कहानी। और क्योंकि हम अपने स्कूली शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस कहानी के अंत में जो अभ्यास दिया हुआ है उसको भी देखें। और जब एक बार हम कहानी को ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो हमारे अनुभव का हिस्सा हो जाती है, तो फिर कहानी से जुड़े हुए सवालों पे बातचीत करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कहानी से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि भाई वो बदलू मामा क्यों कहते हैं, बदलू मामा को बदलू काका क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका कारण मैंने बताया था बातचीत में कि गांव में जो बच्चे बोलते हैं अक्सर छोटे बच्चे, वो उसी तरह से एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। दूसरा सवाल इसमें वस्तु विनिमय के बारे में है। तीसरा सवाल मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं इसके बारे में है। और हमने इन सारे पहलुओं पे बातचीत की है। इस कहानी को अगर आप खुद से पढ़ेंगे, इस बातचीत को सुनेंगे, तो आपका ये हल भी आसानी से निकल आएगा और आप इससे बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, कह पाएंगे। इसमें एक हमने कोशिश की है कि कहानी से आगे भी कुछ बातचीत की जाए, कि आप कोई कारीगरी का सीख सकते हैं, या ये लाख की चूड़ियां कहां कहां बनती है, लाख कहां बनता है, ये भी जानने समझने की चीज है। और फिर एक
पाठ का हिस्सा है, पाठ के आगे की अनु

0: अनुमान और कल्पना हम लोग लगाएं कि हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है, जैसे इस कहानी में जब वो लेखक बदलू काका के यहाँ जाता है तो वो उसको मलाई खिलाते हैं, आम देते हैं, इसी तरह से हम कैसे किसी का अतिथि सत्कार करते हैं। साथ ही साथ गर्मी की छुट्टियों में या किसी भी छुट्टियों में हमें कहाँ जाना अच्छा लगता है उसके अनुभव हम लोग लिखें, और हमारे खान पान में, रहन सहन में किस तरह का बदलाव आ गया इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से इतनी सरल भाषा में आप, तो सीधे सीधे मैं कहूं कि आप अपने अनुभवों को लिखिए। आप गांव से शहर आते हैं, शहर से गांव जाते हैं, किसी पिकनिक पे जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, किसी तीज त्योहार का वर्णन, किसी भी तरह का वर्णन आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं, किस बदलाव को आप लिख सकते हैं। और एक चीज इसमें सारी किताब में भी आप देखेंगे, वो व्याकरण की बात अक्सर हम लोग करते हैं, और व्याकरण की बात को यहाँ कहा गया है कि हम व्याकरण को संदर्भ के साथ पढ़ाएं, संदर्भ जब पाठ में आए किस विषय का उसी से जोड़ के उसको पढ़ाएं। और ये भाषा की बात में ये बातचीत कही गई है, और जैसे इसमें एक उदाहरण दिया कि संज्ञा क्या है, कि संज्ञा पढ़ाने का एक सामान्य तरीका क्या है कि हम लोग विशेषता बताते हैं उसकी परिभाषा, ये नहीं। देखिए इसमें बदलू है, बदलू कहानी का पात्र है, बदलू एक नाम भी है, जनार्दन पात्र है, एक नाम भी है, इसमें नाम आया है और किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, ये नाम ही संज्ञा होता है, ये हमने अभ्यास में इसको जोड़ के बताया है। और हास्य व्यंग की बात भी मैंने की थी, व्यंग में क्या होता है, व्यंग में जो सामान्यतः कहा जाता है वो अर्थ नहीं होता, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ अर्थ होता है, कि जब हम किसी को महान कहते हैं तो जरूरी नहीं महान हो, मजाक भी हो सकता है, वो इस कहानी में भी, अरे शहर वालों की तो बात और है। तो ये इस तरह के वाक्य हैं, थोड़े हंसी मजाक के भी हैं। और एक अंतिम बिंदु इसका जरूर इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाषा में बोलने में सबकी क्षेत्रीय विविधता आती है, बोली का असर आता है, जो जिस क्षेत्र में होता है वो उसी के प्रभाव वाली बोली बोलता है। और इसमें भी बहुत सारे उदाहरण आए हैं, कोई वक्त को वक्त बोल रहा है, उम्र को उम्र बोल रहा है, तो ये आप इस पाठ के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अभ्यास कर सकते हैं। और एक चीज और अंतिम है ये, और वो ये है कि पाठ में जो नए शब्द आते हैं, जो पहली बार जिनसे हम लोग रूबरू होते हैं, उनको भी देखिए आप, उसकी शब्द को उसकी सहायता ले सकते हैं, अन्यथा एक दो बार पढ़ेंगे तो आप उसका भाव धीरे धीरे खुलने लगेगा। इसलिए मित्रों, इस कहानी को पढ़ें, अपने अनुभव लिखें, हम अपनी कहानी बनाएं, हम अपनी संवेदना का विस्तार करें, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ।

0: डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं, वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर, आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा

0: इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन पीएच, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया, उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना, मधुआ कीट यानी कि

0: BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों उन्नत कृषि के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तिलहनी फसल के बारे में जो हमारी सेहत के लिए, हमारे खेत के लिए, दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी उपयोगी होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुसुम की वैज्ञानिक खेती के बारे में। और आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू चंद्रा। आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्ते उमा, और हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: मैम सबसे पहले तो हमें हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि बिहार जैसे राज्य में इस फसल का क्या महत्व है और इस देश के अलग अलग हिस्सों में इसे किस नाम से जाना जाता है।
1: बिल्कुल उमा, कुसुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रबी फसल है, रबी तिलहनी फसल है। और अगर इसे इसके जैसे तुमने पूछा कि अलग अलग राज्यों में हम किस नाम से बुलाते हैं, तो जैसे हमारे बिहार में कह लो उसे कुसमी कुसुम्बा कहते हैं, महाराष्ट्र में आप देख लो इसे करड़ी के नाम से जानते हैं, तेलुगु में कुसुमा कहते हैं, तो अलग अलग प्रांत में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और सबसे गर्व की बात यह है कि इसके अगर हम उत्पादन के संदर्भ में बात करें तो हमारा देश यानी भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि हमारे भारत में किन किन राज्यों में ये रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, तो जैसे महाराष्ट्र हो गए, कर्नाटक हो गए, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और हमारा बिहार है। हालांकि अगर हम देखें तो देश में इसकी औसत उत्पादकता लगभग 736 केजी पर हेक्टेयर है। और अगर कई बार आप देखोगे तो किसान भाई बहन क्या करते हैं, कुछ छोटी मोटी त्रुटियां कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान योजना और तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के संयुक्त प्रयासों से अब इसके कई ऐसे वैरायटीज कह लो आप हाइब्रिड किस्में हमारे बीच में हैं जिनसे किसानों को काफी लाभ मिल सकता है।
0: जी मैम, और जैसे कि आपने बताया कि हमारा भारत विश्व में पहले स्थान पर है तो ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मैम अगर हम बिहार की बात करें तो मैम बिहार में उगाने के लिए कुसुम का कोई खास प्रभेद या किस्म है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
1: बिल्कुल उमा, उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देनी चाहूंगी। जैसे शुरुआत में आपने बताया था कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जैसे आप देखोगे कि इस पौधे के हर एक पार्ट्स को, हर एक अंग को हम उपयोगी मान सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप इसकी पंखुड़ी को बात कर लो, पंखुड़ियों में इतनी बड़ी विशेषता है कि इसे आजकल पंखुड़ियों को सुखा करके हर्बल टी के रूप में लोग पी रहे हैं। जैसे जितने भी आपके डायबिटिक पेशेंट हैं उनके सेहत स्वास्थ्य को मतलब अच्छा रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, उसको कंट्रोल में रखने के लिए इसे हर्बल टी के रूप में डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं। और साथ ही साथ अगर इसकी तेल की बात करी जाए तो इसमें जो हमारा जो लो आपका ओलिक एसिड और आपका लिनोलिक एसिड होता है, तो हमारे हृदय के लिए भी ये तेल बहुत अच्छा है, जैसे गुड फॉर हर्ट कहते हैं ना, तो उस तरीके का है। और जैसे इसके बीज की अगर आप बात कर लो तो बीज जो हमारा है वो बहुत मात्रा में इसको बर्ड फीड के, पक्षियों को खिलाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बर्ड फीड के नाम से ही जाना जाता है कुसुम को। और उसके बाद अगर इसकी तेल निकालने के बाद अगर हमारी इसको खली हुई, तो खली जैसे आप मिला करके जो भी दुधारू पशु हैं उनके खाने में अगर मिला करके आप दे दो तो उससे उनके दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये पौधा पूरा A to Z हमारा बहुमूल्य पौधा है। और जहाँ तक कि प्रभेदों की बात है तो जैसे हमारा एक लक्ष्मीप्रिया नाम का वैरायटी है जिसको आप कहते हो, लक्ष्मीप्रिया हमारे बोलचाल के भाषा में बहुत प्रचलित है, ऐसे ISF 764। उसके बाद एक प्रभेद है आपका A1A1, फिर देखो आप PBNS 12, ये सारी कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो हमारे किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। और अगर हम अगर बात करना चाहें जैसे कि क्या क्या खासियत है इस लक्ष्मी प्रिया में, तो आप देखोगे तो ये वर्षा आधारित और सिंचित खेती दोनों के लिए उपयोग

0: है। इसके साथ अगर इसकी परिपक्वता अवधि देखी जाए तो 125 से 130 दिन में आपका फसल पक के तैयार हो जाता है। उपज इसकी लगभग 2200 केजी पर हेक्टेयर है और तेल की मात्रा भी हमारी 30-31% है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ उच्च ऐसी वैरायटियां भी हैं जिसमें तेल की मात्रा उच्च तेल की मात्रा है, जैसे RVSF 18-1। और एक बात आपको और भी बताऊंगी मैं कि कुसुम में जैसे हमारे दो प्रकार के प्रभेद होते हैं, एक आपके कांटेदार होते हैं, एक बिना कांटेदार। तो अब पहले लोगों को था कि भाई इसको काटना लगाना बहुत मुश्किल है, इसमें बाकी चीज़ें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है, तो लोगों ने इनको मुश्किल से इसको बॉर्डर क्रॉप के रूप में लोग लगाते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे प्रभेद हैं, कुछ मुख्य प्रभेद देखोगे आप मध्य प्रदेश के और आपके छत्तीसगढ़ के IGKV कुसुम हो गई, उसके बाद JSI 97-99, ये हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत कम अवधि में पक के तैयार हो जाती हैं और इनमें कांटे भी नहीं होते हैं।
1: जी मैम, मैम किस्मों के बाद अब बात आती है कि खेत किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो मैम आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि खेत की किस तरह से वो तैयारी करें और खेत की जुताई किस प्रकार से करें और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम तिलहनी फसलों की बात करें तो इनका जो हमारा खेत तैयार करने का जो हमारा विधि रहता है वो थोड़ा हट कर के होता है। जैसे आप जब खेत की तैयारी कराते हो तो आपको ट्रैक्टर से 2-3-4 चास, कम से कम मिनिमम 2-3 चास तो चलवा करके मिट्टी को बिल्कुल ऐसे भुरभुरा बना देना होगा, जैसे आप हाथ में उठाते हो बलुआई मिट्टी नहीं होता है भुरभुरा, उस तरीके का हमें खेत को तैयार करना है। और उस सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसको एक तो और एक चीज़ और बताऊंगी कि आप लोग जनरली क्या करते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हो, खेतों में छींट देते हो, सर्फ फसल के साथ करते हो, लेकिन अगर आप इसको पंक्ति से पंक्ति में लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी पैदावार होगी और बाकी जैसे आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हो उसमें भी आपको काफ़ी सुविधा मिल सकती है। तो इस तरीके से, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि ये तिलहनी फसल है इसीलिए आपको हमेशा समतल भूमि ही चुनना पड़ेगा खेती के लिए, क्योंकि अगर कहीं गड्ढे की जमीन हुई या कहीं कम ऊंचाई वाली या ढलान वाली जमीन हुई तो उसमें क्या होता है कि कहीं से पानी एकत्रित आ करके एकत्रित हो जाएगा, इससे जड़ में फिर तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, सड़ने के परेशानी हो सकती हैं। तो इन सब बातों का किस तरीके का जमीन हमें समतल करना है, मिट्टी हमारी ऐसी हुई कि नमी कुछ समय तक बरकरार रख सके और उसके बाद अगर हम सिंचाई दें तो मतलब उसके अंदर जमे ना, तो इन सब बातों का किसान भाइयों काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा।
1: जी मैम, मैम एक और बात होती है ध्यान देने वाली, बुआई का समय। तो बुआई का सही समय क्या होना चाहिए और मौसम किस प्रकार का अनुकूल होता है, बीज की सही मात्रा क्या होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर जहाँ तक हम बुआई की बात करें तो जैसे आप जानते हो कि बिहार जो हमारा है वो राइस क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड है, तो खरीफ के बाद हमारा जो रबी में है, तो अभी जैसे अगर हमारे जो धान सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट तक जो हमारे अगर फसल राइस की कट जाती है, धान काट लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है आपका कुसुम को लगाने का। मतलब आप कह लो सितंबर लास्ट हफ्ता से लेकर के आप अक्टूबर के 15 तारीख तक भी लगा देते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अक्टूबर के लास्ट हफ्ते तक भी जाते हो तब भी आप देखोगे कि इसका जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कम से कम 4-5 महीने का क्रॉप है, तो आपका फसल जो है वो उसमें एक तरह का आप कहते हो कि जब दाना बनने लगता है तो तापमान बढ़ जाता है, तो हीट स्ट्रेस हो जाता है, तो उपज घट जाती है। तो इन सब बातों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप 15 अक्टूबर से लेकर के आप इसको 10 नवंबर तक आप अपनी बुआई कंप्लीट कर लें।
1: जी मैम,
0: और अगर बीज की मात्रा की बात की जाए तो हम अगर देखेंगे तो 3-5 केजी पर एकड़ बीज दर है इसका।
1: जी,
0: और बुआई करते समय सबसे ध्यान देंगे जैसा मैंने आपको बताया कि छिटाव नहीं करना है बीज का, आप पंक्ति से पंक्ति लगाएंगे तो एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी आपकी 45 सेंटीमीटर रहेगी और पौधे से पौधे की बीच की दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर रहेगी।
1: जी मैम, मैम अब बात करते हैं पोषण यानी कि उर्वरक प्रबंधन के बारे में और अंतर फसल भी क्या कुसुम के साथ की जा सकती है।
0: बिल्कुल, एक चीज और जानकारी देना चाहूंगी कि कुछ भाई बहन कहते हैं कि

0: बीज हमारा जैसे पुराना बीज है या उस तरीके का बीज इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस तरीके से बीज का उपचार जरूर कर लीजिए। जैसे हम आप कह लो थीरम कैप्टन या कार्बन डजीम से 2 ग्राम प्रति केजी ऑफ बीज से हम बीज उपचार करके ही बीज को हम लगाते हैं। और जहां तक की बात आई आपकी उर्वरक की, तो हम इसमें 60N 40P 20K और ये तिलहनी फसल है तो हमें तेल बनने के लिए सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी, तो 20 kg हम सल्फर प्रति हेक्टेयर की मात्रा में इस्तेमाल करते हैं।
1: जी मैम,
0: और मैंने आपको बताया कि इसमें कांटेदार होने की वजह से किसान इसको जनरली अपने क्रॉपिंग सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अगर इसको चाहें तो अन्य फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे चना के साथ लगा सकते हैं 2:4 के अनुपात में, या हम इसे मसूर के साथ लगा सकते हैं, इसे हम तीसी के साथ लगा सकते हैं। तो इसको हम एक सोल क्रॉप लेके, अकेला एक क्रॉप ना लेकर के, या तो आप बॉर्डर क्रॉप लीजिए और नहीं तो आप इसको इंटरक्रॉपिंग में चना तीसी और मसूर के साथ लगाएं।
1: जी मैम,
0: और कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी हैं उद्यानी बागवानी के हैं, जैसे आप इसको आलू के साथ भी लगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, बीन्स के साथ भी लगा सकते हैं।
1: जी, यानी कि इंटरक्रॉपिंग करके किसान भाई बहन अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी। और मैम, अगर हम खरपतवार के बारे में बात करें तो खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, साथ ही सिंचाई का ध्यान कैसे रखें?
0: बिल्कुल, जैसे आप अगर देखोगे तो सबसे पहले मैं अगर सिंचाई की बात करूं तो देखो, जनरली आप देखोगे रबी सीजन में उस तरीके का तापमान हमारा होता नहीं है कि हमें बार बार जरूरत पड़े, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फसल हमारा 6 महीने की अवधि की है, तो जब हम शुरुआत में अगर हम लगा रहे हैं नवम्बर में, तो उस समय हमारा तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। कम से कम हमारा 10 से 12 दिन में हमारा अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेशन आ जाता है, नई पौधे बनने लगते हैं। तो जैसे हमारा 10-12 दिन के बाद आप देखोगे तो पहला फ्लावरिंग आने के लिए कम से कम हमें आपको 60 दिन लगते हैं, मतलब 2 महीने के बाद। तब तक आप देखोगे कि हमारा जनवरी खत्म होके हम फरवरी में एंटर कर रहे हैं। अब फरवरी मार्च का महीना ऐसा होता है कि आपका फूल बन के अब दाना बनने के समय आ गई है, तो इस समय पे किसान भाई बहनों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप देखोगे कि मिट्टी हाथ में उठा करके देखोगे, अगर वो आटे की तरह हाथ में नहीं बन रहा है, उसके अंदर नमी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें एक सिंचाई जरूर दे दोगे। लेकिन आप सिंचाई देने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहली सिंचाई आपको देना है बुआई करने के बाद, 10-15 दिन के बाद दें, तुरंत ना डालें, ठीक है, 10-15 दिन के बाद डालें। उसके बाद दूसरी सिंचाई आप जैसे पुष्पन होने लगता है, फ्लावरिंग होता है, उसके आरंभ में दें, ताकि हमारा फिर अच्छे से बीज की मात्रा बन सके और तेल बन सके। और जहां तक की बात है खरपतवार, हाँ, इसमें खरपतवार से कंपटीशन होता है इस पौधे में, स्पेशली जब शुरुआती दौर होता है, तो उस केस में आप देखोगे कि हम फ्लोरा क्लोरीन और एल्कोर, उसके बाद पेंडीमिथेलिन, तो इन सब को हम जैसे पेंडीमिथेलिन आप 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा से 600 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके आप मिट्टी में छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी मैम, मैम खरपतवार के साथ क्या कुसुम की फसलों में रोग और कीटों का भी प्रकोप रहता है?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम खरपतवार की बात अगर करें हम, तो खरपतवार के साथ साथ किसी भी फसल में आप जानते हो कि कीड़े मकोड़े या बीमारी आती है, तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एफिड माहू जिसे कहते हैं, तो या फिर आप देखोगे कि कर्नाटक के एरिया में या महाराष्ट्र में आप देखोगे तो एक तरह की झल्लियाँ पत्तों में पाई जाती हैं, तो इस तरह के कुछ कुछ आपको कीड़े मकोड़े और देखोगे आप बीमारी लगती है, तो आप माहू से जिस प्रकार से अगर आप चाहोगे तो माहू से भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, जैसे भीमा हो गई, AS1 है, तो ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो माहू के प्रतिरोधक किस्में हैं, जो मतलब अगर आप देखोगे तो प्रकोप से बचा सकती है, माहू के प्रकोप से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखोगे कि

है। तो इस तरह के कुछ कुछ आपको कीड़े मकोड़े और देखोगे आप बीमारी लगती है। तो आप माहू से जिस प्रकार से अगर आप चाहोगे तो माहू से भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, जैसे भीमा हो गई, S1 है। तो ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो माहू के प्रतिरोधक किस्में हैं, जो मतलब अगर आप देखोगे तो प्रकोप से बचा सकती है, माहू के प्रकोप से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखोगे कि

करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है उपलब्ध अगर है हमारे पास, तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जब जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आरजे अनु और हर रोज़ की तरह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम. कृषि अवशेषों से कंपोस्ट आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी हमारे इस कार्यक्रम में. तो इस कार्यक्रम को लेकर और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ए के झा जी. मैं आपको बता दूँ, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है.
1: सरल शब्दों में कृत्रिम विधि द्वारा

0: केचुआ पालने को वर्मी कल्चर और इन्हीं केचुआ द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह कि यदि केचुआ की सहायता से जो खाद बनाया जाता है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है।
1: जी, तो केचुआ की सहायता से जो खाद बनाया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है केचुआ, तो केचुआ तो हमारे किसान भाई तो ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि ये केचुआ क्या है सर, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें और इसकी क्या उपयोगिता है इसे भी बताएं।
0: केचुआ मनुष्य के लिए बहुउपयोगी जीव है। इसकी महत्ता को सर्वप्रथम सन 1881 में विश्वविख्यात प्राणी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने बताया था। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे देशों में केचुआ का प्रयोग मानव आहार में प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। कैलिफोर्निया में इसका उपयोग आमलेट तथा केक बनाने में किया जाता है। केचुआ से बने सूप विदेशों में स्कूली बच्चे को प्रदान किया जाता है और उच्च ऊर्जा मान लगभग 4100 कैलोरी प्रति ग्राम के कारण केचुओ को सुखाकर उसका चूर्ण बनाया जाता है और इसका उपयोग मानव आहार में किया जाता है। यूं तो केचुआ का प्रयोग औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन निर्माण में भी किया जाता है, परंतु भारतवर्ष में इसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए किया जाता है, खास करके वर्मी कंपोस्ट बना करके ये काम किया जाता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने केचुआ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले ही सर ने आपको बताया था कि इसी की मदद से जो है खाद तैयार किए जाते हैं और ये बहुत उपयोगी होते हैं फसलों के लिए, क्योंकि उनके बढ़वार में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सर, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर की, तो इसके मापदंड के बारे में हम जानना चाहेंगे सर।
0: ऐसा है कि देखिए, जैसे कि यूरिया है या DAP है, इसके लिए फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर ने एक दिशा निर्देश तय किया है कि यदि इस ढंग की गुणवत्ता है तभी जा करके उस यूरिया का या DAP का आप बिक्री कर सकते हैं। इसी तरह से अब वर्मी कंपोस्ट को भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत लाया गया हुआ है, यानी कि यदि वह गुणवत्ता है आपके वर्मी कंपोस्ट में तभी आप इसका विपणन कर सकते हैं, आप इसका व्यापार कर सकते हैं या व्यापार करने के लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इसमें क्या क्या चीज़ ऐसा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बनाते हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने के कारण उनका जो उत्पाद है वह बिक नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहली बात, जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें 15 से लेकर 25% तक नमी होनी चाहिए। इसका कण का आकार ऐसा होना चाहिए कि 90% वर्मी कंपोस्ट 4 मिलीमीटर की जाली से छन जाए। दूसरी बात, इसमें कुल जैविक कार्बन 18% होना चाहिए, नाइट्रोजन कम से कम 1% जरूर होना चाहिए, फॉस्फोरस 0.8% होना चाहिए, पोटास यह भी 0.8% इसमें कम से कम होना चाहिए, जो इसका स्थूल घनत्व होता है जिसको बल डेंसिटी कहते हैं यह 0.7 से 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन जो भारी तत्व हैं जो हमारे मिट्टी में प्रदूषण भी पैदा करते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे जो अधिकतम कैडमियम है वह 5 PPM तक ही अलाउड है, उससे ज़्यादा है तो आप उसको नहीं बेच सकते हैं। जो क्रोमियम है, क्रोमियम आपको 50 PPM होना चाहिए, 50 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें, और निकल यह भी 50 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेड ये 100 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में ये चीज़ वर्णन कर दिया गया है कि इस तरह की यदि गुणवत्ता है तभी जाकर के आप वर्मी कंपोस्ट की बिक्री कर सकते हैं, उसी ढंग का वर्मी कंपोस्ट आपको बनाना है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, और अब हम बात करेंगे फसल अवशेषों के बारे में। क्या हमारे देश में इतने फसल अवशेष हैं जिनका इस्तेमाल हम वर्मी कंपोस्ट में कर सकें? अगर है तो सर जानना चाहेंगे कि।
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारी जो आज की निर्भरता है वह रासायनिक उर्वरक के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में जो गोबर या फसल अवशेष हैं वह भी काफ़ी मात्रा में है, और उस गोबर या फसल अवशेष का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पोषक तत्व की आपूर्ति रासायनिक उर्वरक करने से बच सकते हैं। अब मैं उसको आपको बताऊं, जो वैज्ञानिक आकलन है इसे ये पता चला है कि हमारे देश में उपलब्ध मानव एवं पशु मल से लगभग 110 लाख टन पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रदान करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त जो प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले 3567 लाख टन फसल अवशेष भी हैं। जिससे लगभग 74 लाख टन पोषक तत्व यानी

0: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आपूर्ति हम कर सकते हैं। इस फसल अवशेषों एवं अवशिष्ट पदार्थों के उचित उपयोग बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर हमारी जो निर्भरता है वह कम हो और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य टिकाऊ बन सके। अब मैं एक चीज़ बताऊं कि बर्मी कंपोस्ट की इतनी बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट नामक इस जैविक खाद में सड़ी हुए गोबर के खाद के तुलना में 3 से 4 गुना अधिक पोषक तत्व तो उपलब्ध होता है। और हमारा जो विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, वह आपको बनाता है संवर्धित वर्मी कंपोस्ट, इनरिच वर्मी कंपोस्ट बनाता है, और इसमें फास्फोरस, गंधक, इस सब की मात्रा और ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यदि कोई किसान संवर्धित वर्मी कंपोस्ट बनाता है तो उसकी उसका पोषक मान और ज़्यादा होगा, जिससे हमें कम रासायनिक उर्वरक डालने की आवश्यकता होगी, या हमें वर्मी कंपोस्ट ही डालना है तो हमें कम वर्मी कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जैसे अभी सामान्यतया जो सामान्य वर्मी कंपोस्ट है वो 5 टन प्रति हेक्टेयर आपको डालना होगा, लेकिन उसमें यदि नाइट्रोजन ज़्यादा है तो आपको उसकी कम मात्रा आपको डालनी होगी। वास्तव में देखिए, एक तो मोटी सी बात कह दी जाती है कि 5 टन पर हेक्टेयर आप डालें, लेकिन यह बात आप यदि खुद निर्धारित करना चाहते हैं तो यह देखिए कि फसल में कितनी मांग है, नाइट्रोजन की कितनी मांग है। जैसे मान लीजिए सेंटर राइस आप ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर यदि आपको सपोज कीजिए कि 40 kg नाइट्रोजन डालना है, आप 1% वाला बर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो वहां पर आपको 1% वाला आपको ये समझिए कि 1 टन यूज किया तो 10 kg मिला, और 4 टन आपने यूज किया तो 40 kg मिला। लेकिन यदि वहीं पर 2% नाइट्रोजन वाला आप बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं तो वहां 2 टन ही से ही काम चलेगा, यानी आधी मात्रा उसकी बच जाएगी। तो अभी चूंकि बहुत ज़्यादा बर्मी कंपोस्ट डालने की बात होती है, इसलिए बहुत सारे किसान नहीं इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम संवर्धित बर्मी कंपोस्ट करते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तब किसान ज़्यादा प्रयोग करेंगे और कम मात्रा ही डाल करके ही ज़्यादा आप रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं। तो इसीलिए यह जरूरी है कि हम इस ढंग के बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें।
1: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपको बताई गई हैं और डॉक्टर साहब ने कृषि अवशेषों से कंपोस्ट कैसे बनाना है उससे जुड़े जितनी भी बातें यहाँ पर आपको बताए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
0: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब

0: दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर,
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों

0: को बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में माँ बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी

देंगे, अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें

0: में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे एरिया

0: हीटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियाँ कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है।

0: इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूँ

आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आप को अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है, आपका मूड कैसा होगा। अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है।
और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय

लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफी डल हो जाती है। तो इन सारी चीजों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे जरूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना। आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए। धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही, अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकती हैं तो ज़रूर, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहें 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार।

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या?

0: क्या
1: बच्ची को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
0: अच्छा
2: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
3: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
5: हर घर सूर्यघर।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमारा यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और जी हाँ, हम लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी उपयोगी बातें। तो आज भी एक ऐसे ही विषय को हम अपने उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं, और हमारा विषय है मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का पहचान एवं इनका नियंत्रण। और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, और सर वैज्ञानिक हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये मक्के में किस सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अमूमन आप किसान भाइयों, जो हम लोग बिहार में देखते हैं कि दो सीजन में मक्के लोग लगाते हैं, एक अभी जो लगाए होंगे खरीफ सीजन में जो इनका अभी चल रहा है, और दूसरा जो है कि रबी सीजन में लगाते हैं। तो उनका जो है वितरण अलग अलग जिले में

लोग अलग अलग जिनको जैसा लगता है वैसे लगाते हैं। तो ये जो फॉल आर्मी बम है, ये आप किसान भाइयों में इसको पहचानने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कीट है एक तना छेदक होता है, तो तना छेदक के जैसा ही ये मिलता जुलता है। लेकिन दोनों में तुलना करना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए कि अगर तना छेदक आपका लगा हुआ है तो उसके लिए अलग उसका नियंत्रण होता है, और फॉल आर्मी बम अगर लगा हुआ है तो उसके लिए आपको अलग से उसका नियंत्रण के उपाय करने होंगे, कीटनाशी देने होंगे। तो सबसे पहले दोनों को आपको समझना है कि कैसे इनका कैसे नियंत्रण होता है या कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब तना छेदक मुख्यतः जब होता है, तो आप देखेंगे कि या आपके मक्के के जो पौधे हैं, जब घुटने या उसके नीचे भी जब रहता है, तो आप देखेंगे कि जो मक्का के जो पत्तियां हैं उसमें लाइन से तीन आपको गोला गोला कटे हुए का निशान दिखेंगे। तो ये तना छेदक के चलते हो सकता है। और आप जब देखेंगे कि जो उनका जो बढ़वार होने वाला जो पोजीशन होता है, या जिसको हम लोग मक्के का कंठ कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हो सकता है कि कुछ जो इसके जो शिशु होते हैं वो तना छेदक के वो उसमें मिलेंगे आपको। तो ये है तना छेदक का। और ये जो तना छेदक है, मतलब आपके फसल को थोड़ा धीमी रफ्तार से क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर फॉल आर्मी बम से अगर आपके पौधे अगर आक्रांत हो जाते हैं, तो ये आपके पौधे को बड़ी तेज़ी से क्षतिग्रस्त करते हैं। और साथ ही में ये जब आपके मक्के का जो कंठ होता है, ये भी उसी में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये अपना स्क्रीटा या कहे कि उत्सर्जन, जो इनका छोटा छोटा जो जैसे कि केचुआ का जो जो बिष्टा होता है, मल होता है, उसी टाइप से इसके छोटे छोटे आपके उसके कंठ में दिखाई देंगे कि पड़ा हुआ है, जो काले कलर का मुख्यतः होता है। साथ ही में ये फॉल आर्मी वर्म जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब मुख्यतः जैसे कि दो सीजन में हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग मक्का लगाते हैं, तो अमूमन देखा गया क्या कि ये जो खरीफ सीजन होता है, खरीफ सीजन में इसका प्रकोप रबी के तुलना में जो ठंडे सीजन में हम लोग जो करते हैं उसके तुलना में इसमें इसके समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके आने के कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण ये है कि इस मौसम में वर्षा होती रहती है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, जो इस कीट के बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा होता है। अब है क्या कि कुछ और कारण हैं कि उसको कैसे आप पहचानिएगा, कैसे मतलब जो कीट है तो तना छेदक है या फॉल आर्मी वर्म का कीट है, उसको आप कैसे पहचानिएगा। क्योंकि जब तक आप उसको सही से पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसका समुचित उपचार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का आक्रामकता भी हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि अलग अलग है, एक थोड़ा धीमी रफ्तार से आपके पौधे को क्षतिग्रस्त करता है, दूसरा जल्दी, जिसमें आर्मी लगा हुआ है। आर्मी का काम आप लोग सब लोग को पता है कि आर्मी अपने काम बहुत तेज़ी रफ्तार से करता है, इसीलिए इसमें आर्मी शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब इसको बचाने कैसे, तो हम आपको फॉल आर्मी बॉम के बारे में बता रहे हैं। अभी तना छेदक को आप रहने दीजिए, उसको जो जितना हम बताए लगभग उसे तना छेदक आप पहचान जाएंगे। अब फॉल आर्मी बॉम को कैसे पहचानेंगे, तो ये जो कीट होता है तना छेदक की तरह दिखता है, लेकिन ये उससे मोटा और लंबा होता है। साथ में ही इनके जो शरीर होता है उस पे काले धारियां आगे से पीछे तक, मतलब सर से उसके पूंछ तक काले धारियां रहती हैं। अब एक चीज, दो चीज़ और है जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका जो जिधर जो मुंह होता है या अगला हिस्सा में, तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो इंग्लिश का उल्टा वाई इसके माथे पे निशान होता है। जैसे हर जैसे कि किसी किसी पशु है या जो भी है उस पर कुछ ना कुछ निशान होता है, हम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से इसमें जो उल्टा वाई का निशान होता है इसके आगे वाला पोर्शन, जिधर सर बोलते हैं उस साइड में। और जब पीछे साइड में जब आप आएंगे, तो पीछे साइड में इसके चार काले काले धब्बे होते हैं, जो बड़ी आसानी से आप ऐसे ही आँख से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ इसके पहचानने का। अब दूसरी बात क्या है,

ये जो पहचानने का है तो इसमें लगभग लगभग नहीं 6 इन स्टार होते हैं। अभी आप बताएंगे कि इन स्टार क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जो बच्चे होते हैं तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद वो पहले सोया रहता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर खड़ा होने के बाद वो रफ्तार से चलने लगता है। तो जब तक वो, तो ये अलग अलग उनके फेज है हमारे जो मनुष्य हैं उनके बच्चे का। इसी तरह से इस कीट के भी 6 फेज है। तो 6 फेज में जो उनका जो फेज 1 होगा या 2 होगा, तो वो अंडा के बाद, जस्ट अंडा के बाद जो निकलने वाला वो उसका अवस्था होता है, फेज इंग्लिश में बोले अवस्था होता है। तो उस कंडीशन में उस कीट का साइज छोटा होगा, और साइज जब छोटा होगा तो उसी रफ्तार में वो आपके फसल को भी उस समय में थोड़ा धीमा धीमा रफ्तार करेंगे, और उसको कंट्रोल भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब यही कीट जब है खाते खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीटनाशी है उससे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया। अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को, मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है। लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब 4-5 पत्तियों का हो, या कह लें कि एक महीने के जब आसपास होता है, उसके आगे जब बढ़ना होता है, तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं, जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं, उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है। और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं। और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह, जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज़ होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है, उस टाइप से आपके पत्तियां दिखेंगे, जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियां को पूरा जो कंठ वाले हैं जो बढ़ने वाले उसको तो खा ही गया, और जो दूसरी जो पत्तियाँ बची हुई हैं उसको आर पर दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मी बम के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है, ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से। साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं, तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए, तो ये 3-4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मी बम है, ये जब अगर मक्का अगर क्या पौधा अगर नहीं रहे, जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है। तो ये जो फॉल आर्मी बम है, ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रामनी फैमिली के जो हमारे फसल है, तो उन पे भी, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपका ज्वार बाजरा ये सब पे भी ये जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है। अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया, मक्का कोई काट लिए, तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पे भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो वयस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80-100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो वयस्क हैं उनका।

इनका जो जो क्षति करने वाला है, ये इनके वयस्क क्षति करते हैं, जो चलते हैं, जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है, तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का के फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके ओर ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए कि सब किसान भाई मिल करके एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा एक टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये मूव करे। और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आपको दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मी वर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे, इसका उपचार कैसे करें, तो वो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बढ़वार ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बढ़वार होता है। उसके जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है। और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है। इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है, ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है। लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है। और इन सारे चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपके प्रकोप होता है, तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्ली नुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि

0: किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है। मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर, तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है तो दो कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोलेथ्रिन 9.6%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में आपको डालना है, और मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोलेथ्रिन 9.5% का देना है। और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें जो है कोई जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है, ताकि वो आपके सर्विस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम, 11.7%, इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टिकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है ये फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को कर करके आप अपने जो मक्के की जो फसल है उसमें कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, अभी आपने फॉल आर्मी वर्म के बारे में जाना और ये कीट की पहचान हम कैसे करेंगे इस कीट की, और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है, और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: मैम सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।
2: बिल्कुल, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएँ हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं तथा 48% जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40-45% से भी अधिक होती है और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
0: जी मैम,
2: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं ये तेजी से हो रहा है और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है बल्कि वो एक उत्पादन प्रसंस्करण विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय हैं और पशुपालन दुग्ध मत्स्य बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
0: मैम आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है, लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
2: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा, क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है। तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल। और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है जिसमें कि अगर कहें तो 1,000,000 स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है और अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,000,000 से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला।

0: है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
1: तो मैम, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
0: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जानें तो इसका, इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में, तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया, महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं और इनसे उनका आंतरिक ऋण, बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है, और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें जो हमारी महिलाएं हैं, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम, बकरी पालन हो गया, या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात, जैसे अचार, पापड़, मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है, वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सामूहिक खेती हो गया, या इनपुट के माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी, या स्वास्थ्य या पोषण और शिक्षा में सुधार, ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
1: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
0: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार है वो बहुत पहल चलाती हैं, और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएं बचत करती हैं और आपस में ऋण भी ले लेती हैं, और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट, या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है, सामूहिक खेती, इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से स्तर को देखें और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें, तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य न केवल शिक्षा और शोध है, बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुंचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ, तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, या मधुमक्खी पालन के ऊपर, या जैविक खेती, ऐसे पशुपालन, ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक, धान उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पर, जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं, तो विश्वविद्यालय एफएम रेडियो जैसे 90.8 एफएम ग्रीन है, और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है महिला सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयात्र

0: है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है। और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत

0: बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुँच है वो बढ़ी है। हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो, और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में, और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
1: तो मैम, भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियाँ भी होती है, तो क्या चुनौतियाँ भी सामने आती हैं?
0: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी उसके फ़ायदे होते हैं उसके चुनौतियाँ भी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियाँ भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है, और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है। तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है, और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने कि जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके, और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं, तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
1: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं, और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं
1: जी।
0: और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
1: जी मैम, धन्यवाद। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?

0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
3: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों

0: के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा छेद की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल।

पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए, आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में, खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओ, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहे लिख ले या स्केच बना ले। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओ, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई, एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि ये काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं, जबकि सच्चाई ये है श्रोताओ, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं साथियों। वो था ग्रेफाइट, यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था, हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया, फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे। यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का
या गाढ़ा

देखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB, तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक, इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई, अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त

0: दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथ हुसैन, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथ हुसैन, हम सब सैनिक हैं, पर हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।

0: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
0: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
0: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
0: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
0: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
0: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या

0: ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
1: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
2: यस सर।
1: नाथ सिंह, निशाना साधो।
0: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
1: फायर!
0: सर,
1: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
2: जी।
1: फायर!
0: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
1: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो।
0: ठीक है सर।
3: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा।

0: बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: सीमा
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं

90.8 FM ग्रीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं,
सही जानकारी से फैसला ले। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश।

0: जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं।

धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक

0: ध्यान ना देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये

0: ये मुख है और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगर लिंक्स ईयर लिंक्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी ब कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी ब कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति D96

0: पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में और आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण है लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है। अगर कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसका प्रमाण हमारे पास हो, हमारे पास उसका सर्टिफिकेट हो। और ख़ास तौर से जब आप जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अगर जैविक खेती करते हैं तो उसका आपके पास प्रमाण हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो। आज इसी विषय में चर्चा करने के लिए यानी कि जैविक व प्राकृतिक खेती में प्रमाणीकरण की क्या महत्ता है और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट BAU सबौर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती में प्रमाणीकरण का क्या महत्व है।
1: जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया सुरक्षित एवं रसायन मुक्त भोजन की ओर बढ़ रही है। लोग ऐसे फल, सब्जियां, अनाज और मसाले खरीदना चाहते हैं जिनमें रासायनिक अवशेष

0: बिल्कुल भी न हो। भारत सदियों से प्राकृतिक खेती की परंपरा वाला देश है। गोबर, गौमूत्र, हरी खाद, जैव उर्वरक और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से खेती करना हमारी सांस्कृतिक विरासत भी रही है। तो मुख्यतः आज दो प्रमुख प्रणालियां अधिक चर्चा में हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। जैविक खेती जिसमें निर्धारित मानकों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा जो प्राकृतिक खेती है नेचुरल फार्मिंग, जिसमें स्थानीय संसाधनों जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, आशादन तथा प्राकृतिक जैव विविधता पर विशेष बल दिया जाता है। इन दोनों प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना, किसानों की लागत को कम करना, उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है।
1: जी मैम, तो मैम अगर हम प्रमाणीकरण की बात करें तो इसे हम क्या समझते हैं?
0: जी, जैसे कि यदि कोई किसान कहे कि वह जैविक खेती कर रहा है तो उपभोक्ता जो है वो कैसे विश्वास करेगा? यहीं पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। प्रमाणीकरण का सीधा सीधा अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा यह प्रमाणित करना कि किसान निर्धारित जैविक अथवा प्राकृतिक खेती के मानकों का पालन कर रहा है। सरल शब्दों में प्रमाणीकरण किसान और उपभोक्ता के बीच एक विश्वास का प्रमाण है। जिस प्रकार किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र मिलता है, उसी प्रकार जैविक खेती करने वाले किसान को निरीक्षण एवं सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।
1: जी मैम, तो मैम ये क्यों जरूरी है?
0: जी, आप जानते हैं कि प्रमाणीकरण के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि उपभोक्ता पर सबसे पहला लाभ है कि विश्वास जगता है। तो आज ग्राहक केवल किसान की बात पर विश्वास नहीं करता, उसे प्रमाण भी चाहिए। तो प्रमाण पत्र देखकर वह निश्चिंत होकर उस उत्पाद को खरीद सकता है। फिर बेहतर बाजार मिलने की संभावना, प्रमाणित उत्पादों की मांग सुपरमार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, निर्यात बाजार, होटल उद्योग, अस्पताल, स्कूल, जैविक दुकानों, इन सभी संस्थानों पर लगातार बढ़ रही है। इससे जो किसान भाई हैं उनको मूल्य में भी अधिक प्राप्ति होती है। प्रमाणित जैविक उत्पादों को सामान्य उत्पादों की तुलना से बेहतर मूल्य मिल सकता है। फिर निर्यात की सुविधा मिलती है। विदेशों में अधिकांश खरीदार केवल प्रमाणित जैविक उत्पाद ही स्वीकार करते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। कई सरकारी योजनाओं में प्रमाणित किसानों एवं FPO को प्राथमिकता दी जाती है। फिर आपको किसान उत्पादक संगठन जो है FPO, उनको भी मजबूती मिलती है। यदि किसी FPO के सभी सदस्य प्रमाणित हो तो सामूहिक विपणन आसान हो जाता है, ब्रांड बनाना सरल हो जाता है और बड़ी कंपनियों से अनुबंध करना भी आसान हो जाता है।
1: जी मैम, मैम इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आप अब हमें ये बताइए कि भारत में प्रमुख प्रमाणीकरण प्रणालियां कौन कौन सी हैं?
0: जी, तो बेसिकली मुख्यतः दो प्रकार की प्रमाणीकरण प्रणालियां जो है वो प्रचलित है। पहला है NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यह भारत सरकार की आधिकारिक प्रणाली है। इसका उपयोग मुख्यतः निर्यात, बड़े व्यापार, प्रोसेसिंग उद्योग के लिए किया जाता है। इससे हम तृतीय पक्ष मतलब थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और दूसरा है PGS, जो कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है। यह छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विकसित प्रणाली है। इसकी विशेषता कम खर्च, समूह आधारित, पारदर्शी, स्थानीय स्तर पर निरीक्षण, किसानों की सहभागिता है। इसमें किसान स्वयं समूह बनाकर एक दूसरे के खेतों का निरीक्षण करते हैं। प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न राज्यों में स्थानीय सत्यापन प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। कई स्थानों पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को भी समूह आधारित सत्यापन एवं विपणन सहायता प्रदान की जाती है।
1: जी मैम, मैम जो हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती करते हैं या जैविक खेती करते हैं, और अगर वो अब चाहते हैं कि अपने इस चीज का उन्हें प्रमाण मिले, तो उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना होगा?
0: जी, थोड़ी सी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जो कि चरणबद्ध तरीके से की जाती है। पहले चरण में किसान का पंजीकरण होता है। किसान व्यक्तिगत रूप से या एफपीओ के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दूसरे चरण में खेत का विवरण, जैसे कि खेत का नक्शा,

0: क्षेत्रफल, फसल विवरण, कौन कौन से किस किस सीजन में कौन से फसल लगाते हैं, पूर्व में उपयोग किए गए रसायनों की जानकारी दी जाती है। तीसरे चरण में, जिसको हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं, रूपांतरण अवधि, इसमें अगर आप पहले से रासायनिक खेती कर रहे हैं तो तुरंत जैविक प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, इसे हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। जैसे कि पहला साल C1 कहते हैं, दूसरा C2 कहते हैं, तो लगभग 2 से 3 पूरे C3 एक उत्पाद को या फिर उसको प्रमाण पत्र देने के लिए 3 साल आवश्यक है। तो इसको रूपांतरण, 3 साल तक इसको रूपांतरण अवधि में हम कहेंगे, जिसमें कि किसान जैविक मानकों का पालन करते हैं। चौथे चरण में अभिलेख को संधारित करना है। किसानों को नियमित रूप से रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे कि बीज कहाँ से खरीद रहे हैं, खाद कब डाली, जैविक घोल कब बनाया, सिंचाई कब कब किया, फसल कटाई कब की, बिक्री कहाँ किए, कितने पैसे में किए। और पांचवें चरण में निरीक्षण का समय आता है, जिसमें कि प्रमाणीकरण संस्था या समूह द्वारा खेत का निरीक्षण किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कहीं रासायनिक उर्वरक तो नहीं प्रयोग किए गए हैं, प्रबंधित कीटनाशकों का उपयोग तो नहीं हुआ है, जैविक नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। फिर छठा चरण में प्रयोगशाला परीक्षण, हम लैब में उसका परीक्षण करते हैं, कुछ परिस्थितियों में उत्पाद का भी परीक्षण किया जाता है। फिर सातवें चरण में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें मानकों के पालन के बाद किसान को प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। इसके बाद किसान अपने उत्पाद को प्रमाणित जैविक उत्पाद के रूप में बेच सकता है।
1: तो ये तो बात हो गई मैम प्रक्रिया की, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान किसान भाई बहनों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, यानी कि सावधानियों की। तो क्या क्या सावधानी जो हमारे किसान भाई बहनों को इस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान बरतनी चाहिए?
0: जी, यदि किसान प्रमाणीकरण चाहते हैं तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, प्रतिबंधित कीटनाशकों से बचें, पड़ोसी खेत में रासायनिक बहाव जो है उसको बंद बना करके उसको रोकें, खेत के रिकॉर्ड नियमित रूप से रखें, जैविक बीज या इनपुट का ही उपयोग करें और समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करें।
1: जी मैम, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो प्रमाणीकरण के क्या अवसर है?
0: जी, बिहार में प्रमाणीकरण, जैविक प्रमाणीकरण के बहुत सारे अवसर हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मखाना, कतरनी चावल, सब्जियों, मसाले, फल, दलहन, इन सब में आप जैविक प्रमाणीकरण कर सकते हैं। जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। यदि किसान FPO के माध्यम से समूह बनाकर प्रमाणीकरण कराए तो लागत भी कम होगी और विपणन भी आसान होगा, ब्रांड भी विकसित होगा, ऑनलाइन बिक्री भी बढ़ेगी एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच भी संभव होगी।
1: जी मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश तो जैसे कि आज के समय में केवल जैविक खेती करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रमाणीकरण भी उतना ही आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि प्रमाणीकरण केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि किसान की ईमानदारी, गुणवत्ता और उपभोक्ता के विश्वास का प्रतीक है। यदि हम संगठित होकर किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्रमाणीकरण प्राप्त करें तो हमारी उपज को बेहतर पहचान, बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। और याद रखें कि स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ किसान और स्वस्थ समाज का आधार है प्रमाणित जैविक एवं प्राकृतिक खेती। धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम। तो किसान भाई बहनों, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप जितना संभव हो सके धीरे धीरे ही सही पर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, और अगर आप पहले से इस ओर काम कर रहे हैं तो आप आगे इस बारे में सोचें कि प्रमाण आप अपने कार्य का ले, यानी कि प्रमाणीकरण की ओर बढ़ें। तो मैम ने जिस प्रक्रिया के बारे में बताया और मैम ने जितने विस्तार से बातें बताई, आप उन बातों का ध्यान रखें। और किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी

आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: ಋಷಿ. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन. स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हाँ, किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके खेतों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अगर दाल की बात करें कि उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें. बहुत सारे दिक्कतें उन्हें आती हैं इस खेती में और ख़ास तौर पर उड़द दाल की खेती में. तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आर एन गुप्ता. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और बहुत सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब देने वाले हैं. सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब. जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने राज्य बिहार की बात करें तो उड़द की जो खेती होती है बिहार में, तो क्या महत्व है इसका?
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़द जो है एक खरीफ मौसम में और गर्मा मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है, और हमारे बिहार में इसका काफ़ी स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार में करीब करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास का जो है धान की कटाई के बाद खेत जो है करीब करीब 90 दिनों के आसपास वो खाली पड़े रहते हैं. तो इन जगहों का हम समुचित उपयोग करके इसका जो है दायरा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं. अभी इसमें मुश्किल से जो है 20 से 25 हजार हेक्टेयर के आसपास बिहार में इसकी खेती की जाती है. तो इसका काफ़ी दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में और अच्छा उत्पादन दे सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी आमदनी तो बढ़ती है तथा हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है. तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है.
0: जी जी डॉक्टर साहब, अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब बुआई करें, सिंचाई कैसे करें, सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा.
1: सबसे पहले है कि आपको जो उड़द फसल लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कि खेतों को बढ़िया से जुताई करनी चाहिए. कल्टीवेटर के द्वारा उसकी जुताई की सकते हैं, हल बैल के द्वारा भी उसकी जुताई कर सकते हैं, और जुताई के बाद उसमें पाटा लगा देते हैं. और इसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि जो है हमारा ज़मीन जो है वो समतल हो. अगर ज़मीन हमारा समतल रहेगा तो हम जो है हर तरह से जो है उसका सही उपयोग कर सकते हैं. खासकर पौधे में जो जल की जमाव की समस्या हो या जल की कमी की समस्या हो या पोषक तत्व का जो प्रबंधन की समस्या हो, उससे ये कमी हो जाती है. तो ये भूमि समिति के लिए समतलीकरण काफ़ी आवश्यक है. इसलिए हमारा जो ज़मीन है, जो खेत है, वो समतल होना चाहिए, क्योंकि उड़द की फसल में जल जमाव के कारण भी जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है. तो सबसे पहले जो है हमारा खेतों की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, और उसमें जो है जल निकास की प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो है जमने की समस्या ये ना हो. तो खेत की तैयारी पहली बात कर लें. दूसरी बात है कि जो है किन किन जो है हम किस्मों का चुनाव करें. तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे नवीन प्रजाति है, T9 है, उड़द 30 और उड़द 31. ये सब प्रजातियाँ जो है हमारे बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और ये जो है करीब हमको 80 से 85 दिन और करीब करीब 90 दिन के आसपास ये हम लोग को तैयार हो जाती है
0: जी.
1: तो ये हमारे लिए काफ़ी बिहार के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं. तो हम सही प्रजातियां का चुनाव करना जरूरी है, ताकि जो है इसमें रोग की समस्या, कीड़ों की समस्या साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी ज़्यादा रहता है. तो ये उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है
0: जी.
1: दूसरी बात रही कि जो है बीज की मात्रा. तो बीज की मात्रा अगर गर्मा उड़द करते हैं, गर्मियों में करते हैं जिसका तो अभी समय नहीं है, तो उसमें हमको जो है 20 से 25 केजी प्रति के हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है. अगर हम खरीफ के मौसम में करते हैं, जिसकी जो है अवधि आपकी जुलाई के 15 जुलाई से लेके प्रथम पखवाड़े में अगस्त के कर सकते हैं इसको, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी जो है जो बुआई की समय है, इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा जो है उत्पादन इसमें बढ़ जाता है
0: जी.
1: तो हमारा जो है बुआई इस पीरियड में करना आवश्यक है. दूसरी बात जो है एक प्रमुख चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसान को करना चाहिए, वो बीज का चयन करने के बाद बीज का जो है सही ढंग से उपचार भी करना आवश्यक है. अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमको जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. तो अगर हम समुचित ढंग से उसका जो है बीज उपचार करते हैं तो उससे हमारा जो है कीटाणुओं या

0: हमारा रोग है उससे काफ़ी जो है निदान पा सकते हैं और साथ साथ जो है उत्पादन भी बढ़ती है। तो अगर किसान भाई अगर बीज उपचार करना जानते हैं फिर भी मैं एक बार चाहता हूं कि इसकी हम चर्चा कर दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे उत्पादन का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है फंजीसाइड कवकनाशी उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, और तीसरा जो है राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम कवकनाशी से करते हैं जिसको अंग्रेजी में फंजीसाइड बोलते हैं। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो फंजीसाइड है वो आपका कार्बेंडाजीम है जो कि मार्केट में वेबिस्टिन के नाम से आती है, और दूसरी दवा जो है कार्बोक्जिन है जो बीटावैक्स पावर के नाम से आती है। इसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं, और इसके 12 घंटे के अंतराल के बाद हम फिर उसको कीटनाशी से प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में मुख्यतः जो है क्लोरोपायरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे खेतों में कहीं कहीं दीमक की समस्या होती है, उससे भी हम इसको फ़ायदा पहुंचता है। तो क्लोरोपायरीफॉस दवा की जो है 10 ml दवा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। और रही बात जो है तीसरा जो इसका जो अवयव है वो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम से उपचार करते हैं। तो राइजोबियम से उपचार करने के लिए क्या है कि 500 ml पानी में उसमें 50 ग्राम हम गुड़ या शक्कर दे देते हैं, उसको फिर गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद उसमें हम राइजोबियम कल्चर जो कि 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें डाल के उसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं ठंडे होने के बाद, और उस जो है राइजोबियम कल्चर को फिर हम बीजों पे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि हर बीज पे जो है वो गुड़ का एक लेयर चल जाए ताकि राइजोबियम पूरी तरह से उससे जुट जाए। तो इस तरह से उपचार करने के इसके 5 से 6 घंटे के बाद अगर ये शाम में करते हैं तो अगले दिन सुबह में इसकी बुआई कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीज उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीज उपचार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात रही कि जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन के लिए, तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है करीब करीब जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और जिन खेतों में जिंक की समस्या होती है उन खेतों में जो है 25 किलो जिंक सल्फेट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिंक की समस्या भी हमारे खेतों में प्रायः देखा जाता है जिसका असर जो है हमारे पौधे पे होता है, और उन बीजों के द्वारा या जो भी अन्न उससे उत्पादन होता है उसमें भी जिंक की कमी होती है, और इसका जो है कमी अगर हमारे अन्न में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी जिंक की उपलब्धता के लिए खेतों में जो है जिंक का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसके साथ उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो इस तरह से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। दूसरी बात रही कि जो है सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, तो इनमें जो है खरीफ फसलों में जो है बारिश तो होती ही है, अगर नमी की कमी हो खेतों में तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है। इसका जो है 2 क्रांतिक अवस्था होती है जिस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है, एक फूल लगने के समय, उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं या खेतों में पर्याप्त नमी है तो आवश्यकता नहीं है, अगर नमी की कमी है तो फूल बनने की अवस्था में जो है एक सिंचाई करना आवश्यक है, और दूसरी जब फलियां बनने लगती है उस समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो 2 कम से कम आवश्यक रूप से करें ताकि जो है जो हमारा जो अन्न बने, जो दाल बने उसमें काफ़ी जो है गुणवत्तापूर्ण बने और उसका पूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम उसका जल का प्रबंधन करते हैं। और जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है कीट और बीमारियों की समस्या होती है, तो कीटों में जो है कुछ कुछ बीमारियां लगती है जो फली मक्खी है जो हमारे विषाणु जनित रोग है उसके वाहक का भी काम करते हैं। दूसरी जो है फली छेदक की समस्या आती है, और बहुत सारे खेतों में दीमक की समस्या आती है। तो अगर फली मक्खी की समस्या आपको खेतों में है तो उसमें एक दवा आती है इमिडा क्लोरोप्रीड, उसकी जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में उसको स्प्रे करते हैं, और आवश्यकता के बाद फिर हम उसको 15 दिनों के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फली मक्खी का उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात रही हमारी जो फली फेदक की समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कीट है, तो सबसे पहले इसकी निगरानी करनी जो अवस्था निगरानी करना ज़रूरी है, और आरंभिक अवस्था में ही जैसे ही

दिखाई पड़े तो प्रारंभिक अवस्था में ही दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसमें एक दवा आती है प्रोनोफोस, उसकी जो है 1 ml दवा प्रति लीटर पानी, प्रोपेनोफोस दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद उसका एक छिड़काव और कर देते हैं तो इससे कमी आ जाती है। और जिन खेतों में टर्माइट की समस्या है, दीमक की समस्या है, वैसे खेतों में जो है 25 किलो क्लोरीपाइरीफॉस जो कि धूल के रूप में भी मिलता है बाजार में, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कीटों का हम इस तरह से इसको रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है, बहुत सारी समस्या बीमारियों की समस्या आती है, तो बीमारियों में जो है खासकर जो है पीली चितेरी रोग पाया जाता है जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रोग है। इससे काफ़ी नुकसान होता है, 70-80% तक इसका नुकसान होता है। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो है जो फली मक्खी है, इसके रोग वाहक का काम करते हैं। और ये फली मक्खी जो है स्वस्थ पौधों से जो है बीमार पौधे से रस चूसकर और स्वस्थ पौधों में जो है ये फैला देती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला देते हैं। तो इसलिए जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण में है कि पत्तियां जो है हल्की हरी और पीली हो जाती है और चितीदार हो जाती है, इसलिए इसको पीली चितेरी रोग बोलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उस पौधे को हम लोग को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए, उखाड़ के वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या इसको कहीं जला देना चाहिए दूर के क्षेत्रों में, क्योंकि यही हमारा सोर्स का इन्फेक्शन काम करता है, जिससे जो है वायरस को जो है वो हमारे फली सफ़ेद मक्खी है वो अपने आप में अर्जित करती है और स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स जो बीमार पौधे हैं उसको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो दवा मैंने बताया इमिडोक्लोरोप्रीड दवा आती है, उसकी 1 ml दवा 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं तो सफ़ेद मक्खी से हम इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो फलियों का नुकसान करते हैं साथ साथ जो बीमारियों का प्रकोप को भी बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से करते हैं तो इस रोग से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विषाणुजनित रोग होती है, जैसे लीफ क्रिंकल रोग जिसमें पत्तियाँ जो है सिकुड़ जाती है और समय से पहले जो है झड़ जाती है और इसमें बहुत कम फलियाँ लगती है और यह है पौधे में काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये भी जो है हमारे बीज जनित भी होते हैं, साथ साथ कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा भी फैलते हैं, इसको भी हम उसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी एक लीफ कर्ल आती है, वो जो है थ्रिप्स से फैलती है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियाँ जो है फफूंद जनक होती है, और ख़ासकर जो उकठा की समस्या है वो प्राय सभी पौधों में, सभी जो है जितनी भी दलहनी फसलें में है सभी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज का उपचार करना ही इसका कारगर उपाय है। और जो हम जो फसल लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, क्यारी लाइन से लाइन जो है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगर इस तरह से हम करते हैं, लाइन सोइंग करते हैं, तो उसमें जो है हमारी बीमारियां कम आती है, क्योंकि हर पौधे को जो है समुचित प्रबंधन मिलता है तो पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और अगर बीज उपचार करते हैं तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां आती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, वो भी एक फफूंद जनित रोग होते हैं, पत्तियों पर जो है छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और किनारे में हल्के लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो इससे हम पता चलता है कि हमारे सर्कोस्पोरा रोग से ग्रसित है और पत्तियां जो है समय से पहले ही झड़ जाती है, इससे भी हमारे उत्पादन में काफ़ी कम होता है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो इसमें एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर आता है, मार्केट में सांप के नाम से भी मिलती है, तो इसका प्रयोग करने से अगर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर देते हैं तो कुछ हद तक जो है इससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी जो है पत्तियों पर होने वाली बीमारी है चूर्णी रोग बोलते हैं, जिसको पाउडरी मिल बोलते हैं, ये प्रायः खेतों में देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर जो है सफ़ेद पाउडर रंग का दिखाई पड़ते हैं
और धीरे धीरे कालांतर में जो है पत्तियाँ पर जो है सफ़ेद

0: से ये हल्के धूसर रंग के हो जाते हैं और पत्तियाँ भी जो है इसमें झड़ना शुरू हो जाती है, ये भी हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़े खेतों में तो उसमें जो है विटेबल सल्फर घुलनशील गंधक के नाम से मिलता है, ये सस्ती दवा है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह का ये बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां जो है और खासकर जितने भी कवक जनित बीमारियां हैं जो पत्तियों पे होती हैं उसमें जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजीम और मैनको जो मिश्रित दवा, इसका जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका छिड़काव करते हैं जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उससे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक बीमारियां जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं जीवाणु भूरी धब्बी रोग, ये जेंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें भी पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और क्रांत पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती है और ये भी उत्पादन में कमी लाती है। तो इसका अगर खेतों में अगर दिखाई पड़े तो ऐसे में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी दवा का जो है 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी हद तक जो है हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये सब लगने वाली जो है कुछ कीट व्याधियों की समस्या है। और जहाँ तक रही खरपतवार की समस्या के लिए तो जैसे ही हम बुआई करते हैं बुआई के 2 दिन के अंदर जो है पेंडीमिथिलिन दवा आती है उसका जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं छिड़काव करते हैं तो आरंभिक अवस्था में इसको रोकते हैं। और 1 महीने 3 दिन के बाद एक अगर निकौनी कर लेते हैं या खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर छोटी जगह पे हो तो, अगर इस तरह से हम कर लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में केमिकल के द्वारा और बाद में जो है निकौनी के द्वारा कर सकते हैं इसके, तो उसके काफ़ी जो है खरपतवार को इसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह से हम पूरी तरह से समग्र क्रियाओं को अगर सम्मिलित करके अगर खेती करें तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और इसमें हम 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक भी हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी हमारा ज़मीन जो खाली रहता है तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना जो है उत्पादन और आमदनी को बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों यहाँ पर पूरी जानकारी मिली आपको, उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपको कि बुआई कब करना है, सिंचाई कैसे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं उनका निवारण आपको कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपको देनी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को एक बार ज़रूर सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो कीटनाशी के बारे में, यानी कि नैनो पेस्टिसाइड के बारे में। ये क्या है और आजकल क्यों कृषि विशेषज्ञ विशेष सलाह दे रहे हैं कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लंबे समय से किसान भाई बहन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जाता है कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। तो आखिर अंतर क्या है नैनो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू मैम।
3: सर आपसे सबसे पहला सवाल, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कि नैनो पेस्टिसाइड यानी कि नैनो कीटनाशी क्या है?
5: नैनो पेस्टिसाइड, जिसको कि नैनो कीटनाशी भी बोलते हैं, यह उन्नत इंजीनियरिंग कृत फार्मूलेशन है जो नैनो तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है, और इसमें जो कीटनाशक तत्वों का आकार जो होता है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में समाहित रहता है, या डायरेक्ट इसमें या प्रत्यक्ष रूप से नैनो कण को यूज करते हैं, और साथ ही साथ या जो है ना कुशल एवं लक्षित होता है उसे नैनो कीटनाशी कहा जाता है, जैसे नैनो सिल्वर, नैनो कॉपर, नैनो जिंक ऑक्साइड इत्यादि इनके उदाहरण माने जाते हैं।
3: ये इतना ज़रूरी क्यों है?
5: ज़रूरी अभी के परिप्रेक्ष्य में जो किसान भाई, जैसे पहले परंपरागत जो कीटनाशी होते थे उसमें कुछ बहुत सारे महत्व बिंदु है जिसको कि इसमें नहीं समाहित किया गया है, जैसे कि उपयोग करने का तरीका, उसका मात्रा, यह सब इसमें कम हो गया है। तो जैसे मुख्य सब इनकी विशेषताएं हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करता है, या जहां पे चाहिए जितना उतना ही यह काम करता है, इसका बड़ा मुख्य पहलू है कि नैनो कीटनाशी का। साथ ही साथ यह अत्यधिक कुशल होते हैं, जिसको कि कह सकते हैं कि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं, कि जो परंपरागत जो हम कीटनाशी यूज करते थे उसके तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। और इसका जो और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनावश्यक उपयोग जो आने वाले कीटनाशक रसायनों की मात्रा जो होती थी इसमें कम हो गया है, परंपरागत में ज़्यादा होती थी, और अगर मात्रा कम होगा तो यह पर्यावरण पे भी इसका जो है ना प्रभाव जो है ना पॉजिटिव होगा या निगेटिव कम होगा, और खेतों में नैनो कीटनाशी का अवशेष की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि प्रारंभ में ही इसकी मात्रा कम होती है, और जब ये नियंत्रित जो करते हैं वह पूरा लक्ष्य बेस्ड काम करते हैं, और उपयोग में जो मात्रा होती है बहुत कम, लगभग जो है ना जो परंपरागत कीटनाशी थे उसका लगभग 10% अप्रॉक्स हम इसमें यूज करते हैं, और जो है यह धीरे धीरे काम करता है जिससे कि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है और इसमें अवशिष्ट बचने का चांस कम हो जाते हैं। और निश्चित तौर पे है कि जब हम चीज़ को कम उपयोग करेंगे, कम खर्च होगा, तो इससे जो है ना किसान भाई का

0: जो जो खर्च आता था कम हो जाते हैं, और जो है ना जो प्रतिरोधकता जो था कि बहुत सारे कीट जो है ना जो कीटनाशी थे उससे प्रतिरोधी हो गए थे, तो इसमें जो है ना प्रतिरोधकता जो है यह भी कम है नैनो कीटनाशी में, और इससे कृषि उपज को बढ़ाने में ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम इसका उपयोग टारगेट वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ यह हम स्थिति परिस्थिति और बुद्धिमता से नैनो कीटनाशी का उपयोग करते हैं।
1: जैसे कि सर आपने बताया कि ये बिल्कुल टारगेटेड काम करता है और बहुत कम मात्रा में बेहतर काम करता है, तो सर आप ये बताइए कि काम कैसे करता है नैनो पेस्टिसाइड?
0: जो कीटनाशी होता है यह सर्वप्रथम जब हम उस पर जहाँ चाहिए जब कीट को मारने के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सर्वप्रथम होता है कि कीट के जो शरीर का हिस्सा है जो बॉडी का पार्ट है उससे जो है ना चिपकता है, और धीरे धीरे उनके बॉडी पे जो क्यूटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं इन कीड़ों पे उसको जो है ना उससे इंट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे कीटों के शरीर के अंदर जाता है, और जो कि जो शरीर जो कीट के शरीर में जो पानी रहता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है, और अंतोगत्वा शरीर में डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है कि वह जो है ना कीट मरने लगता है, क्योंकि जो हम कीटनाशी का जो प्रयोग करते हैं ना इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है जो हम अपने सूक्ष्म आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो और उसका सतही क्षेत्रफल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कार्य क्षमता सतही क्षेत्रफल का ज़्यादा होना इसका मतलब है कि उसका कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और इसीलिए जो है ना इसका यह जो है ना कि वह टारगेटेड होते हुए काम करते हैं। तो ओवर ऑल अगर आप हम देखें तो यह क्या करता है कि जब हम डालते हैं तो लक्ष्य पे काम करता है, या पत्तियों के सतह पे जो कि चिपक जाते हैं तो वहाँ भी इंसेक्ट जब बैठ जाते हैं तो उससे उसका जो है ना इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना सक्रिय तत्व इंसेक्ट के शरीर में जाते हैं और उसका शारीरिक क्रियाएं बाधित होती है और अंतोगत्वा उनका मृत्यु होने लगता है।
1: जी सर, आपने ये तो बताया कि नैनो पेस्टिसाइड काम कैसे करता है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैनो पेस्टिसाइड बनाया कैसे जाता है?
0: नैनो जो पेस्टिसाइड है या कीटनाशी है यह मुख्यतः दो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि हम प्रत्यक्ष नैनो कण का उपयोग करते हैं, जैसे कुछ धातुएं जैसे नैनो जिंक ऑक्साइड है तो आप जिंक ऑक्साइड को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ही लेके उसको जो है ना छिड़काव करते हैं जिससे कि जो है ना कीट जो होते हैं मरने लगते हैं, तो यह प्रत्यक्ष नैनो कणों का उपयोग है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो है ना नैनो इनकेप्सुलेशन करते हैं, नैनो का कण लेते हैं उसके अंदर जो कीटनाशी होता है परंपरागत कीटनाशी होता है उसको उसके अंदर में कैप्सूल की तरह रखते हैं, तो इसका क्या होता है कि कैप्सूल में बंद हो जाता है, तो इससे कीटनाशक जो है ना जो निकलता है कैप्सूल से धीरे धीरे निकलता है और इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और कभी कभी जो है ना हम लोग कीटनाशक को नैनो इमल्सन के भी रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ हुआ जैसे तेल वगैरह नैनो के रूप में यूज करते हैं, जो सक्रिय मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं जिससे कि जो है ना मिल के मुख्य सक्रिय तत्व और जो नैनो कण होते हैं या कीटनाशक को के तरह काम करते हैं, और जिससे कि अंतोगत्वा कीट का मृत्यु हो जाता है।
1: सर अब आप ये बताइए कि नैनो पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं?
0: मुख्यतः जो है कीट नैनो कीटनाशी दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक कहते हैं। तो कार्बनिक रूप में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें हम कार्बनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विभिन्न तरह के तेल होते हैं और वह उसके लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है, तो उसको लेके हम यूज करते हैं। दूसरा है कि अकार्बनिक के रूप में, जैसे कि मतलब अकार्बनिक धातु के जो है ना जो होते हैं उसको डायरेक्ट हम जो है ना नैनो कण बनाते हैं। नैनो कण बनाने का मतलब हुआ कि उसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में लाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं और वह जो है ना धातु के रूप में होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हुआ, जैसे नैनो सिल्वर हुआ, तो यह जो है ना उसमें बहुलता से

0: कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है और वह प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है जहाँ पे उसको मारना चाहिए।
1: जी सर, तो अभी आपने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और जब नैनो पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो ऐसे भी हम जब आम कीटनाशकों की भी बात करते हैं तो कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो नैनो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के वक्त भी हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए?

0: मतलब जितना जरूरी हो उतना ही जो है ना इसका जो है ना उपयोग करें। दूसरी बात है कि जो हवा का जो वेग है, डायरेक्शन है, जो उसका बहने का जो हाँ रू है, उसको देखते हुए जो है ना किसान भाई को इसका उपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो है ना जब आप नैनो कीटनाशी यूज करते हैं तो मास्क का जरूर यूज करें, क्योंकि वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि इवन सूक्ष्म होता है और खुली आंखें के द्वारा दिख नहीं पाता और पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चला गया, तो इससे हार्म होने का भी जो है ना विपरीत हेल्थ जो अपना स्वास्थ्य है उस पर जो है ना विपरीत प्रभाव पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए जो है ना मास्क का भी जरूर यूज करना चाहिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका उपयोग करें। और मुख्यतः जो है इसका उपयोग जैसे हम पत्ते पे स्प्रे करके करना अच्छा माना जाता है, या दूसरा जहाँ पे देखें कि जो उसका बर्भार जो होता है कीटों का, जो उसका एक्टिव फेज होता है जहाँ बर्भार होता है, लार्वा वगैरह जो है ना, वहाँ अगर कीट नैनो कीटनाशक का उपयोग करें तो इस तरह जो है ना बहुत कारगर माना जाता है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से जो है ना कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें जिसका कि ध्यान रख के ही किसान भाइयों का नैनो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, नैनो हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए।
1: यानी कि हवा का रुख आप विशेष रूप से ध्यान रखें और जी, जो अनुशंसित मात्रा है
0: जी जी जी जी,
1: और मास्क का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर गया तो परेशानी हो सकती है
0: जी।
1: तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें और उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी मिट्टी का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर

0: अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम ऐसी कुछ सब्जियों को खाते हैं जो हम अगर बिहार के बाहर जाएं तो बहुत कम लोग जानते हैं और बाहर मिलता भी नहीं है, जबकि उन सब्जियों में भी काफी पोषक तत्व होते हैं और काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होता है। लेकिन बावजूद इसके उन सब्जियों पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो अल्प उपयोगी रह जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी फसलों की भूमिका के बारे में, और इस बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी। आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा, और धन्यवाद मेरे भाई बंधु किसान भाइयों और एवं बहनों। मैं आज आपसे जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड फसलों की भूमिका, इस विषय पर चर्चा करूंगी। तो देखा गया कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी तथा नई नई कीट एवं रोग समस्याएं किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है जो

0: बदलती जलवायु के अनुकूल हो तथा कम संसाधनों में भी अच्छा उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी अथवा अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलों इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है।
1: मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अल्प उपयोगी सब्जी क्या है।
0: अल्प उपयोगी सब्जियां वे फसलें हैं जिनका स्थानीय स्तर पर लंबे समय से उत्पादन और उपयोग होता रहा है, लेकिन आधुनिक कृषि एवं बाजार व्यवस्था में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा है। सो इनमें से देखा जाए तो चौलाय, सहजन, मालाबार पालक, ककोड़ा, विंग्ड बीन, याम बीन तथा राइस बीन जैसे प्रमुख फसलें हैं।
1: मैम, इसका क्या जलवायु परिवर्तन में भी कुछ रोल रहता है?
0: हाँ बिल्कुल, इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जलवायु सहनशीलता ही है। अधिकांश अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कम पानी, अधिक तापमान तथा कम उर्वरक भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन में बढ़ते प्रभावों के बीच इनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं सहजन का पौधा, सूखा और गर्मी दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है। मलाबार पालक, जिसको हम लोग पोईसाक भी बोलते हैं, और चौलाई जैसे पत्तेदार सब्जियां कम अवधि में तैयार हो जाती है तथा विपरीत मौसम में भी किसानों को उत्पादन प्रदान करती है। इसी प्रकार ककोड़ा और विंग्ड बीन जैसे फसलें स्थानीय परिस्थितियों में अच्छी तरह विकसित होती है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकती है।
1: मैम, ये तो बात हो गई जलवायु परिवर्तन की, अगर हम पोषक तत्व के नजरिए से समझे तो पोषक तत्व के नजरिए से इसका क्या महत्व है?
0: हाँ उमा, तो इसमें अल्प उपयोगित सब्जियां पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियां और फलियों पोषण का उत्कृष्ट स्रोत है, जबकि चौलाई में आयरन और खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इनका नियमित सेवन कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है।
1: मैम, आजकल हम लोग काफी ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी अल्प उपयोगी सब्जी महत्वपूर्ण होता है?
0: जी बिल्कुल, इन फसलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। इससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कृषि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब किसान केवल कुछ सीमित फसलों पर निर्भर रहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की सब्जियां का उत्पादन कृषि प्रणाली को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाता है।
1: मैम, अभी जब आपने उदाहरण दिए तो बहुत सारे ऐसे सब्जियों का आपने नाम लिया जो बिहार में पाए जाते हैं, बिहार के लोग खाते हैं, लेकिन बिहार में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इन सब्जियों को?
0: हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। तो बिहार में भी इन फसलों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें हम लोग गृह वाटिका, पोषण वाटिका, समेकित कृषि प्रणाली तथा व्यावसायिक खेती में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सकता है। इसीलिए इनके संरक्षण, उन्नत किस्मों के विकास, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारा बीएयू साबोर विशेष प्रयास कर रहा है।
1: मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों और श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कृषि में विविधता लानी होगी और ऐसी फसलों को बढ़ावा देना होगा जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी या अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पोषण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी इन फसलों के महत्व को समझें, इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दें तथा जलवायु स्मार्ट कृषि के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद उमा।
1: धन्यवाद मैम।

0: बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई बहन और अन्य श्रोता, आपने इस बात को अभी जो मैम ने बताया, आपने समझा होगा कि कुछ जो अल्प उपयोगी सब्जी है वो कई पैमानों पर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उन सब्जियों को आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा, इस तरीके से हम अपनी ओर से इन सब्जियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नमस्कार।
1: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद
10: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई

0: जिलों के लोग प्रभावित हैं। वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हुई उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियाँ, वहाँ पर हमें ये देखना है कि सब्जियाँ कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहाँ पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियाँ रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगें तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए।

0: ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई

0: बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार,
1: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
1: नमस्कार, मैं नीलकंठ कुमार, संकाय सदस्य CIET NCERT हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। यह कविता कक्षा 6 की किताब वसंत भाग 1 से संबंधित है। वसंत भाग 1 की यह पहली ही कविता है। चिड़िया का नाम सुनते ही हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि फुदक फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह पर, एक टहनी से दूसरी टहनी की ओर वो जा रही हो, भाग रही हो। तो आज इस मजेदार कविता के बारे में हम सब जानेंगे और समझेंगे। थोड़ी सी बात इस कविता के कवि के बारे में भी जान लेना बेहतर होगा। कवि केदारनाथ अग्रवाल का बचपन खेत खलिहानों, नदियों, वनों, उपवनों, तालाबों और जानवरों के पीछे दौड़ते भागते हुए बीता था। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा का पूरा बचपन प्रकृति के बीच बीता, चिड़ियों को देखते हुए, पशुओं को देखते हुए, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे उनको प्रकृति से मानो प्यार हो गया, और इसीलिए उनके अंदर की चिड़िया इस कविता में अभिव्यक्त हुई है शब्दों के माध्यम से। दरअसल यह चिड़िया जो आपको कविता में दिखाई पड़ती है वो कहीं ना कहीं से कवि के मन के अंदर बैठी हुई चिड़िया भी है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो चिड़िया है कैसी और वो चिड़िया हमसे कैसे जुड़ती है। इस कविता को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि उतार चढ़ाव के साथ हम उस कविता को पढ़ें, उसका पाठ करें। अगर आप उचित लय के अनुसार अर्थ को समझते हुए, भाव को समझते हुए कविता का पाठ कर लेते हैं तो समझिए कि आधे से अधिक कविता का अर्थ आपके समझ में आ गया है। तो आप भी जब मैं पाठ कर रहा हूँगा तो मेरे साथ साथ पाठ करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ साथ भी और मेरे बाद भी। वह चिड़िया

जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो विद्यार्थियों, आपने वह चिड़िया जो कविता का एक पाठ सुन लिया। कविता को पढ़ते हुए कुछ न कुछ चिड़िया के बारे में जो बातें हुई हैं वो आपके समझ में भी आई ही होंगी। तो जिन बातों को आपने नोटिस किया, जिन बातों की ओर आपने ध्यान दिया, उसके आधार पर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आप जरा सोचिए अपने मन में कि बहुत सरल और सहज भाषा में लिखी गई केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता में चिड़िया की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो मेरे समझ में तो बात ये आई कि चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को नदी से भी प्यार है, और चिड़िया को विजन से भी प्यार है, और आप कह सकते हैं कि चिड़िया को दूध भरे जुंडी के दाने से भी प्यार है। तो चिड़िया को बहुत सारी चीज़ों से प्यार है। आप इस कविता को पुनः ध्यान से पढ़ते हुए ये देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि इस कविता के आधार पर चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है और चिड़िया की विशेषताएं क्या क्या बताई गई हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि चिड़िया नीले पंखों वाली है, चिड़िया साहसी भी है, और अरे चिड़िया तो संतोषी भी है, क्योंकि दूध भरे जुंडी के दाने को खाकर वो खुश भी होती है, देखती भी है, इधर उधर उड़ती भी है और प्रसन्न रहती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि चिड़िया संतोषी भी है, क्योंकि उसे जो मिल रहा है वो उसे ही खाकर प्रसन्न है। तो चिड़िया के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको एक कविता से मिल रही है, और अगर आपने इन सारी बातों की ओर ध्यान दिया है तो अब हम कविता के अर्थ की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। आपने पाठ सुन लिया, पाठ के आधार पर यह भी जान लिया कि चिड़िया की विशेषताएं क्या क्या हैं, चिड़िया किन चीज़ों को खाकर खुश रहती है। तो आइए इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनको कविता से जोड़ते हुए कविता के अर्थ को आगे बढ़ाते हैं, उसके भाव को विस्तार देते हैं, और साथ ही हम अपनी समझ को भी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कविता का अर्थ करने के लिए पुनः हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप भी कविता को देखिए और मेरे साथ साथ इस कविता का अर्थ और भाव विस्तार करने का प्रयास कीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो चिड़िया अपने बारे में खुद ही कह रही है। आप कह लें कि कवि एक तरह से चिड़िया बनकर अपनी बात कर रहे हैं। तो चिड़िया के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसी चिड़िया हूँ जिसके पंख नीले हैं, और फिर वह चिड़िया कहती है कि मैं चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से और रस से खा लेती हूँ। हमारी और आपकी तरह उनके पास हाथ या पांव नहीं होते, तो वो कैसे खाएंगे? चोंच मारकर। अब आप
अर्थ लगाने का प्रयास कीजिए आगे पीछे के संदर्भ को देखते

हुए आगे पीछे जो कविता में बातें की गई हैं कि दूध भरे जुंडी का क्या अर्थ हो सकता है। जुंडी का मतलब है किसी दाना की ओर, किसी अनाज की ओर संकेत किया गया है। दूध भरे हुए जुंडी के दाने, आपने गेहूं की बाली देखी होगी। अगर आपने कभी खेत खलिहानों को देखा हो तो आपने देखा होगा कि गेहूं में बाली लगती है, तो उस बाली की ओर ही संकेत किया गया है। और दूध भरे जुंडी, जुंडी का अर्थ ज्वार से है। तो ज्वार के दाने चिड़िया खा रही है, और ये भी बताया गया है कि वो ज्वार के दाने कैसे हैं, तो वो दूध से भरे हुए हैं। दूध से भरे हुए दाने कब होते हैं? जब वो पके हुए नहीं होते हैं, थोड़े से कच्चे होते हैं। और उसको चिड़िया कैसे खाती है? रुचि से, रस से वो खा लेती है। जरा आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप वैसी चिड़िया हो, या अपने आप को आप चिड़िया मानते हुए सोचिए कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप कितनी रुचि से और रस से खा लेते हैं। वह छोटी, अब चिड़िया अपने बारे में ही कह रही है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मतलब कि मैं संतोषी हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की इच्छा नहीं है कि मैं यह भी खा लूँ, मैं वह भी खा लूँ। इसलिए चिड़िया अपने बारे में कहती है कि वह छोटी जरूर है लेकिन संतोषी भी है। तो चिड़िया छोटी है, चिड़िया नीले पंखों वाली है, और चिड़िया अपने बारे में खुद ही कह रही है कि मैं संतोषी भी हूँ। अब चिड़िया आखिर में कह रही है जो मैं आपसे पूछ रहा था इस कविता को पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी, कि चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया खुद ही कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मतलब चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने को खा रही है, और जिसके बाद वो कह रही है कि वो संतोषी भी है, और नीले पंखों वाली वही चिड़िया अंत में कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो ऐसी है वो चिड़िया। तो चिड़िया अपनी बात कह रही है, और चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल भी अपनी बात कह रहे हैं। कहीं न कहीं केदारनाथ अग्रवाल को भी अन्न से प्यार है। अब हम आगे की कुछ पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। पुनः चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब आप शुरू की कुछ पंक्तियों को ध्यान से देखिए, और उन पंक्तियों को देखते हुए अनुमान करने का प्रयास कीजिए, अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए कि एक अपरिचित सा जो शब्द विजन के रूप में आपको दिख रहा है, उस विजन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि आप इसके अर्थ का अनुमान अवश्य कर लेंगे। अगर आप बूढ़े वन बाबा को समझते हैं, तो बाबा शब्द का उपयोग कई जगहों पर पुरखों के लिए किया जाता है। पुरखों से आशय यह है कि एक या दो पीढ़ी पहले के लोग, और कई क्षेत्रों में बाबा शब्द दादा के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। वन बाबा मतलब वन की कल्पना दादा के रूप में की गई है। मुझे लगता है कि अब तक आपने विजन शब्द के अर्थ का अनुमान अवश्य कर लिया होगा। विजन शब्द का अर्थ ये है, ऐसी जगह जहाँ पर जन ना हो, ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता ना हो, उसे विजन कहते हैं, विजन या निर्जन जगह। तो विजन शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसी जगह जो निर्जन है, जहाँ कोई रहता ना हो, जहाँ कोई आता जाता

ना हो तो निश्चित रूप से जहाँ जंगल होता है वहाँ अधिकांशतः कोई आता जाता नहीं है। हाँ, पशु पक्षी और चिड़िया वहाँ पर अवश्य आपको मिलेंगे। तो आइए अब पुनः देखते हैं कि चिड़िया क्या कह रही है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो चिड़िया कैसे गाती है? कंठ खोलकर। मतलब कंठ खोलकर गाने का मतलब ये हुआ कि पूरे मन से वो गाती है, पूरे सुर में वो गाती है। तो चिड़िया कह रही है कि कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। अब यहाँ वन बाबा को वन जंगल, जिसकी कल्पना दादा के रूप में की गई है, पुरखों के रूप में की गई है और जिन्हें बूढ़ा भी बताया गया है, उस वन बाबा की खातिर यह चिड़िया कंठ खोलकर गाती है। तो निश्चित रूप से उसे अपने बूढ़े वन बाबा से बहुत ही प्यार है। आगे की पंक्तियां बताती हैं कि आखिर वो चिड़िया कैसे गाती है। तो इसका जवाब इन पंक्तियों में दिया गया है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। अब रस उड़ेल कर गाने का मतलब क्या हुआ? कि चिड़िया ऐसे गाती है जैसे बिल्कुल प्रसन्नता से भरी हुई पूरे सुर में और मन में वो गा रही है। रस उड़ेल कर गाने से ये आशय है। और आगे फिर एक और विशेषता की ओर संकेत है चिड़िया की। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब फिर से चिड़िया कह रही है कि वह मुंह बोली है, मतलब अपने बूढ़े वन बाबा से मुंह लगी हुई है। वो उनके सामने कुछ भी बोल देती है और जो मन में आता है वो गाती है, वो बोलती है। इसीलिए चिड़िया कह रही है कि वह मुंह बोली हुई है, मुंह बोली चिड़िया है। मतलब यह है कि वो बूढ़े वन बाबा से मुंह लगी हुई है। बूढ़े वन बाबा की चिड़िया प्यारी भी है, प्रिय भी है। मुंह बोली कहने का आशय ही यह होता है कि कोई किसी का प्रिय हो तभी वो उससे बोल सकता है जो मन में आए। और मुंह बोली कहने का मतलब ही यह है कि चिड़िया को वन बाबा से बहुत ही प्यार है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है विद्यार्थियों, कि एक तो जंगल की कल्पना दादा के रूप में क्यों की गई है, बाबा के रूप में क्यों की गई है, पुरखे के रूप में क्यों की गई है और उन्हें बूढ़ा भी क्यों कहा गया है। यह प्रयोग कवि ने जानबूझकर किया है। वो इसलिए क्योंकि चिड़िया की उम्र बहुत कम होती है और वन, उपवन, जंगल, पेड़ सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुराने होते हैं। तो यही कारण है कि चूंकि पेड़ बहुत पुराने होते हैं, जंगल बहुत पुराने होते हैं और चिड़िया की कई पीढ़ियां उस एक ही पेड़ पर पैदा लेती है, जैसे वो चिड़िया उसके माता पिता भी हो सकता है उसी पेड़ पर पैदा हुए हों और उस चिड़िया के आगे आने वाले बच्चे भी हो सकता है, उसकी आगे की संतति, उसकी के संतानें भी उसी पेड़ पर पैदा हों। इसीलिए चिड़िया कहती है, चूंकि ये वन बाबा अनंत काल से चले आ रहे हैं, बहुत प्राचीन हैं, पुराने हैं, इसलिए और वहीं पर चिड़िया पली बढ़ी है, खेली कूदी है, इसलिए उस वन को अपना मानते हुए बूढ़े वन बाबा का संबोधन चिड़िया ने दिया है कि ये हमारे अपने तो हैं ही, हमारे परिवार के हिस्सा तो हैं ही, क्योंकि हम सब वहीं पले बढ़े हैं और साथ ही हमारे बाबा भी हैं। बाबा इसलिए हैं कि पुराने हैं, प्राचीन हैं, कई पीढ़ी से वो उनके साथ बने हुए हैं। और मुंह बोली भी चिड़िया इसीलिए है क्योंकि उसी पेड़ पर हो सकता है चिड़िया ने उड़ना सीखा हो,
उसी पेड़ पर हो सकता है चिड़िया ने बोल न

सीखा हो। उसी पेड़ के फल दाने फूल को खाते हुए हो सकता है चिड़िया बड़ी हुई हो। इसीलिए वो कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा के मुंह लगी हुई हूँ, मुंह बोली हूँ, तो इनके सामने मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे कोई लिहाज नहीं करना पड़ता है और जो मन में आता है मैं बोलती हूँ। वैसे ही जैसे आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से कुछ भी बोलते हैं दिल खोलकर, तो आप मुंह बोली हैं उनके लिए। अगर आप चिड़िया हैं तो अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता की आप मुंह बोली हैं। तो फिर से वापस आते हैं चिड़िया पर। तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा की प्यारी क्यों है, मुंह बोली क्यों है, आपने समझ लिया। आपने यह भी समझ लिया कि चिड़िया ने बूढ़े वन बाबा का संबोधन क्यों दिया है, जंगल को, वन को बाबा क्यों कहा है। और मजे की बात तो ये देखिए कि जंगल को एक तरह से उसने मनुष्य की तरह चित्रित कर दिया, इंसान बना दिया बाबा कहकर, बूढ़ा भी कहकर और बाबा भी कहकर। तो ये बहुत ही मजेदार प्रयोग इस कविता में है जो चिड़िया कह रही है और चिड़िया के माध्यम से कवि भी कह रहे हैं। कवि को भी वन उपवन से प्यार है, कवि को भी अन्न से प्यार है और कवि का बचपन खेत खलिहानों के बीच, वन उपवन के बीच, तालाब में तैरते हुए, पशु पक्षियों के पीछे भागते हुए बीता था। तो वह चिड़िया आप भी हो सकते हैं विद्यार्थियों, कवि तो हैं ही, और चिड़िया जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिस चिड़िया की विशेषता अब तक आप समझ चुके हैं कि वो नीले पंखों वाली है, वो संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है और अपने बूढ़े वन बाबा की वो मुंह बोली भी है। तो ऐसी ही चिड़िया की चर्चा इस कविता में अभी हो रही है। तो फिर से चिड़िया कह रही है कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और आखिर में वो कहती है कि ऐसे सुनसान निर्जन जगह पर जहाँ कोई आता जाता ना हो, जिसके लिए विजन शब्द का उपयोग किया गया है और विजन शब्द का अर्थ अभी आप सब ने कविता पढ़ते हुए अनुमान किया और जानकारी भी ली कि विजन किसे कहते हैं। तो चिड़िया कह रही है कि उस विजन से उसे बहुत ही प्यार है, विजन उसे प्रिय है, इसलिए कि वहाँ पर वो मुंह खोलकर गाती है, अपने वन बाबा से जो भी मन में आता है बातचीत करती है और वहीं पर वो पली बढ़ी भी होगी। इसलिए वो विजन, वो निर्जन, वो शांत जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो एक प्रकार की शांति उसे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो चिड़िया की ये सारी बातें आपने जान ली, समझ ली कि चिड़िया के मन में क्या क्या चल रहा है और आपके मन में भी चिड़िया के बहाने कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आपके मन की भी चिड़िया कूद कर बाहर निकल जाना चाह रही होगी, है ना? आप भी सोच रहे होंगे कि आपको चिड़िया की तरह क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, आप किसके मुंह बोले या मुंह बोली हैं और आपको किन चीजों से प्यार है। तो चलिए अब हम आगे की कुछ पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस नीले पंखों वाली चिड़िया को, जो संतोषी भी है, जो मुंह बोली भी है, उसे और किन किन चीजों से प्यार है और वो और क्या क्या चीजें करती हैं। आगे की पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो चोच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को नदी से भी प्यार है। अभी अलग अलग चीजों से चिड़िया के प्यार के बारे में आपने सुना, अब आखिर में चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्यों नदी से प्यार है? क्योंकि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, ऐसी नदी

0: जो भरी हुई चढ़ी नदी, कहने का मतलब नदी पूरी तरह गति में हो, भरी हुई नदी हो जिसमें बहुत सारा पानी हो, वैसी नदी के बारे में चिड़िया कह रही है कि चढ़ी नदी का दिल टटोलना। दिल टटोलना दिल व्यक्ति के मध्य में होता है, और इसी तरह नदी का दिल कहने का मतलब कि जहाँ सबसे तीव्र धार हो, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी हो, वहाँ जाकर जल का मोती अपने चोंच में भर लेती है, जल रूपी मोती चिड़िया के लिए वो जल, चूंकि चिड़िया प्यासी है तो जल उसके लिए मोती से कम नहीं है। इसीलिए चिड़िया कह रही है कि मैं अपने चोंच में जल का मोती भर लेती हूँ, वो भी भरी हुई नदी, चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर। और इसीलिए चिड़िया कहती है कि वह छोटी गर्भिली चिड़िया को अपने इस क्रियाकलाप पर, अपने इस बात पर कि वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपने चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, इस बात से चिड़िया को बहुत फख्र है, गर्व है। तो इसीलिए चिड़िया कहती है कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कहने का मतलब यह कि चिड़िया साहसी भी है, इसीलिए कहती है कि मुझे गर्व है और मैं डरती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निडर हूँ। इसीलिए अंत में चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं साहस करके नदी का दिल टटोलती हूँ। इसमें चिड़िया को आनंद भी आता है और चिड़िया की प्यास भी बुझती है, चिड़िया को गर्व भी है साहसी होने का, और इसीलिए अंत में कहती है लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मुझे इस नदी से भी बहुत प्यार है। और चिड़िया के साथ साथ, जैसा कि मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ, कवि को भी कहीं ना कहीं नदी से प्यार है, और अपनी इन्हीं भावनाओं को, जिन चीज़ों से कवि को प्यार है, उसे कवि ने शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया है, और जो आपके सामने है कविता रूप में, वह चिड़िया जो। तो आपने इस कविता का अर्थ जान लिया, समझ लिया। अब आइए कुछ भाषा की भी बात करते हैं। आप इस कविता को जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते हुए चिड़िया की कई विशेषताओं की ओर आपका ध्यान गया होगा, जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया। तो ये चिड़िया छोटी है, चिड़िया नीले पंखों वाली है, चिड़िया संतोषी है, तो ये सारे शब्द चिड़िया की विशेषताओं की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो अलग से आपको विशेषण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस कविता में ही आपने जान लिया कि जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है चिड़िया के लिए, वो सब विशेषण हैं। इसी तरह से चिड़िया को पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि चिड़िया शब्द संज्ञा है, और जब खुद के लिए चिड़िया मैं बोलती है तो वो सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो कविता पढ़ते हुए आप व्याकरण की बात भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब चिड़िया ये कहती है कि मैं रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, तो गाना क्रिया है, आप सब जानते हैं कि खाना गाना क्रिया है। अब वो कैसे गा रही है? रस उड़ेल कर गा रही है। तो गाने की विशेषता कौन बता रहा है? रस उड़ेलना। तो रस उड़ेल कर यहाँ क्रिया विशेषण की तरह उपयोग किया गया है। तो जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्रिया विशेषण। तो आपने क्रिया विशेषण को भी जान लिया कविता को पढ़ते हुए ही। तो मुझे लगता है इस कविता को पढ़ते समझते हुए आपके मन की चिड़िया अब तक बाहर आ गई होगी। कुछ अनुमान और कल्पना कीजिए और पढ़ते रहिए इस कविता को। हम अगली दफा फिर मिलेंगे किसी और पाठ के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद
1: साथियों। अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर

0: नियमित जांचते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीते।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में। मखाना के पौष्टिक गुणों के बारे में अब तक देश दुनिया में सबको पता है, इसकी मांग भी देश और दुनिया हर जगह है और बढ़ती मांग यानी कि रोजगार के बढ़ते अवसर। और जब मखाना की बात होती है, मखाना से जुड़े रोजगार की बात होती है, तो हम पाते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करने वाला देश है और भारत में बिहार, जी हाँ अकेला बिहार, 85 से 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। और फिर बिहार में लोगों को मखाना से जुड़े रोजगार के अवसर के बारे में पता तो होना ही चाहिए और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है मधुमिता मैम। आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा। तो आज हम बात करेंगे कि मखाना से कैसे आप उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इसके क्या अवसर हैं। सबसे

0: पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं हूँ मधुमिता और मैं आज मखाना के गुणों के बारे में, उसके उद्यमिता के अवसर के बारे में आप लोगों से बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं जैसा कि इसे मखाना को हम सुपर फूड कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। आइए हम कुछ इनके इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे कि हमारे शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को यह हम बचाता है और त्वचा को जमा रखता है। दूसरी चीज़ है हृदय स्वास्थ्य। इसमें मौजूद पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित रखने में मदद करता है और यह दिल के लिए अच्छा है। फिर है वजन प्रबंधन। कम कैलोरी, वसा और उच्च फाइबर के कारण यह हमारा पेट भरा रखता है और वजन घटाने में भी सहायक है। पाचन में सहायक, यह हमारे पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है। डायबिटीज़ के लिए, चूँकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है। यह फाइबर और मैग्नीशियम से युक्त होता है जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है। फिर यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाना में मौजूद कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव के लिए यह काफ़ी लाभदायक है। हमारे त्वचा और बालों के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। मानसिक विकास के लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। नींद और तनाव, यह तनाव कम करके बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं जिसके चलते यह हर एक वर्ग के लोगों द्वारा मांग किया जाता है, पसंद किया जाता है, जिससे कि उद्यमिता के अपार अवसर खुल जाते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जहां कोई खेती नहीं होती, ऐसी जगहों पर हम मखाना की खेती करके एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि मखाना एक तो वजन को नियंत्रित करता है, बहुत सारे फायदे आपने बताए, उनमें से जो आजकल युवाओं की चाहत होती है वजन नियंत्रित हो और उनकी त्वचा जवा दिखे, और ये दोनों ही फायदे मखाना में भरपूर रूप से हैं। और अभी आप जैसे बता रहे थे कि अपने बिहार में 90 एकड़,
0: 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें जल जमाव वाली जमीन भी शामिल है, तो हम
1: वहाँ मखाना
0: लगा करके बिल्कुल है रोजगार के अवसर
1: पैदा कर सकते हैं। तो अभी रोजगार के बारे में आप बात कर रही थी, तो मखाना का उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावनाएं बिहार में हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैम ये बताइए।
0: जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, जिसमें कि रोजगार भी एक मुद्दा है। तो खासकर बिहार के लिए जहाँ पर कि 85 से 90% उत्पादन होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे उद्यम लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर खड़े कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो कि कच्चे मखाने के बजाय उसे प्रोसेस या प्रसंस्कृत करके बेचना अधिक लाभदायक होता है। रोस्टिंग और फ्लेवरिंग, सादे मखाने के बजाय हम पेरी पेरी, पुदीना, पनीर टिक्का या चॉकलेट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना स्नैक्स बना करके बेच सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है हमारे युवाओं के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। और है मखाना पाउडर, मखाना को पीसकर पाउडर बनाया जाता है जिसका उपयोग शिशु आहार, एनर्जी बार, हेल्थ सप्लीमेंट और बेकरी उत्पादों जैसे कि मखाना कुकीज़ और विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों में किया जाता है। फिर है मखाना बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स, जैसे मखाने का आटा, मखाना फ्लैक्स, पास्ता, मैकरोनी जैसे आधुनिक उत्पाद बना करके भी

0: बेचा जा सकता है, यह भी काफ़ी मांग में है। मखाना खीर मिक्स, यह एक रेडी टू कुक जो कि पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, जिसमें मखाना पाउडर या छोटे मखाना के टुकड़ों के साथ चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स आदि मिश्रित होते हैं। इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। बेकरी उत्पाद, मखाना के आटे के का उपयोग ग्लूटेन मुक्त बिस्किट, ब्रेड और कुकीज़ बनाने में किया जा सकता है। और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद हैं, जैसे कि मखाने का उपयोग हम अनेक पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन पफ्स, मखाना भेल, अचार, कलाकंद एवं अन्य मिठाइयाँ, पास्ता और सलाद के टॉपिंग के रूप में। बहुत सारे ऐसे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं जो कि हम मखाना से प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, और ये हमारे युवा और व्यस्क वर्ग में काफ़ी ज़्यादा
1: पॉपुलर है,
0: मांग में है।
1: मतलब लोगों के बीच मखाना की मांग तो है, और साथ ही जब मखाना इतने फ्लेवर में आ रहा हो, मखाना इतनी अलग अलग वैरायटी में आ रहा हो, तो मांग काफ़ी होती है और रोजगार के अवसर भी होते हैं। लेकिन मैम, क्या मखाना उत्पादन में, मखाना के उद्यम में क्या सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है?
0: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अगर हमें सरकारी सहायता मिल जाती है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और सरकार भी काफ़ी सारी योजनाओं के साथ युवाओं को मदद कर रही है। जैसे कि हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक है PMFME योजना, जिसको कि हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जानते हैं। इसके तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाती है, PMFME पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खास करके बिहार में कई जिलों जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में इस में मखाने की इस योजना के तहत चुना गया है, जिसमें कि सरकारी सहायता मिलती है। अब तीसरा है मखाना विकास योजना, ये जो बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना, मखाना विकास योजना, ये बिहार के 10 विशिष्ट जिलों में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह किसानों को प्रशिक्षण देने और मखाना की खेती और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। फिर यह योजना जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत संचालित होती है, जिसमें मखाना बीज वितरण, भंडारण, गृह निर्माण और प्रोसेसिंग पर सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य हम उद्देश्य बता देते हैं मखाना विकास योजना की। इसके तहत जो है किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास दिया जाता है, फिर अनुशंसित मखाना किस्मों के बीज पर सब्सिडी मिलता है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है, और महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और है मखाना बोर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा बिहार में स्थापित एक सरकारी संस्था है, यह मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना होता है, ताकि किसानों की आय बढ़े और यह सुपर फूड मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। यह मखाना उद्योग की विभिन्न चुनौतियों को हल करने, नवाचार लाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए, मखाना के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती हैं, तो युवा बढ़ चढ़कर आगे आएं और इसका लाभ उठाएं और उद्यम लगाएं।
1: मैम, मखाना उद्यम के बारे में तो हमने बात कर ली, और बार बार आप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं, और प्रोसेस्ड मखाना की मांग भी

0: ज्यादा है। मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस का बाजार क्या है और किस तरह इस तक पहुंचा जा सकता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग का ही बाजार है और बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आजकल लोग जो है, चूँकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और लोग रेडी टू सर्व खाने को पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हेल्दी स्नैक के रूप में इसकी मांग बढ़ रही है और बाजार में इसका पकड़ मजबूत हो रहा है। मखाना के बाजार एवं संभावनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो मखाना जो है भारत में एक हेल्दी स्नैक के रूप में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इसकी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, खासकर युवा, जिम जाने वाले लोग और डायबिटीज़ और हृदय रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो अपनी डाइट में इसे शामिल कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में इसकी भारी मांग है, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। अब हम उद्योग रिपोर्ट की बात करें तो फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में हेल्दी स्नैक्स का बाजार 12% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस एक अहम हिस्सा हो सकता है। और विविध उत्पादों की मांग भी है, जैसे कि भुना हुआ मखाना, चॉकलेट कोटेड मखाना, पनीर फ्लेवर मखाना, मसाला मखाना और अन्य फ्लेवर के मखाना की भी काफ़ी मांग बढ़ रही है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग बिजनेस का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नहीं सिर्फ हमारे घरेलू बाजार में भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। तो हम जो है पैकेजिंग करके और ब्रांडिंग करके एक उद्यमी के रूप में आप स्थानीय किसानों से मखाना खरीदकर उसे ब्रांडिंग करके आकर्षक व लुभावने पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी छोटे उद्यमी वैश्विक बाज़ार में भी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप आधुनिक खेती भी करके जो है अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पारंपरिक तालाबों के बजाय आप मखाने की खेती को खेत प्रणाली से कर सकते हैं, जिससे कि उद्यमी आधुनिक सिंचाई और कटाई की मशीनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग बाज़ार का इसका बहुत ज़्यादा अवसर है, तो लोग, युवा को इसमें आगे आना चाहिए।
0: बिल्कुल, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो मैम, मखाना के स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने बहुत बातें जान ली, लेकिन मखाना की उद्यमियता से क्या लाभ मिल सकता है किसान को, या फिर जो युवा इसमें आना चाहते हैं, इस उद्यम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है?
1: मखाना उद्यमिता के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें प्रसंस्कृत हम अगर इसे कर लेते हैं तो चूंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो ये रोजगार सृजन में मदद करता है, साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि करता है। हम मखाना जो होता है वो धान और गेहूं जैसी फसलों से दोगुना लाभ देता है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की मांग चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा, हम अगर इसमें जाते हैं, अगर इसका उद्यम हम स्थापित करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। निर्यात के भी अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे बताया हमने कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में काफ़ी इसकी मांग है, तो निर्यात की भी बहुत संभावनाएं हैं। फिर ग्रामीण विकास में काफ़ी ये मदद करता है, क्योंकि पलायन रोकने, युवाओं का पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ से भी रोक लगाने में मखाना उद्यम मदद करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है।

0: 50% ज्यादा उपज मिलता है। साथ ही यह कम समय में ज्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस प्रकार यह प्रभेद किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक उत्तम माध्यम है। अंत में हम बताना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि मखाना जो देवताओं का भोजन माना जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों, उपवास और प्रसाद में इस्तेमाल होता है, उसके बहुमुखी फायदे हैं। यह एक पौष्टिक सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मखाना उद्यमिता से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसका उद्यम कृषि मूल्य संवर्धन, नवाचार और निर्यात के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रबल कारक है। संक्षेप में, मखाना उद्यमिता एक सुपरफूड क्रांति का हिस्सा है जो पोषण, आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इन कारणों से यह एक टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय का सटीक साधन है। धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और मखाना से जुड़ी इतनी सारी बातें आपने बताई। आपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, सरकार से क्या सहायता मिलती है लोगों को मखाना उद्यम के लिए, ये सब कुछ आपने बताया और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज के कार्यक्रम उन्नत कृषि में इतना ही। दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए, ढेर सारी बातों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि,

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर,
8: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की अगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अर्का निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान का

नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपको बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे योजना के बारे में बात करने वाले हैं जो किसान भाई बहनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और अगर वो खासतौर से किसी प्रकार के अनाज की खेती कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत उपयोगी होता है. जब किसान भाई बहन बुआई करते हैं और कटाई करते हैं तो उसके बाद उन्हें उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि किस प्रकार से वो अनाजों को सुखाएंगे, उन्हें किस प्रकार से उनका भंडारण करेंगे और कई बार सुखाने के क्रम में या बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया के क्रम में अनाज दूषित हो जाते हैं, मिट्टी लग जाते हैं या फिर कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं. इसलिए जरूरी होता है कि वो चबूतरे पर अनाज को सुखाए और ऐसे में सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है, चबूतरा निर्माण योजना. यानी कि इसमें आपके लिए किसान भाई बहनों के लिए थ्रेशिंग फ्लोर बनवाया जाता है और इसके लिए आपको अपनी तरफ से लागत लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है. कितना लागत आपको लगाना होता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं श्री निशांत कुमार से. सर आप हैं उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण भागलपुर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा जी.
0: सर ये योजना क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन इसका लाभ ले सकते हैं?
1: देखिए किसान भाई, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में. मैं निशांत कुमार, उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण जिला भागलपुर, और आप लोगों का काफ़ी स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस जानकारी के लिए. चबूतरा निर्माण की योजना जो है हमारे कृषि विभाग के द्वारा पुनः 2 साल से शुरू की गई है और जो किसान पहले से भी कृषि विभाग बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि आज से करीब 4-5 साल पहले भी योजना आती रही है, योजना क्रियान्वित होती रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है. चबूतरा निर्माण के लिए किसान, वैसे किसान जो अपने स्वयं के नाम से भूधारी हैं, जिनका खुद के नाम से जमीन है, वो इसका लाभ ले सकेंगे. जिनके खुद के नाम से जमीन नहीं है वो इसका लाभ नहीं ले सकेंगे. सबसे पहले किसान डीबीटी पे पंजीकृत होना चाहिए, जो कृषि विभाग का डीबीटी पोर्टल है उस पर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि लगभग होता ही है सभी लोगों का. तो वो हो गया. उसके बाद है कि डीबीटी के वेबसाइट पर जाके, जो आप जब खोलेंगे कृषि विभाग डीबीटी, तो डीबीटी पे जा करके आप इसका आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन होता है. कृषि विभाग की कोई भी काम, आप खाली यांत्रिकरण हो चाहे आपका चबूतरा निर्माण हो या कोई भी काम, कृषि विभाग का कोई भी योजना जो है ऑफलाइन मोड में नहीं चलता है. अगर कोई बिचौलिया या कोई दूसरा थर्ड पर्सन आपको अगर भ्रमक सूचना दे रहा है या भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि हम आपको लाभ दिला देंगे, आप हमारे साथ चलिए फार्म भर दीजिए, तो उनकी बातों में नहीं आना है. मैं कृषि विभाग से हूं और मैं खुद बोल रहा हूं कि कृषि विभाग की सभी योजनाएं ऑलमोस्ट चली गई हैं ऑनलाइन मोड में. इसलिए आपकी हर एक योजनाएं ऑनलाइन मोड में हो गई हैं, आप ऑनलाइन ही आवेदन करें. चबूतरा निर्माण में क्या है कि जिनके नाम से खुद की जमीन होगी उनको अपने जमीन पर 20 फीट लंबा

0: 30 फीट चौड़ा और ऊंचाई होगी उसकी 2 फीट सवा 2 फीट के आसपास, 20x30 और सवा 2 फीट ऊंचाई होगी, सवा 2 फीट ढाई फीट के आसपास ऊंचाई रखेंगे, उतना ऊंचाई एक चबूतरा का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के पश्चात उनका अनुदान मिलता है। इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले किसान भाई जिस चबूतरे पे, जिस जमीन पे उनको चबूतरा बनाना है, उसके जमीन की रसीद या LPC रेडी रखेंगे, जो जिस खाता खेसरा में बनना है आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आपके पंचायत का जो कृषि समन्वयक है, वो कृषि समन्वयक आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप आवेदन करेंगे उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि आवेदन हुआ है फलना जगह से। वो आपके यहाँ स्थल जांच करने के लिए आएंगे कि पूर्व से चबूतरा तो नहीं बना उस स्थल पे। वो जांच करेंगे और ऑनलाइन आपके साथ वो फोटोग्राफी करेंगे। वेरिफिकेशन जब पूर्ण हो जाएगी कि हाँ आपको आवश्यकता है चबूतरे की और आपके पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है जितने में आप चबूतरा बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, तो उसके बाद जो है आप समन्वयक जो है वहाँ फोटोग्राफी करके अपने ID से उसको अपलोड कर देंगे। तत्पश्चात वो आपका आवेदन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद उसमें भी लॉटरी सिस्टम में लॉटरी होगी और लॉटरी के बाद आपको स्वीकृति आदेश जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जब आपको स्वीकृति आदेश मिल जाता है तो 15 दिन या 20 दिन का समय होता है, मोटा मोटी मान के चले हुए मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि पिछले बार भी मुझे लगा था 15 दिन का ही था, लग रहा है ऐसा। तो 15 दिन का समय आपको मिलता है, 15-20 दिन के भीतर आप चबूतरा निर्माण पूर्ण कर लीजिए। और चबूतरा निर्माण पूर्ण करने के पहले आपको पराकलन मिल जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस प्रकार से वो बनना है और कैसे कैसे आपको कितने एरिया में बनाना है और वो चबूतरा किस प्रकार से बनेगा, क्या क्या मटेरियल लगेंगे, वो सारा चीज़ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसका नक्शा वगैरह सब आप उसको बनवा लीजिए। बनवाने के पूर्व जो है आप अपने कोऑर्डिनेटर, जिसको हम समन्वयक कहते हैं, उनको खबर कर दीजिए कि हम बनवाना शुरू कर रहे हैं। जिस दिन बनवाना होगा, बनवाने के पहले आपके कोऑर्डिनेटर को आप जरूर फोन करके या बुला करके कह दीजिए कि फलाने तारीख को हम काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस काम शुरू करने के पहले जिला से पदाधिकारी जाते हैं, उनकी उपस्थिति में लेआउट होता है। अगर उनकी उपस्थिति में आप लेआउट नहीं कराएंगे तो फिर आपको अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बात सभी किसान भाई जान लीजिए कि अगर आपको चबूतरा में आपने अप्लाई कर दिया और आपको परमिट मिल गया लॉटरी से, आपका नाम आ गया, तो आप जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन की खबर अपने समन्वयक को देंगे और समन्वयक भाई को कह देंगे कि भाई आपके जिले के जो पदाधिकारी आते हैं उनको कृपया आप बुला लीजिए, ताकि उनको उपस्थिति में ही लेआउट कराया जा सके। लेआउट एक बार हो जाएगा, वो फोटो अपलोड हो जाएगा उनके लॉगिन से, तो आप काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। शुरू करके जितना जल्दी हो सके खत्म कर दीजिए। जैसे ही आप काम खत्म कर देंगे, उसका सारा बिल वाउचर जो भी होता है, जो भी उसमें लगेगा, गिट्टी बालू सीमेंट जो भी चीज़ें ईंटें जो भी लगेंगी, वो सारी चीज़ों को बिल वाउचर बनवा करके अच्छे से रखेंगे और सबका बिल वाउचर और अपना आपको जो परमिट मिला है उसकी एक कॉपी, अपना आधार कार्ड, आपका पंजीयन रसीद और आपका बैंक खाता का पासबुक की फोटोकॉपी, सब पे साइन करते हुए सारे डॉक्यूमेंट जो है आप जिला कृषि पदाधिकारी को ला के सौंप देंगे। सौंपने के बाद आपके खाते में जो अनुदान की राशि है वो अंतरित कर दी जाएगी DBT के माध्यम से। इस योजना का प्राकलित राशि जो है वो लगभग 1,14,000 रुपया है या 1,00,000 के आसपास में है, कि मतलब आपका ये मान के चला जाता है कि वो चबूतरा 20x30 का जो आप बनाएंगे वो चबूतरा आपका 1,00,000 रुपए का बनता है, जिसमें कि आपका अनुदान जो है अधिकतम 25,000 रुपया है। तो योजना स्वीकृत हो चुकी है इस वित्तीय वर्ष में और एक बार चेक भी आप लोग कर लीजिए, हो सकता है अनुदान इसका आवेदन भी शुरू हो गया हो, प्रारंभ हो गया हो, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें और कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस चबूतरे का लाभ आप इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि कहीं पानी घुस गया, अतिरिक्त पानी हो गया, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई, तब इस चबूतरे पे भी आश्रय ले सकते हैं। दूसरा इसका एक फायदा सबसे बड़ा क्या है कि आप इस पे कोई भी फसल को झाड़ सकते हैं। इसको हम लोग कहते तो चबूतरा है लेकिन रियल में इसका नाम है थ्रेसिंग फ्लोर, मतलब फसल झाड़ने का एक स्थल जहां पे हम फसल को झाड़ते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, दौनी करते हैं। आप इस पर फसल को थ्रेसिंग भी कर सकते हैं, इस पर फसल को सुखा भी सकते हैं, इस पर आप आश्रय भी ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी योजना है, मैं चाहूंगा कि सभी किसान भाई इसका लाभ उठाइए और जो पैसे आते हैं सरकार हमें खर्च करने के लिए देती है वो किसानों के भलाई के लिए होती है, और जब हम लोग पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, किसान उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और सरकार को हमें वापस करना पड़ता है वो पैसा, तो बड़ा अंदर से तकलीफ होता है कि भाई किसानों का पैसा आया था किसानों के हित के लिए और किसानों ने इंटरेस्ट नहीं दिखलाया। तो इस योजना का लाभ लीजिए, आपकी योजना है, आप लोगों के लिए, बस इतना ही कहना था इसमें मुझे, धन्यवाद।
1: जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर ने कहा, एक बहुत ही विशेष बात, महत्वपूर्ण बात सर ने कही कि जो भी योजनाएं हैं वो सारी

0: ही लगभग योजनाएं ऑनलाइन हो गई है। तो अगर कोई बिचौलिया आपसे कहता है तो बिल्कुल उनकी बातों में आप ना आए, उनके झांसे में ना आए, और जिस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई करें, आवेदन करें और योजनाओं का आप लाभ ज़रूर उठाएं, आप आवेदन करें। और उम्मीद है कि हमारी आज की इस चर्चा से आपको जो भी ज़रूरी बातें आपको जाननी चाहिए वो आपको पता लगी होगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को बताया चबूतरा निर्माण योजना के बारे में। तो किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in
4: पर। हर घर सूर्य घर।
5: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: थॉट्स और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ हम कुछ अलग अलग विषय लेकर आते हैं एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलता है इससे, क्योंकि उनकी खेती में आने वाली परेशानियों का हल हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम को सुनकर उन्हें मिल जाता है। तो आज भी एक खास विषय हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, गन्ने की वैज्ञानिक खेती द्वारा आमदनी में आप कैसे वृद्धि करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर हरि ओम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने विषय की ओर और जानते हैं कि आज के परिवेश में गन्ने की खेती की क्या उपयोगिता है।
1: जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में पश्चिम चंपारण में 46% गन्ने की खेती होती है, पूर्वी चंपारण में 17%, इसी तरह से हमारा गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ये हमारा ज़्यादातर गन्ने का खेती इसी जिलों में होती है। और जैसे अपना ये भागलपुर, बांका, नौगछिया, पूर्णिया, किशनगंज या कटिहार, या हम पटना या उसके आगे आरा बक्सर भी जाते हैं, तो इधर बहुत कम ही किसान थोड़ा मोड़ा खेती करते हैं
0: जी,
1: कम ही क्षेत्रफल पे। तो आजकल ये देखते हैं कि हम तुलना जैसे करेंगे, अभी कोविड के बाद से ये देखने को मिला है कि लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं
0: जी।
1: तो गुड़ और चीनी, तो हमारा जो गुड़ होता है उसमें 0.6 से लेकर के 1% तक मिनरल्स होते हैं, जबकि चीनी में हमारा 0.05% हमारा मिनरल्स होता है। तो हम कह सकते हैं चीनी में ना के बराबर हमारा मिनरल है। तो ये हमारा जो मिनरल्स होता है, पर्टिकुलरली विशेष तौर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन गुड़ में ज़्यादा होता है, और इसको खाने से प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। तो अभी हमारा उपभोक्ता का जो है इस तरफ झुकाव हुआ है
0: जी,
1: गुड़ की तरफ। और हमारा जो गन्ना है, गन्ने के ऊपर वाला जो भाग होता है, हरा भाग, उसको चारा के रूप में भी उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई।
0: डॉक्टर साहब, और ये भी कहा जाता है गन्ने की खासियत है जैसे गुड़ बनाया जाता है, और ये गुड़ जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी ले सकते हैं, उनसे उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं है
1: जी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। जैसे गुड़ और चीनी में ये अंतर है, गुड़ में जो सुक्रोज होता है वो 65 से 80% तक होता है, लेकिन हमारा जो चीनी होता है उसमें 99.5% हमारा उसमें जो है सुक्रोज होता है
0: जी।
1: तो चीनी के तुलना में हमारा गुड़ में जो है सुक्रोज का मात्रा कम होता है, इसलिए वो खा सकते हैं। इसमें मिनरल्स भी होता है तो वो उनके लिए बेहतर है।
0: बेहतर है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में खाना चाहिए उन्हें। डायबिटिक पेशेंट जो है, इवन जो नॉर्मल लोग भी हैं, उन्हें भी एक संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चीनी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गन्ने की खेती के लिए, तो इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए डॉक्टर साहब?
1: जैसे हम ये जानते हैं कि गन्ना हमारा एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, और इसको उगाने के लिए हमको लंबा गर्म दिन के साथ साथ पर्याप्त वर्षा या हमारे पास सिंचाई का साधन होना आवश्यक है। और जो हमारा सूर्य लंबे समय तक जो चमकेगा, उसके चमकने की अवधि होगी और सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी, तो उससे क्या होगा कि गन्ने का जो वृद्धि होगी वो तेज़ी से होगी, उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। और इसके लिए हमको जो अनुकूलतम हमारा जो तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर ये हम देखते हैं कि अगर तापमान 20 डिग्री से नीचे अगर चला आता है तो हमारा गन्ने का जो वृद्धि होती है उसका कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और अगर 50 डिग्री से ज़्यादा का ये तापमान अगर चला जाता है ऊपर, तो गन्ने का जो ग्रोथ होता है, शुगर केन का जो ग्रोथ होती है, वो स्टॉप कर जाती है। और तो इस तरह से ये हम देखेंगे कि सक्रिय वृद्धि के समय वर्षा भी एक उपयोगी है ना। जब हमारा गन्ने का एकदम अधिकतम ग्रोथ होता रहता है, उस समय अगर बारिश मिल जाए गन्ने को, तो उससे गन्ने की वृद्धि और बढ़वार और जो इंटरनोड होता है उनके निर्माण में और तेज़ी हो जाती है। और गन्ना के जो पकने का समय होता है, उस समय 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का उसको ज़रूरत पड़ता है, और पकने के समय बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश होती है गन्ना पकते समय, तो उसके गुणवत्ता पर असर पड़ता है, रस की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ये नॉर्मली हम देखते हैं कि 7 से 9 घंटा तक चमकती हुई सूर्य की रोशनी सक्रिय वृद्धि और कल्ले निकलने और पकने में सहायक होती है। और इसके साथ ये जो है तना को मोटा करता है, और वो

0: ता होता है, पत्ती चौड़ी होती है एवं हरी होती है, तो इस तरह के हम जलवायु में गन्ना को बहुत आसानी से हम लोग उगा सकते हैं।
1: जी, तो ये तो हो गई जलवायु की बातें, और अगर हम अपने बिहार क्षेत्र की बात करें तो इसकी रोपाई हमारे यहाँ यानी कि बिहार में कब कब कर सकते हैं?
0: जी, गन्ने की हमारा रोपाई हम तो कभी भी कर सकते हैं, पर पहले गन्ने का जो जरूरत है मिट्टी, किसी भी मिट्टी में हम उगा सकते हैं, और उस मिट्टी में अच्छा जल निकास होना चाहिए, और दोमट मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, और हमारा जो पीएच होता है उदासीन होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है तो अच्छा रहता है। अगर मिट्टी हल्की है तब सिंचाई का हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए, अगर मिट्टी भारी है तो जल निकास का भी समुचित प्रबंध होना चाहिए। रोपाई का मौसम, जैसे हमारा दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो वहाँ रोपाई नवंबर से लेकर अप्रैल तक करते रहते हैं, पर कुछ इलाकों में जून से अगस्त में भी हम गन्ने का रोपाई करते हैं ना, तो पर जो हमारा बारिश में रोपाई करते हैं वो 12 से 18 महीने का फसल हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो दूसरी भी बारिश देख लेती है तो उसका जो है थोड़ा गुणवत्ता प्रभावित होता है रस का ना। तो और दूसरी तरफ अपने इलाके में नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर बिहार या यूपी इस तरह में, तो हम तीन समय में गन्ने का खेती कर सकते हैं। एक तो जो है शरदकालीन, शरदकालीन का मतलब यह है कि बारिश जैसे हमारा ख़त्म होगा सितंबर अक्टूबर में हम गन्ने का रोपाई करेंगे, तो इस समय क्या होता है कि पर्याप्त नमी होती है और मौसम भी गन्ने के लिए उपयुक्त रहता है, और फसल का जो अवधि होगा थोड़ा लंबी होगी तो उससे हमको उपज अच्छा मिल जाएगा। पर ये शरदकालीन गन्ने की बुआई सिर्फ टोटल जो गन्ने का बुआई होता है उसमें सिर्फ 15% तक ही होता है, क्योंकि अगर इस समय हम गन्ने की बुआई कर देंगे तो किसानों में ये अवधारणा है कि हमारा रबी के फसल का नुकसान होगा, हम गेहूं नहीं ले पाएंगे, आलू नहीं ले पाएंगे, सरसों नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमारे किसान भाई शरदकालीन गन्ने को थोड़ा अवॉइड करते हैं। पर इस मौसम में गेहूँ आलू सरसों की अंतर्वर्ती खेती किया जा सकता है शरदकालीन में। दूसरा हम जब करते हैं तो रबी फसल की कटाई के बाद फरवरी मार्च में रोपाई करते हैं, तो ज़्यादातर 80-85% गन्ने का जो रोपाई होता है हमारा इसी महीने में होता है, और थोड़ा और देर में थोड़ा बुआई करते हैं गेहूं के कट जाने के बाद अप्रैल मई में भी करते हैं, लेकिन अप्रैल मई में जो हमारा बुआई होता है उसमें नमी का तनाव और ज़्यादा तापमान होता है, उससे फसल थोड़ा प्रभावित होती है, उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है।
1: जी, और इसके अनुशंसित प्रजातियों के बारे में बता दें।
0: जी, तो जैसे कि हम अनुशंसित प्रजातियों से पहले ये कहेंगे कि जो हमारा गन्ना होता है, गन्ने के तने को हम काट काट के बुआई करते हैं, उसको सेट्स बोलते हैं, तो वो सेट्स का जो है गुणवत्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें रोग कीट या व्याधि ना हो, उसका जो कली होता है आई जिसको बोलते हैं आँख, वो स्वस्थ हो और उसमें अधिक नमी हो, पर्याप्त पोषक तत्व हो, ये सब चीज़ उसमें होना चाहिए, और सेट्स को कार्बेंडाजिम 0.1% घोल में उपचारित करके ही सेट्स का बुआई करना चाहिए। और अनुशंसित हमारी जो प्रजातियां हैं बिहार के लिए, इसमें दो तरह की प्रजातियां होती हैं, एक तो जल्दी पकने वाली गन्ने की प्रजातियां और एक जो है देर से पकने वाली प्रजातियां। तो अभी जल्द में ही वैरायटी रिलीज हुई है COLK94184, जिसको हम बीरेंद्र कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के लिए अनुशंसित की गई है, जिसका औसत उपज जो है 76 टन प्रति हेक्टेयर है, और इसमें चीनी भी अच्छा पड़ता है, लगभग 9 टन से ज़्यादा का इसका जो है चीनी प्रति हेक्टेयर ये पड़ता है इसमें, और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जलमग्न क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, और इसका रटून जिसको पेड़ी कहते हैं भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी एक प्रजाति है COLK12207, तो ये भी प्रजाति लगभग 75-76 टन प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन हमको दे देती है, और इसका पेड़ी भी अच्छा होती है, और गन्ने में एक रोग लगता है लाल सड़न रोग, इसके ये प्रतिरोधक क्षमता इसके पास होती है, इसमें कम लगता है। तो हमारी जो दूसरी और प्रजातियां हैं, जैसे देर से पकने वाली गन्ने की प्रजातियां हैं, तो COLK8102 ये जो प्रजाति है ये अच्छा उत्पादन देती है, लगभग 78 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उत्पादन हो जाता है, और कल्ले भी अधिक निकलते हैं, और पेड़ी के लिए ये प्रजाति बहुत ही उपयुक्त है, और इस प्रजाति में लाल सड़न रोग नहीं लगता है, ना, और दूसरी एक जो बात है इसमें सूखा सहन करने की भी क्षमता है, और यह प्रजाति बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित की गई है
1: जी।

0: और किसान भाई इसको भी कर सकते हैं। एक दूसरी और जो प्रजाति है COLK12209, इस प्रजाति का भी औसत उत्पादन 78 टन प्रति हेक्टेयर है और ये भी पेड़ी के लिए उपयुक्त है। और इसमें जो एक लाल सड़न रोग लगता है जिसको हम लोग रेड रॉट कहते हैं, तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता इसमें कम लगता है और यह भी यूपी और बिहार झारखंड इस इलाके के लिए अनुशंसित की गई है
1: जी। और डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा था कि पोषक तत्व प्रबंधन होना चाहिए, गन्ने की खेती हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे हम पोषक तत्व प्रबंधन गन्ने में?
0: गन्ने में जैसा कि है कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम हमारा पोटास प्रति हेक्टेयर इधर से अनुशंसित किया गया है। तो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तो हम बुआई के समय कूट में ही डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देते हैं, और हमारा जो नाइट्रोजन है उसको हम तीन भागों में जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला जो भाग होगा उसको हम बुआई के समय ही दे देंगे और बाकी जो बचा भाग होगा तो एक कल्ला निकलने के समय ना, तो ये लगभग 50 से 60 दिन में कल्ला निकलने लगता है, फिर वनस्पतिक वृद्धि होने लगती है 120-125 दिन में ना। तो कल्ले निकलते समय और वनस्पतिक वृद्धि के समय जो है बचा हुआ दो भाग नाइट्रोजन का हम इसमें देते हैं। अगर गन्ने का पेड़ी है तो उसमें हम जो है 25% और ज़्यादा अतिरिक्त नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए
1: जी। तो ये बातें हुई पोषक तत्व प्रबंधन की, लेकिन पोषक तत्व तभी हमारे जो फसल है उन्हें पूर्णता मिल पाएगा जबकि खरपतवार का हम प्रबंधन करें, तो कैसे करेंगे हम खरपतवार का प्रबंधन करने की खेत में?
0: जैसे कि अगर शाकनाशी का प्रयोग हमको बाद में ही करना चाहिए, पहले और दूसरे ऑप्शन को देखना चाहिए। एक ब्लाइंड होइंग होती है, अंधी गुड़ाई जिसको कहते हैं, उसको अगर हम करेंगे तो खरपतवार जो है वो समाप्त हो जाएंगे और हमारे गन्ने को उसमें एरेशन होगा ना, प्रॉपर हवा उसमें मिलेगी जड़ में उसके। और इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि इंटरक्रॉपिंग करेंगे ना, अंतर्वर्ती खेती करेंगे, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। और अंत में अगर खरपतवार की समस्या हो तो हम 2,4-D जो है आधा किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1,000 लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं और ये 60 से 90 दिन तक इसका कर सकते हैं, 60 से 90 दिन तक इसको हम 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और हर्बिसाइड है अटराजिन जिसको बोलते हैं हम लोग, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम 1,000 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना के बुआई के 3 दिन के अंदर ही कर लेते हैं, हम 3-4 दिन के अंदर में छिड़काव कर लेते हैं ना, तो उससे भी हमको खरपतवार नियंत्रण में राहत मिल जाती है।
1: जी जी, अभी आपने इंटरक्रॉपिंग की बात की, अंतर्वर्ती फसलों के, तो ये तो की जा सकती है, तो कौन कौन से फसलों का हम चयन करें अंतर्वर्ती फसलों के रूप?
0: जैसे हमारा जो शरतकालीन गन्ना होता है अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, तो उसमें अगर हम गन्ने के साथ 2 कतार आलू का या 2 कतार मसूर का या 2 कतार सरसों का अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कम से कम हमको 200 से 250 कुंटल आलू मिल सकता है, 10 से 12 कुंटल मसूर भी मिल सकती है और 10 से 12 कुंटल हमारा जो है सरसों भी प्राप्त हो सकती है अगर गन्ने के बीच में करेंगे तो इंटरक्रॉपिंग। और अगर हमारा जो है गर्मी के सीजन में जो फरवरी मार्च में हमारा फसल लगाते हैं बसंत कालीन में, उसमें उड़द और मूंग का भी अगर हम 2 गन्ने के कतारों के बीच में 2 कतार का बुआई करें तो 7 से 8 कुंटल हमारा उड़द या मूंग भी हमको मिल सकता है
1: जी,
0: और हमारा गन्ने का उपज भी प्रभावित नहीं होगा।
1: तो चलते चलते एक और सवाल अंत में डॉक्टर साहब की, जो गन्ने में लगने वाले कीट हैं और रोग हैं उनसे कैसे बचाव करें हम?
0: जैसा कि हम इधर भागलपुर में देखा है कि यहाँ पे रेड रॉट बीमारी लगती है, लाल सड़न रोग लगता है, तो इसका लक्षण यह है कि हमारा जो 3-4 पत्ती होती है ऊपर से वो पीली दिखने लगती है और बाद में देखेंगे ना पत्ती के जो बाहरी सिरा है वहाँ से वो सूखना शुरू करती है और अंदर की तरफ वो सूखती है ना, सूखने लगती है और अंत में वो मतलब मर जाती है, जिसको कहेंगे समाप्त हो जाता है उसका हरापन ना, तो तने का जो प्राकृतिक रंग है वो भी समाप्त हो जाता है। और जब हमारा गन्ने का जो तना होगा, जब तने को 2 बराबर भागों में हम काट देते हैं खड़े, तो उसमें देखेंगे लाल रंग का उसमें जो पिथ होगा ना उसमें स्ट्रिप्स पड़ी होगी, सफ़ेद रंग का उसमें बैंड्स पड़ा हुआ होगा और उसमें स्मेल भी आता है और उसमें इस प्रभावित गन्ने से उसका रस जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है।

0: उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसमें हमको सावधानी ये करनी चाहिए बुआई से पहले गन्ने का, हमारा जो सेट्स होगा, जो गन्ना हम खरीद कर लाएंगे, वो देखेंगे कि इसमें ना हो ना, उसके ये बीमारी ना हो। और अगर हम खेती कर रहे हैं, उस खेत में लाल सड़न रोग आ गया है, तो हमको ग्रीन मैन्योरिंग और धान उगा लेना चाहिए, थोड़े दिन के लिए गन्ने का खेत को बदल देना चाहिए
1: जी।
0: और वैसे ही ये बीमारी जब आ जाती है तो कोई इसका खड़ी फसल में कोई उपचार नहीं है, पहले से ही है कि हम बीज को उपचारित करके बोएं, स्वस्थ हमारा जो है गन्ने का सेट्स हो, तो यही ज़्यादा अच्छा इसमें है
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों और श्रोताओं, इस प्रकार आप गन्ने की खेती करते हैं तो डेफिनेटली आमदनी में वृद्धि ज़रूर होगी। और आगे चलते हुए आप सभी से फिर एक अलग विषय के साथ मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम 90.8 MHz पर। उन्नत कृषि।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लग

0: बहुत बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें

0: और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको

0: बताना चाहूंगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर

0: प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
1: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मैलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
0: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली के आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.4 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने जो भी अपने बारे में सोचा है, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सफल बस वही होते हैं जो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सक्सेसफुल होते हैं ना, वो सिर्फ मेहनती नहीं होते हैं बल्कि उनमें कुछ अच्छी आदतें भी होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट के बारे में, यानी कि सफल छात्रों के आदतों के बारे में। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने, अच्छे मार्क्स लाए और अपने सपनों को पूरा करे, हर कोई चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से आती है, यानी कि सिर्फ समझदारी होशियारी से आती है? नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा राज होता है आदतें। जी हाँ, आपकी आदतें कैसी है, आपके हैबिट्स कैसे हैं, तो आज हम जानेंगे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में कौन कौन सी आदतें होती है जिसे आप ही अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सफल होना क्या है। कुछ लोगों के लिए सफलता है कि किसी एक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सफलता का मतलब है कि उन्हें कोई उनका ड्रीम जॉब मिल जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए सफल होने का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि वो खुश हैं, संतुष्ट हैं, काफ़ी है। लेकिन किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ भी हो, लेकिन हर एक सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, वो होता है मेहनत और सही आदत। जी हाँ, मेहनत और सही आदतों का ही रिजल्ट होता है सफलता। और आज हम इसी के बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लिया है हमने कि सक्सेस क्या है। अब हम जानते हैं कि सक्सेस आता किसके साथ है। कहते ना कि बिल्कुल एक फिक्स पैकेज होता है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेज करना आना ही चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है टाइम मैनेजमेंट। वो अपना डेली शेड्यूल बनाते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं, जो आजकल बहुत सारे बच्चों की परेशानी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। वो सोचते हैं कि आज मूड नहीं है, या फिर आज नहीं, कल से पढ़ेंगे, एक घंटे बाद पढ़ेंगे, और वो कल, वो एक घंटे बाद कभी आता ही नहीं है। अगर आप हर रोज 2 घंटे फोकस करके पढ़ते हैं तो आपको जो लास्ट टाइम पे आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं ना, उसे कहीं ज़्यादा हर रोज 2 घंटे इफेक्टिव होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना डेली शेड्यूल बनाएं, पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स रखें और साथ ही प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। हर रोज़ आप टू डू लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मुझे ये करना है, मतलब ये करना है। बाकी सारे काम नहीं भी होंगे तो चलेगा, और हर रोज आप उस पर टिक लगाइए कि हाँ, मैंने आज जो अपनी प्रायोरिटी थी उसे मैंने कंप्लीट की है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके रूम में आपने देखा होगा एक व्हाइट बोर्ड रहता है, उस पर वो लिख देते हैं कि कल उन्हें क्या करना है और फिर उस पर टिक करते हैं कि हाँ, मैंने ये काम भी कर लिया, मैंने ये काम भी कर लिया। यह आदत अच्छी होती है। और अभी मैंने कहा ना कि हर रोज आप 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ते हैं और लास्ट मोमेंट पे आप, लास्ट टाइम में आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, बस हर रोज पढ़िए। तो इसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के साथ अगर स्मार्ट स्टडी मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। जो भी सफल विद्यार्थी होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करते, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हर रोज पढ़ते हैं। कभी भी पढ़ना मिस नहीं करते कि हाँ ठीक है, आज नहीं पढ़ाई की, कल नहीं पढ़ाई की, परसों नहीं पढ़ाई की, तरसों पढ़ लेंगे 4 घंटे। नहीं होता ऐसा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मुश्किल तब भी होता है अगर आपने अपने गोल्स क्लियर नहीं रखे हुए हैं। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं होगा तो डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होगी, जाहिर सी बात है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से शहर जाना है, तो आप ट्रेन कौन सी लेंगे, तो जाहिर सी बात

है, आपको जब पता ही नहीं होता है कि आपका गोल क्या है, तो आप उसके लिए काम कैसे करेंगे, उसके लिए पहला कदम कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने गोल को क्लियर रखें, तभी आपके डायरेक्शंस भी क्लियर होंगे। और कुछ लोगों के गोल होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो कि हर रोज़ अपना गोल फिक्स करते हैं कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है, या फिर वीकली बेसिस पे वो बनाते हैं कि इस वीक में मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि उन्हें पता होता है कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मुझे इस परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है, तो वो उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। आपने हो सकता है कि अभी आपने अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा है, किसी एक एग्ज़ाम के बारे में आपने नहीं सोचा है, बस आप अभी अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अभी प्रेजेंट में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। दोनों ही गोल आपने फिक्स किया हुआ है, दोनों ही गोल के लिए आप काम करेंगे, और दोनों ही गोल के लिए जब आप काम करते हैं तो आप सही दिशा में पहुंच ही जाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, गोल होना चाहिए। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है डिस्ट्रैक्शंस। गोल बना लिया आपने, टू डू लिस्ट बना लिया, लेकिन आपकी लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शंस है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आज का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मोबाइल और सोशल मीडिया से हम दूरी कैसे बनाएं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इनका बहुत ही लिमिट में इस्तेमाल करते हैं। वो फ़ोन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल वो अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, ना कि फ़ोन के गुलाम वो बन जाते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे बच्चे फ़ोन के गुलाम बन गए हैं, फ़ोन के हिसाब से सोते हैं, जागते हैं। फ़ोन चार्जिंग पे होता है तभी उन्हें ध्यान आता है कि अरे मैं करियर का क्या करूं, मैं क्या कर रही हूं अपने जीवन में। लेकिन जैसे ही फ़ोन चार्ज हुआ, वो भूल जाते हैं कि अभी हमें अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। और सोशल मीडिया ने तो इस तरीके से बहकाया हुआ है कि क्या ही कहने। इसलिए अभी सबसे ज़रूरी होता है कि आप मोबाइल से, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना कर रखें, उन्हें यूज़ करें पर लिमिट में करें। और पढ़ाई के समय में तो आप अपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पर रखिए, उसे दूर रखिए, नोटिफिकेशंस को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, और ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए और ख़ुद को समझा लीजिए कि ब्रेक के टाइम पे ही फ़ोन का इस्तेमाल करना है। जब पढ़ाई कर रहे हो तब फ़ोन का नो यूज़, नो यूज़, नो यूज़, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस दस्तक देगी। और जब सक्सेस दस्तक देती है तो उसके पहले बहुत सारी असफलताएँ भी रहती है। और ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट हो। जी हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप फेलियर से नहीं डरते हैं, तो फिर आप रेस में लंबे टिकते हैं। हर स्टूडेंट कभी ना कभी फेल ज़रूर होता है, फिर चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी हार्ड वर्किंग हो, कभी ना कभी उसके जीवन में एक ऐसा क्षण ज़रूर आता है जब वो हार जाता है। लेकिन वो हार मानता नहीं, डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। वो जानता है कि जो फेलियर है ना, अंत नहीं है, वो एक सबक है। इसलिए नेगेटिव सोच से बचे, खुद पर विश्वास रखे और खुद के हेल्थ को भी बनाए रखे। जी हाँ, कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। वो प्रॉपर नींद लेते हैं, जी हाँ, 7 से 8 घंटे, 7 से 9 घंटे, जी हाँ, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही हेल्दी खाना भी ज़रूरी होता है, और एक्सरसाइज करना तो बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छे से सोइए, हेल्दी खाना खाइए और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना बंद मत कीजिए। पर ध्यान रखिए कि आप कैसे दोस्तों से मिल रहे हैं। अगर आप अच्छे दोस्तों से मिलेंगे जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, या फिर पढ़ाई में अच्छे नहीं भी हैं पर मोटिवेटेड तो हैं कम से कम, और वो अच्छे हैं, तो वो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, तो फिर ऐसे दोस्तों का साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं आप ऐसे दोस्तों से मिलेंगे जो कि खुद की लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, लगातार गेम में लगे हुए हैं या फिर सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप में भी वो आदतें आ जाएंगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाने, आप समझे कि आपके दोस्त कैसे हैं। आप अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको इंस्पायर करे। तो इन बातों का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, आप अपने गोल्स क्लियर रखिए और डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल दूर रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, तो यकीन मानिए सफलता आपके पांव ज़रूर चूमेगी और आपके कदमों में बिछ जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान, तो याद रखिए सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है, ये हर रोज़ की आदतों से बनती है। आज आप जो कर रहे हैं वो कल के किसी क्षण को तय करने वाली है। तो आज ही एक छोटी सी अच्छी सी आदत शुरू करें और धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंच जाएं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपके काम आएगा।

और आप अपना और अपने अपनों का और अपनी पढ़ाई का, अपने सपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि बिना सपनों के जीना बहुत मुश्किल होता है। सपने रखिए, सपनों को पाइए, और जो सपनों को पाने की आग होती है ना, वही हमें जिंदा रखती है। जिंदा रहिए, खुश रहिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.
6: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, हाजिर है आरजी अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भ

0: गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो हैं वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और ये हैं पशुपालन विभाग से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
1: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है, क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है, और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं तो उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के, और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय पर डालने से वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का और गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ क्वालिटी उन्नत नस्ल के सांड का जो बीर्य डालने से वो काफ़ी उन्नत नस्ल के बछड़े बाछा या बाछियाँ उनको प्राप्त होती हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो हमने जाना कि ये क्या होता है, और अब ज़रूरी होता है कि हम जाने कि इससे लाभ क्या मिलता है और साथ ही इससे हानि क्या मिलता है।
1: जी, जैसा कि आपको हमने बताया पहले कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशुपालकों को कि गाय को एक जगह से दूसरे जगह गर्मी की अवस्था में ले के जाना, तो आजकल जो डोर स्टेप लेवल पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी, NGO के द्वारा भी, और कॉम्फेड के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें कि श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इससे फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पे मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसिमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे, AMPM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर, जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसिमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40-50% ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है, एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी

0: फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेंट डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24 से 26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहां कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह से गायनको क्लिनिकल जांच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मनपसंद आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीका से उसमें आर्टिफिशियली सीमेंट डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसिमिनेशन में गाय का, कुछ कुछ गाय छोटी होती हैं और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेस ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है या पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावे भी कुछ सावधानियाँ हैं जो जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
0: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
1: अच्छा।
0: और दूसरी चीज है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे जरूरी है समय, और तीसरी चीज है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है नाइट्रोजन सिलेंडर में, जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायोकैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहाँ से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं, थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गाय को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी हुई नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देशी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे नस्ल छोटी गाय है तो आप अगर होस्टिन फ्रीजियन का सीमेन डालेंगे तो कभी कभी डिस्टोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है और जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
1: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं?
0: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि

0: जहाँ अभी हमारा हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, एनजीओ के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी, ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायोकैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है। तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है, दूसरी चीज़ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है, दूसरी चीज़ है कि जो इस जो भी व्यक्ति जो थोड़ा जिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं, तो उनको भी लाभ होता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जो जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है, उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहाँ हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहाँ भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस ओर से इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बुन है, और जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
1: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और साथ ही अगर इसे एक रोज़गार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, और सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम।
2: उन्नत कृषि,
3: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी

0: से सोती है। और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के चौधरी सर। सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद मैडम।
3: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है?
4: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा। जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है। आजकल धान का उत्पादन लगभग 9 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा बिहार राज्य में इसकी खेती लगभग 31,00,000 हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70,00,000 टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है। इसके कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है। धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा। हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में।
3: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर खर पतवार का प्रबंधन ना करें तो खर पतवार से किस प्रकार से हानि पहुंचता है हमारे धान के फसल को?
4: सबसे पहले तो खर पतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसलों में खर पतवार से लगभग 15-85% तक का नुकसान होता है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 5 से 15 किलोग्राम स्फुर और 15 से 50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7 से 14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है।
3: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
4: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार। उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसमें नाम है जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं, और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में। इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकोलोना कोलोनम भी कहते हैं, उसके बाद एक सावक होता है जो इकाइनो कोरोना

0: सिगेली होता है, इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका, इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुड़मुड़ नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस इत्यादि, ये जो जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
1: तो सर कौन सी स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
0: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं, इसके अलावा जो बन घाय जो घाय साग के जो एमरेंथस होता है वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावित नहीं करता है।
1: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो शस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके, अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके। इसके अलावा जो है यांत्रिक विधि है जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानता धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो शस्य क्रिया विधि है उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है उसके द्वारा स्प्रे करके, उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पडलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन, जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है जहां पर खरपतवार के रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि

0: किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकवा विधि से बोते हैं। छिटकवा विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकवा विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं, धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है, जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है, ऑयल सीड है, अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए धान, सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30 से 40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई, क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में नियत पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास डालना चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा भाग फसल को मिल सके।
1: जी सर, ये तो आपने बताया अलग अलग तरीकों से किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। सर, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि रासायनिक विधि से खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और इस विधि के दौरान कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
0: निश्चित ही रासायनिक विधि बहुत ही कारगर, जितने भी विधि बताएं उसमें सबसे ज्यादा कारगर रासायनिक विधि को माना जाता है। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं स्वसमय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है। इसलिए पहले साधारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे, जो धान में मुख्यतः तीन

0: तरह के खरपतवार पाई जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार। उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है, जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, जिसको मिंचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड, जिसका मात्रा जो है 400 से 500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमरजेंस जो प्री जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3 से 4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है बिस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है, जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है, जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका दर होता है और ये 25 से 30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750 से 1500 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर की दर से है, जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर, जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है, जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। यह घास मोथा चौड़ी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय भी देना बहुत ही लाभदायक। जो कि एक और भी दवा है जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 2,4-D नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है 0.5 लीटर से 1 लीटर ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है और ये सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो है बहुत से दवा है, जैसे ऑल मिक्स जो दो हर्बिसाइड दो शाकनाशियों का कम्बिनेशन है, जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है, ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है, जिसमें कि चौड़ी पत्ती मोथा कुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को मारना है उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है, जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, जिसमें चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों सिर्फ मोथा को ही मारना है उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है, जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं, जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है, इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है उपलब्ध है उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिल सकता है।
1: जी सर, सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश यही है, जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत जरूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि का हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें, उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसके में काम करे उसका प्रयोग करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों, जिस तरीके से सर ने बताया उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ,
2: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को

0: जाना खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
2: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
11: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
6: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड

0: 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसी फेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करे। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की अगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अर्का निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി.
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित

0: हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी हैं। जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं मैम केवीके सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है।
1: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है। गेंदा का महत्व बहुत ज्यादा है आज के डेट में। हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफी उपलब्ध है इसके लिए।
0: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
1: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों के गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है, और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार की डिमांड पे, मांग पर, इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
0: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
1: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पूसा अर्पिता है, पूसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रबी के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बैंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं, और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं, तो उनके पास अपना पौधा रहेगा, और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है, जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए। क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है। अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है, जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे, और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे, और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे। और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं, एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
0: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
1: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6-7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, डीएपी की मात्रा को देना है।

0: और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उससे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है। 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4×4=16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है। और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करें, नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें
1: जी मैम।
0: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है, लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं। और सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में कि यहाँ का जो बाज़ार है, भागलपुर का जो बाज़ार है फूलों का बाज़ार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाज़ार पर कलकत्ता के ही बाज़ार का कब्जा था और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है, लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है
1: जी मैम। अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें। क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है। और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसके लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है और वो अरका भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं, IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र। और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
1: जी मैम,
0: और वो उसको करना प्रारंभ कर दें। और पैसे की कमी नहीं है इसमें
1: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाज़ार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए। और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: थैंक यू उमा।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
9: हेलो नमस्कार, हाजिर हूँ मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आप सभी के बीच। किसान भाइयों, श्रोताओं, और आपका सादर अभिनंदन है 90.8 FM ग्रीन पर। वैसे श्रोताओं, अभी बात करते हैं यहाँ पर किसानों के लिए। हर रोज हम लेकर आते हैं कुछ अच्छी बातें, और उन्नत कृषि कार्यक्रम खास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए ही पेश होता है। तो जी हाँ, अब यहाँ पर खेती किसानी और फसलों की बात तो होती ही है, और कई बार हम जानते हैं कि कैसे हम फसलों को उगाएं और अच्छे तरीके से उगाएं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। लेकिन जहाँ तक बात है कि हम उन चीज़ों का कैसे ख्याल रखें जो खेती में काम आते हैं, जी हाँ, बीज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ना ही उर्वरक की बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ कृषि यंत्रों की। तो आइए आज जानेंगे कृषि यंत्रों के रखरखाव के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंजीनियर अशोक कुमार जी, और ये हैं कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो आप सभी को बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में कृषि यंत्रों का रखरखाव इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद।
9: और सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम

0: कृषि यंत्रों का चुनाव करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: कृषि यंत्रों का चुनाव करते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम, मशीन खेती के कार्य को करने में संतोषपूर्ण ढंग से सक्षम हो। दूसरा, मशीन में लगने वाली ऊर्जा या शक्ति का भरपूर उपयोग कार्य करने के लिए होना चाहिए, जिससे उसकी कार्य कुशलता अधिक से अधिक मिल सके। तीसरा, मशीन चलाने के लिए कम से कम व्यक्तियों की जरूरत हो। चौथा, यंत्र की बनावट मजबूत हो ताकि उसको कई साल तक प्रयोग में लाया जा सके। पांचवा, यंत्रों की मरम्मत का खर्च कम से कम हो, उसे स्थानीय कारीगर से कराया जा सके, उसका रख रखाव भी अत्यंत आसान हो। छठा, मनुष्य में सुरक्षा के प्राप्त प्रबंधन हो, जिससे कम से कम दुर्घटनाओं की संभावना रहे। और सबसे अंतिम बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मशीनों की गुणवत्ता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए मशीन प्रसिद्ध निर्माता या उसके प्रतिनिधि से खरीदी जानी चाहिए और उस पर ISI का निशान लगा हो, तो जो कि उसकी गुणवत्ता की गारंटी होती है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर मशीनों को खरीदा जाए तो बहुत बहुत बढ़िया होगा, लाभदायक होगा।
0: वैसे डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अगर खेती की बात ना करें तो वैसे जब मशीन होते हैं, यंत्र होते हैं, जब उन्हें हम यूज़ में लाते हैं तब उनका खास ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है कृषि यंत्रों की, तो उनका जो उनके उपयोग में लाने से पहले भी इनका रखरखाव बहुत ज़रूरी है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कृषि यंत्रों को उपयोग में लाने से पहले इनका रखरखाव कैसे करना चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, ये बात है कि यंत्रों का जब हम प्रयोग में लाते हैं तो सर्वप्रथम कुछ हम उसका मुआयना करते हैं, जैसे कि मशीन का हर भाग निरीक्षण करके वो ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इसकी हमको जांच कर लेनी चाहिए। यदि कोई नट बोल्ट या पुर्जा टूटा हुआ है या अपने से अपने जगह पर वो नहीं है तो उसे बदल कर मरम्मत करवाएं। मशीन का जो भाग चलते चलते घिस जाते हैं उसे थोड़ा शार्प या फिर धार कर लेनी चाहिए। मशीन के उचित गति से कार्य करने के लिए मशीनों में आवश्यक एडजस्टमेंट, समायोजन जिसको कह सकते हैं, आप कर लेने चाहिए। मशीन के ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए कुछ यंत्रों को प्रयोग करने से पहले परीक्षण करना होता है और आवश्यक फेरबदल करने पड़ते हैं। जैसे सीड ड्रिल, जिसे भी आप लोग जानते हैं कि बीज की बुआई कर सकते हैं हम, तो उसमें हम लोग बीज की मात्रा ठीक से गिर रहा है कि नहीं, उसका भी समायोजन करना पड़ता है। इसी प्रकार से दवा छिड़कने वाले मशीनों का भी समायोजित करना पड़ता है। अच्छा। ट्रैक्टर द्वारा चालित मशीनों का प्रयोग करने के लिए ट्रैक्टर के ब्रेक आदि को ठीक प्रकार से देख लेना चाहिए। उसे PTO, पुल्ली तथा अन्य आवश्यक पुर्जों का समन्वय ठीक तरह से होनी चाहिए।
0: तो इस तरीके से इसे उपयोग में लाने से पहले इसका रख रखाव करना चाहिए। और जब बात आती है कि ये जब उपयोग में रहते हैं, उस अवधि में रहते हैं, उस उपयोग के समय में इनका रख रखाव कैसे करनी चाहिए?
1: जी बिल्कुल, जब इनको जब चलाया जाता है तो उपयोग के दौरान भी कुछ बातें को ध्यान रखने से उसका जो जीवन है बढ़ जाता है। जैसे कि मशीन के साथ काम करने वाले व्यक्ति को चोट लगने से बचाने के लिए संभावित सुरक्षा उपयोग कर लेने चाहिए। मशीन के सभी घूमने वाले हिस्से को तार की जाली आदि से ढक लेना चाहिए। अगर मशीन में ये हिस्से लगे हैं तो उनको हटाना नहीं चाहिए, अन्यथा अनजाने में चालक के शरीर का कोई भाग मशीन की चपेट में आने से दुर्घटना हो सकती है। थ्रेसर पर अधिकतर दुर्घटनाएं इसी प्रकार की होती है। मशीन को निर्धारित गति पर ही चलाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कम गति से चलाएंगे तो कार्य क्षमता कम हो जाएगी, यदि अधिक गति से चलाएंगे तो मशीन के टूटने फूटने की संभावना रहती है।
0: अच्छा।
1: इसके बाद यंत्रों को घूमने वाले पुर्जे को घिसने से बचाने के लिए समय समय पर निर्धारित तरह के तेल व ग्रीस लगाते रहने चाहिए, इससे उनके बीच घर्षण कम हो जाता है। चालक अपनी सीट पर ही उचित ढंग से बैठकर काम करें, उसे अपनी सीट पर खड़े होना या चलते हुए मशीन की सीट से उतरना नहीं चाहिए, इससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि मशीन के चलते समय उसके किसी भाग का निरीक्षण करना हो तो पहले मशीन को बंद कर दें, फिर मशीन को हाथ लगाएं। यदि मशीन शाम के समय काम में लाई जा रही है तो मशीन के पास रोशनी का उचित प्रबंध

0: होना चाहिए, उचित रोशनी के अभाव में दुर्घटना होने के अवसर रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई मशीन खेतों में चला रहे हैं।
1: तो ये तो बात होगी उपयोग के समय कैसे रखरखाव कर सकते हैं। अब बाद की बात कर लेते हैं, यानी कि उपयोग के बाद इनका जो रखरखाव है वो किस तरीके से करना चाहिए।
0: उपयोग कृषि यंत्रों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसके बाद ही बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि उस मशीन का उसका जो जीवन है बढ़ जाता है। किसान क्या करते हैं, मशीन को यूज करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे उसका मशीन खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कुछ बातें हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम, यंत्र का प्रयोग करने के बाद प्रतिदिन ठीक प्रकार से साफ कर लेना चाहिए, ताकि धूल मिट्टी आदि उसमें से निकल जाए। खास तौर से मोटर, थ्रेशर, सीड ड्रिल आदि के लिए यह जरूरी है ये सब करना। सीड ड्रिल आदि के उपयोग के बाद टंकी व अंदरूनी भागों को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से यंत्र की सेवा आयु बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
0: दूसरा, मशीन को अच्छी तरह साफ करके शेड यानी कि छाया के अंदर सुखी स्थान पर रखें। मशीन के जिन भागों को नुकसान पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती है उनको निकालकर अलग सुरक्षित स्थान पर रखें। कृषि यंत्रों एवं मशीनों के नट बोल्ट, वाशर आदि को प्रतिदिन देखना जरूरी है। यदि कोई नट बोल्ट ढीले मिले तो उसे कस देना चाहिए, या फिर कोई वाशर कट गया हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। मशीन में तेल, पानी बदलने का उचित प्रबंध होना चाहिए। ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइंड आदि में यह अति आवश्यक है। गियर बॉक्स, इंजन तथा एयर क्लीनर में तेल का माप देखते रहना चाहिए। यदि कम हो या बदलना हो तो उचित किस्म के तेल से पूर्ति करनी चाहिए। मशीन को रेडिएटर में पानी का उचित प्रबंधन रखना चाहिए, इससे मशीन के कार्य के बीच में रुकावट नहीं आएगी। रबर के पहियों में हवा का दबाव भी ठीक प्रकार से है कि नहीं, उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। मशीन तथा यंत्रों के घूमने वाले हिस्सों में यथा समय तेल या ग्रीस लगाना चाहिए। अगर बरसात के मौसम में नुकसान से बचने के लिए मशीन के धातु वाले हिस्सों को जंग प्रतिरोधी पेंट से रंग कर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। जिन मशीनों में रबर के पहिए हों उन्हें जमीन से ऊंचा इस प्रकार रखें कि पहियों जमीन से ऊपर रहे। मशीन के नीचे लकड़ी या पत्थर लगाकर स्थिर कर दें, जिससे उसके गिरने का अंदेशा न रहे और बच्चों तथा जानवरों के साथ दुर्घटना न हो सके। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए किसान अपने कृषि यंत्रों का उपयोग के बाद उसको अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो आपने सुना किसान भाइयों कि किस तरीके से आप जब उपयोग में लाते हैं इन यंत्रों का, तो आप रखरखाव कर सकते हैं, उपयोग के पहले आप रखरखाव कर सकते हैं और उसके बाद रखरखाव कर सकते हैं। अगर आप उपयोग करते समय रखरखाव कर रहे हैं तो यहाँ पर सावधानियों के बारे में भी आपको सर ने बताया, और आपको बता दें कि आप इन यंत्रों का रखरखाव कर पाएंगे तभी आप अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल भी खेती में कर पाएंगे। तो आज यहाँ पर हमारे साथ थे इस विषय पर चर्चा करने के लिए, कृषि यंत्रों का रखरखाव जो हमारा विषय था, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ थे इंजीनियर अशोक कुमार जी, और ये थे कृषि अभियंत्रण विभाग से। तो आज के लिए सर आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे किसान भाइयों को भी हम बताना चाहेंगे। तो अगले बार अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर, तो सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे।

0: हाँ हाँ हाँ
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
0: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
11: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
12: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
5: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है।

0: लिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था मक्का में।

0: अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें, बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे

0: धन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
2: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और

0: अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की अगाध बुआई के लिए पूसा छेद की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और

कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें? वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आप को अगर दिख रहा है तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, B, C, D, E जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है। आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन B, C, D, E और बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा अगर

आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप जरूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए। धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें। और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहें 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से

0: झुक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
4: हर घर सूर्यघर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमारा यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और जी हां, हम लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी उपयोगी बातें। तो आज भी एक ऐसे ही विषय को हम अपने उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं, और हमारा विषय है मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का पहचान एवं इनका नियंत्रण। और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, और सर वैज्ञानिक हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये मक्के में किस सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अमूमन आप किसान भाइयों, जो हम लोग बिहार में देखते हैं कि दो सीजन में मक्के लोग लगाते हैं, एक अभी जो लगाए होंगे खरीफ सीजन में जो इनका अभी चल रहा है, और दूसरा जो है कि रबी सीजन में लगाते हैं। तो उनका जो है वितरण अलग अलग ज़िले में लोग अलग अलग जिनको जैसा लगता है वैसे लगाते हैं। तो ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये आप किसान भाइयों में इसको पहचानने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कीट है एक तना छेदक होता है, तो तना छेदक के जैसा ही ये मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में तुलना करना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए कि अगर तना छेदक आपका लगा हुआ है तो उसके लिए अलग उसका नियंत्रण होता है, और फॉल आर्मी वर्म अगर लगा हुआ है तो उसके लिए आपको अलग से उसका नियंत्रण के उपाय करने होंगे, कीटनाशक देने होंगे। तो सबसे पहले दोनों को आपको समझना है कि कैसे इनका कैसे नियंत्रण होता है या कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब तना छेदक मुख्यतः जब होता है, तो आप देखेंगे कि या आपके मक्के के जो पौधे हैं, जब घुटने या उसके नीचे भी जब रहता है, तो आप देखेंगे कि जो मक्का के जो पत्तियां हैं उसमें लाइन से तीन आपको गोला गोला कटे हुए का निशान दिखेंगे। तो ये तना छेदक के चलते हो सकता है। और आप जब देखेंगे कि जो उन

जो बढ़वार होने वाला जो पोजीशन होता है या जिसको हम लोग मक्के का कंठ कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हो सकता है कि कुछ जो इसके जो शिशु होते हैं वो तनाछेदक के वो उसमें मिलेंगे आपको। तो ये है तनाछेदक का। और ये जो तनाछेदक है मतलब आपके फसल को थोड़ा धीमी रफ्तार से क्षतिग्रस्त करते हैं, लेकिन उसके उल्टा अगर फॉल आर्मी वर्म से अगर आपके पौधे अगर आक्रांत हो जाते हैं तो ये आपके पौधे को बड़ी तेज़ी से क्षतिग्रस्त करते हैं। और साथ ही में ये जब आपके मक्के का जो कंठ होता है ये भी उसी में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये अपना स्क्रीटा या कहें कि उत्सर्जन जो इनका छोटा छोटा जो जैसे कि केचुआ का जो जो बिष्टा होता है मल होता है उसी टाइप से इसके छोटे छोटे आपके उसके कंठ में दिखाई देंगे कि पड़ा हुआ है जो काले कलर का मुख्यतः होता है। साथ ही में ये फॉल आर्मी वर्म जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब मुख्यतः जैसे कि दो सीजन में हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग मक्का लगाते हैं, तो अमूमन देखा गया क्या कि ये जो खरीफ सीजन होता है खरीफ सीजन में इसका प्रकोप रबी के तुलना में जो ठंडे सीजन में हम लोग जो करते हैं उसके तुलना में इसमें इसकी समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके आने के कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण ये है कि इस मौसम में वर्षा होती रहती है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, जो इस कीट के बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा होता है। अब है क्या कि कुछ और कारण हैं कि उसको कैसे आप पहचानिएगा कैसे, मतलब जो कीट है तो तनाछेदक है या फॉल आर्मी वर्म का कीट है उसको आप कैसे पहचानिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको सही से पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसका समुचित उपचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का आक्रामकता भी हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि अलग अलग है। एक थोड़ा धीमी रफ्तार से आपके पौधे को क्षतिग्रस्त करता है, दूसरा जल्दी जिसमें आर्मी लगा हुआ है। आर्मी का काम आप लोग सब लोग को पता है कि आर्मी अपने काम बहुत तेज़ी रफ्तार से करता है, इसीलिए इसमें आर्मी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसको पहचाने कैसे, तो हम आपको फॉल आर्मी वर्म के बारे में बता रहे हैं। अभी तनाछेदक को आप रहने दीजिए, उसको जो जितना हम बताए लगभग उससे तनाछेदक आप पहचान जाएंगे। अब फॉल आर्मी वर्म को कैसे पहचानेंगे, तो ये जो कीट होता है तनाछेदक ही तरह दिखता है लेकिन ये उससे मोटा और लंबा होता है, साथ में ही इनके जो शरीर होता है उस पे काले धारियां आगे से पीछे तक मतलब सर से उसके पूंछ तक काले धारियां रहती हैं। अब एक चीज दो चीज़ और है जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसका जो जिधर जो मुंह होता है या अगला हिस्सा में, तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो इंग्लिश का उल्टा वाई इसके माथे पे निशान होता है, जैसे हर जैसे कि किसी किसी पशु है या जो भी है उस पर कुछ न कुछ निशान होता है हम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से इसमें जो उल्टा वाई का निशान होता है इसके आगे वाला पोर्शन में जिधर सर बोलते हैं उस साइड में, और जब पीछे साइड में जब आप आएंगे तो पीछे साइड में इसके चार काले काले धब्बे होते हैं जो बड़ी आसानी से आप ऐसे ही आँख से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ इसके पहचानने का। अब दूसरी बात क्या है, ये जो पहचानने का है तो इसमें लगभग लगभग नहीं 6 इन स्टार होते हैं। अभी आप बताएंगे कि इन स्टार क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जो बच्चे होते हैं तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद वो पहले सोया रहता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर खड़ा होने के बाद वो रफ्तार से चलने लगता है। तो जब तक वो तो ये अलग अलग उनके फेज है हमारे जो मनुष्य हैं उनके बच्चे का, इसी तरह से इस कीट के भी 6 फेज है। तो 6 फेज में जो उनका जो फेज 1 होगा या 2 होगा तो वो अंडा के बाद जस्ट अंडा के बाद जो निकलने वाला वो उसका
अवस्था होता है, फेज इंग्लिश में बोल रहे हैं अवस्था होता है, तो उस कंडीशन में उस कीट का साइज छोटा होगा, और साइज जब छोटा होगा तो उसी रफ्तार में वो आपके फसल को भी उस समय में थोड़ा धीमा धीमा रफ्तार करेंगे। और

उसको कंट्रोल भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब यही कीट जब है खाते खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीटनाशी है उससे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया। अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को, मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है। लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब 4-5 पत्तियों का हो या गले की एक महीने के जब आसपास होता है उसके आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है। और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं। और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह, जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज़ होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है उस टाइप से आपकी पत्तियाँ दिखेंगे, जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियाँ को पूरा जो कंठ वाला है जो बढ़ने वाले उसको तो खा ही गया, और जो दूसरी जो पत्तियाँ बची हुई हैं उसको आर पर दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मी बम के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से। साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए तो ये 3-4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मी बम है ये जब अगर मक्का अगर क्या पौधा अगर नहीं रहे, जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है, तो ये जो फॉल आर्मी बम है ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रामनी फैमिली के जो हमारे फसल है तो उन पे भी, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपको ज्वार बाजरा ये सब पे भी ये जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है। अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया, मक्का कोई काट लिए तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पे भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो वयस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80-100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो वयस्क हैं उनका। इनका जो जो क्षति करने वाला है ये इनके वयस्क क्षति करते हैं, जो चलते हैं जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का की फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके ओर ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए
कि सब किसान भाई मिल करके

एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा एक टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये मूव करें। और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आपको दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मी वर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में, खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे, इसका उपचार कैसे करें, तो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बढ़वार ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बढ़वार होता है। उसके जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है। और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है। इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है, ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है, लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है। और इन सारी चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपका प्रकोप होता है, तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्लीनुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है। मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर, तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है। दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है, तो दो कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोहोल 3 9.6%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में आपको डालना है। मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोक्जम 12.6%

0: 10 लैम्डा साल होलो 3 9.5% का देना है। और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें जो है कोई जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है, ताकि वो आपके सर्विस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम। स्पाइनोटोरम 11.7%, इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टिकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है ये फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को कर करके आप अपने जो मक्के की जो फसल है उसमें कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं अभी आपने फॉल आर्मी वर्म के बारे में जाना और ये कीट की पहचान हम कैसे करेंगे इस कीट की और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार।
2: 1
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि

0: केंद्रीय विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: मैम सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएँ हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं तथा 48% जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40-45% से भी अधिक होती है और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
0: जी मैम,
1: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं ये तेजी से हो रहा है और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है बल्कि वो एक उत्पादन प्रसंस्करण विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय हैं और पशुपालन दुग्ध मत्स्य बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
0: मैम आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है, लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
1: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा, क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है। तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल। और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है जिसमें कि अगर कहें तो 1,000,000 स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है और अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,000,000 से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
0: तो मैम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
1: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जानें तो इसका इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया, महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं और इनसे उनका आंतरिक ऋण बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें जो हमारी महिलाएं हैं तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम बकरी पालन हो गया या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात जैसे अचार पापड़ मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो

0: सामूहिक खेती हो गया या इनपुट की माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी या स्वास्थ्य या पोषण और शिक्षा में सुधार, ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
1: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
0: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार हैं वो बहुत पहल चलाती हैं, और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएँ बचत करती हैं और आपस में ऋण भी ले लेती हैं, और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है सामूहिक खेती, इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से स्तर को देखें और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य ना केवल शिक्षा और शोध है बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुँचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं या मधुमक्खी पालन के ऊपर या जैविक खेती, ऐसे पशुपालन, ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक, धान उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पर जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं। तो विश्वविद्यालय एफएम रेडियो जैसे 90.8 एफएम ग्रीन है और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है महिला सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयासरत है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है, और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपने बताया, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि न केवल हमारा राज्य बल्कि हमारा अपना विश्वविद्यालय भी इतने अच्छे प्रयास कर रहा है। तो मैम, क्या इन पहलों का या इन प्रयासों का कोई प्रभाव दिख रहा है?
0: बिल्कुल उमा, इन पहलों से महिलाओं की आय भी बढ़ी है और वो आत्मनिर्भर भी बनी है, और अब वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुंच है वो बढ़ी है।

0: हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो, और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में, और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
1: तो मैम भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौतियां भी होती है, तो क्या चुनौतियां भी सामने आती हैं?
0: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी उसके फ़ायदे होते हैं उसके चुनौतियां भी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियां भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है, और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है। तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है, और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने किस जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है, वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके, और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं, तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
1: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं, और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं, और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं
1: जी।
0: और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है, और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
1: जी मैम, धन्यवाद। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, नीनू, राज

0: दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा छेद की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात

आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को

सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहे लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि यह काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं, जबकि सच्चाई ये है श्रोताओ, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं साथियों। वो था ग्रेफाइट, यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था, हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे। यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB, तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक, इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल।
तो साथियों, यहां तक की जानकारी तो

मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की

जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं, पर हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूँ माँ।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी माँ।

0: आशीर्वाद दीजिए।
1: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर, सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह, निशाना साधो।
5: ठीक है जी।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर!
4: सर,
3: ये तो गया, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर!
4: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, ज्यों-ज्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे।

0: पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: सीमा प्रहरी
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है।

0: छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम

0: सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान न देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा, मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की

घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत

0: उन्नत फिंगर लिंक्स ईयर लिंक्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जाए।

जा सकती है। पूसा स्नोबॉल एक, पूसा हाइब्रिड दो जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में और आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण है लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है। अगर कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसका प्रमाण हमारे पास हो, हमारे पास उसका सर्टिफिकेट हो। और ख़ास तौर से जब आप जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अगर जैविक खेती करते हैं तो उसका आपके पास प्रमाण हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो। आज इसी विषय में चर्चा करने के लिए यानी कि जैविक व प्राकृतिक खेती में प्रमाणीकरण की क्या महत्ता है और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट BAU सबौर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती में प्रमाणीकरण का क्या महत्व है।
1: जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया सुरक्षित एवं रसायन मुक्त भोजन की ओर बढ़ रही है। लोग ऐसे फल, सब्जियां, अनाज और मसाले खरीदना चाहते हैं जिनमें रासायनिक अवशेष बिल्कुल भी न हो। भारत सदियों से प्राकृतिक

0: खेती की परंपरा वाला देश है। गोबर, गौमूत्र, हरी खाद, जैव उर्वरक और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से खेती करना हमारी सांस्कृतिक विरासत भी रही है। तो मुख्यतः आज दो प्रमुख प्रणालियां अधिक चर्चा में हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। जैविक खेती जिसमें निर्धारित मानकों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा जो प्राकृतिक खेती है नेचुरल फार्मिंग, जिसमें स्थानीय संसाधनों जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, आशादन तथा प्राकृतिक जैव विविधता पर विशेष बल दिया जाता है। इन दोनों प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना, किसानों की लागत को कम करना, उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है।
1: जी मैम, तो मैम अगर हम प्रमाणीकरण की बात करें तो इसे हम क्या समझते हैं?
0: जी, जैसे कि यदि कोई किसान कहे कि वह जैविक खेती कर रहा है तो उपभोक्ता जो है वो कैसे विश्वास करेगा? यहीं पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। प्रमाणीकरण का सीधा सीधा अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा यह प्रमाणित करना कि किसान निर्धारित जैविक अथवा प्राकृतिक खेती के मानकों का पालन कर रहा है। सरल शब्दों में प्रमाणीकरण किसान और उपभोक्ता के बीच एक विश्वास का प्रमाण है। जिस प्रकार किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र मिलता है, उसी प्रकार जैविक खेती करने वाले किसान को निरीक्षण एवं सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।
1: जी मैम, तो मैम ये क्यों जरूरी है?
0: जी, आप जानते हैं कि प्रमाणीकरण के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि उपभोक्ता पर सबसे पहला लाभ है कि विश्वास जगता है। तो आज ग्राहक केवल किसान की बात पर विश्वास नहीं करता, उसे प्रमाण भी चाहिए। तो प्रमाण पत्र देखकर वह निश्चिंत होकर उस उत्पाद को खरीद सकता है। फिर बेहतर बाजार मिलने की संभावना, प्रमाणित उत्पादों की मांग सुपरमार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, निर्यात बाजार, होटल उद्योग, अस्पताल, स्कूल, जैविक दुकानों, इन सभी संस्थानों पर लगातार बढ़ रही है। इससे जो किसान भाई हैं उनको मूल्य में भी अधिक प्राप्ति होती है। प्रमाणित जैविक उत्पादों को सामान्य उत्पादों की तुलना से बेहतर मूल्य मिल सकता है। फिर निर्यात की सुविधा मिलती है। विदेशों में अधिकांश खरीदार केवल प्रमाणित जैविक उत्पाद ही स्वीकार करते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। कई सरकारी योजनाओं में प्रमाणित किसानों एवं FPO को प्राथमिकता दी जाती है। फिर आपको किसान उत्पादक संगठन जो है FPO, उनको भी मजबूती मिलती है। यदि किसी FPO के सभी सदस्य प्रमाणित हो तो सामूहिक विपणन आसान हो जाता है, ब्रांड बनाना सरल हो जाता है और बड़ी कंपनियों से अनुबंध करना भी आसान हो जाता है।
1: जी मैम, मैम इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आप अब हमें ये बताइए कि भारत में प्रमुख प्रमाणीकरण प्रणालियां कौन कौन सी हैं?
0: जी, तो बेसिकली मुख्यतः दो प्रकार की प्रमाणीकरण प्रणालियां जो है वो प्रचलित है। पहला है NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यह भारत सरकार की आधिकारिक प्रणाली है। इसका उपयोग मुख्यतः निर्यात, बड़े व्यापार, प्रोसेसिंग उद्योग के लिए किया जाता है। इससे हम तृतीय पक्ष मतलब थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और दूसरा है PGS, जो कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है। यह छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विकसित प्रणाली है। इसकी विशेषता कम खर्च, समूह आधारित, पारदर्शी, स्थानीय स्तर पर निरीक्षण, किसानों की सहभागिता है। इसमें किसान स्वयं समूह बनाकर एक दूसरे के खेतों का निरीक्षण करते हैं। प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न राज्यों में स्थानीय सत्यापन प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। कई स्थानों पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को भी समूह आधारित सत्यापन एवं विपणन सहायता प्रदान की जाती है।
1: जी मैम, मैम जो हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती करते हैं या जैविक खेती करते हैं, और अगर वो अब चाहते हैं कि अपने इस चीज का उन्हें प्रमाण मिले, तो उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना होगा?
0: जी, थोड़ी सी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जो कि चरणबद्ध तरीके से की जाती है। पहले चरण में किसान का पंजीकरण होता है। किसान व्यक्तिगत रूप से या FPO के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दूसरे चरण में खेत का विवरण, जैसे कि खेत का नक्शा, क्षेत्रफल, फसल विवरण, कौन कौन से किस किस सीजन में कौन से फसल

0: लगाते हैं, पूर्व में उपयोग किए गए रसायनों की जानकारी दी जाती है। तीसरे चरण में जिसको हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं, रूपांतरण अवधि, इसमें अगर आप पहले से रासायनिक खेती कर रहे हैं तो तुरंत जैविक प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, इसे हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। जैसे कि पहला साल C1 कहते हैं, दूसरा C2 कहते हैं, तो लगभग 2 से 3 पूरे C3 एक उत्पाद को या फिर उसको प्रमाण पत्र देने के लिए 3 साल आवश्यक है। तो इसको रूपांतरण, 3 साल तक इसको रूपांतरण अवधि में हम कहेंगे, जिसमें कि किसान जैविक मानकों का पालन करते हैं। चौथे चरण में अभिलेख को संधारण करना है, किसानों को नियमित रूप से रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे कि बीज कहाँ से खरीद रहे हैं, खाद कब डाली, जैविक घोल कब बनाया, सिंचाई कब कब किया, फसल कटाई कब की, बिक्री कहाँ किए, कितने पैसे में किए। और पांचवे चरण में निरीक्षण का समय आता है, जिसमें कि प्रमाणीकरण संस्था या समूह द्वारा खेत का निरीक्षण किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कहीं रासायनिक उर्वरक तो नहीं प्रयोग किए गए हैं, प्रबंधित कीटनाशकों का उपयोग तो नहीं हुआ है, जैविक नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। फिर छठा चरण में प्रयोगशाला परीक्षण, हम लैब में उसका परीक्षण करते हैं, कुछ परिस्थितियों में उत्पाद का भी परीक्षण किया जाता है। फिर सातवें चरण में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें मानकों के पालन के बाद किसान को प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। इसके बाद किसान अपने उत्पाद को प्रमाणित जैविक उत्पाद के रूप में बेच सकता है।
1: तो ये तो बात हो गई मैम प्रक्रिया की, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान किसान भाई बहनों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, यानी कि सावधानियों की। तो क्या क्या सावधानी जो हमारे किसान भाई बहनों को इस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान बरतनी चाहिए?
0: जी, यदि किसान प्रमाणीकरण चाहते हैं तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, प्रतिबंधित कीटनाशकों से बचें, पड़ोसी खेत में रासायनिक बहाव जो है उसको बंद बना करके उसको रोकें, खेत के रिकॉर्ड नियमित रूप से रखें, जैविक बीज या इनपुट का ही उपयोग करें और समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करें।
1: जी मैम, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो प्रमाणीकरण के क्या अवसर हैं?
0: जी, बिहार में प्रमाणीकरण, जैविक प्रमाणीकरण के बहुत सारे अवसर हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मखाना, कतरनी चावल, सब्जियों, मसाले, फल, दलहन, इन सब में आप जैविक प्रमाणीकरण कर सकते हैं। जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। यदि किसान FPO के माध्यम से समूह बनाकर प्रमाणीकरण कराए तो लागत भी कम होगी और विपणन भी आसान होगा, ब्रांड भी विकसित होगा, ऑनलाइन बिक्री भी बढ़ेगी एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच भी संभव होगी।
1: जी मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश तो जैसे कि आज के समय में केवल जैविक खेती करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रमाणीकरण भी उतना ही आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्रमाणीकरण केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि किसान की ईमानदारी, गुणवत्ता और उपभोक्ता के विश्वास का प्रतीक है। यदि हम संगठित होकर किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्रमाणीकरण प्राप्त करें तो हमारी उपज को बेहतर पहचान, बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। और याद रखें कि स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ किसान और स्वस्थ समाज का आधार है प्रमाणित जैविक एवं प्राकृतिक खेती। धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम। तो किसान भाई बहनों, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप जितना संभव हो सके धीरे धीरे ही सही पर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, और अगर आप पहले से इस ओर काम कर रहे हैं तो आप आगे इस बारे में सोचें कि प्रमाण आप अपने कार्य का ले, यानी कि प्रमाणीकरण की ओर बढ़ें। तो मैम ने जिस प्रक्रिया के बारे में बताया और मैम ने जितने विस्तार से बातें बताई, आप उन बातों का ध्यान रखें। और किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना।

लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके खेतों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अगर दाल की बात करें कि उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। बहुत सारे दिक्कतें उन्हें आती हैं इस खेती में और ख़ास तौर पर उड़द दाल की खेती में, तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आर्यन गुप्ता। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और बहुत सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब देने वाले। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने राज्य बिहार की बात करें, तो उड़द की जो खेती होती है बिहार में, तो क्या महत्व है इसका?
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़द जो है एक खरीफ मौसम में और गर्मा मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है, और हमारे बिहार में इसका काफी स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार में करीब करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास का जो है धान की कटाई के बाद खेत जो है करीब करीब 90 दिनों के आसपास वो खाली पड़े रहते हैं, तो इन जगहों का हम समुचित उपयोग करके इसका जो है दायरा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें मुश्किल से जो है 20 से 25 हज़ार हेक्टेयर के आसपास बिहार में इसकी खेती की जाती है, तो इसका काफ़ी दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में और अच्छा उत्पादन दे सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी आमदनी तो बढ़ती है तथा हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब बुआई करें, सिंचाई कैसे करें, सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा।
1: सबसे पहले है कि आपको जो उड़द फसल लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कि खेतों को बढ़िया से जुताई करनी चाहिए, कल्टीवेटर के द्वारा उसकी जुताई की सकते हैं, हल बैल के द्वारा भी उसकी जुताई कर सकते हैं, और जुताई के बाद उसमें पाटा लगा देते हैं, और इसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि जो है हमारा ज़मीन जो है वो समतल हो। अगर ज़मीन हमारा समतल रहेगा तो हम जो है हर तरह से जो है उसका सही उपयोग कर सकते हैं, खासकर पौधे में जो जल की जमाव की समस्या हो या जल की कमी की समस्या हो या पोषक तत्व का जो प्रबंधन की समस्या हो, उससे ये कमी हो जाती है, तो ये भूमि समिति के लिए समतलीकरण काफ़ी आवश्यक है। इसलिए हमारा जो ज़मीन है, जो खेत है, वो समतल होना चाहिए, क्योंकि उड़द की फसल में जल जमाव के कारण भी जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा खेतों की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, और उसमें जो है जल निकास की प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो है जमने की समस्या ये ना हो। तो खेत की तैयारी पहली बात कर लें। दूसरी बात है कि जो है किन किन जो है हम किस्मों का चुनाव करें, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे नवीन प्रजाति है, T9 है, उड़द 30 और उड़द 31, ये सब प्रजातियाँ जो है हमारे बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और ये जो है करीब हमको 80 से 85 दिन और करीब करीब 90 दिन के आसपास ये हम लोग को तैयार हो जाती है
0: जी।
1: तो ये हमारे लिए काफ़ी बिहार के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, तो हम सही प्रजातियां का चुनाव करना जरूरी है, ताकि जो है इसमें रोग की समस्या, कीड़ों की समस्या साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी ज़्यादा रहता है, तो ये उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है
0: जी।
1: दूसरी बात रही कि जो है बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा अगर गर्मा उड़द करते हैं, गर्मियों में करते हैं जिसका तो अभी समय नहीं है, तो उसमें हमको जो है 20 से 25 केजी प्रति के हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। अगर हम खरीफ के मौसम में करते हैं, जिसकी जो है अवधि आपकी जुलाई के 15 जुलाई से लेके प्रथम पखवाड़े में अगस्त के कर सकते हैं इसको, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी जो है जो बुआई की समय है, इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा जो है उत्पादन इसमें बढ़ जाता है
0: जी।
1: तो हमारा जो है बुआई इस पीरियड में करना आवश्यक है। दूसरी बात जो है, एक प्रमुख चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसान को करना चाहिए, वो बीज का चयन करने के बाद बीज का जो है सही ढंग से उपचार भी करना आवश्यक है। अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमको जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो अगर हम समुचित ढंग से उसका जो है बीज उपचार करते हैं तो उससे हमारा जो है कीटाणु या हमारा रोग है उससे काफ़ी जो है निदान पा सकते हैं, और

0: साथ जो है उत्पादन भी बढ़ती है। तो अगर किसान भाई अगर बीज उपचार करना जानते हैं, फिर भी मैं एक बार चाहता हूं कि इसकी हम चर्चा कर दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे उत्पादन का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है फंजीसाइड कवकनाशी उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, और तीसरा जो है राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम कवकनाशी से करते हैं, जिसको अंग्रेजी में फंजीसाइड बोलते हैं। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो फंजीसाइड है वो आपका कार्बेंडाजिम है, जो कि मार्केट में वेविस्टिन के नाम से आती है, और दूसरी दवा जो है कार्बोक्जिन है, जो बीटावैक्स पावर के नाम से आती है। इसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं, और इसके 12 घंटे के अंतराल के बाद हम फिर उसको कीटनाशी से प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में मुख्यतः जो है क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे खेतों में कहीं कहीं दीमक की समस्या होती है, उससे भी हम इसको फ़ायदा पहुंचता है। तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा की जो है 10 ml दवा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। और रही बात जो है तीसरा जो इसका जो अवयव है वो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम से उपचार करते हैं। तो राइजोबियम से उपचार करने के लिए क्या है कि 500 ml पानी में उसमें 50 ग्राम हम गुड़ या शक्कर दे देते हैं, उसको फिर गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद उसमें हम राइजोबियम कल्चर जो कि 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें डाल के उसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं ठंडे होने के बाद, और उस जो है राइजोबियम कल्चर को फिर हम बीजों पे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं, ताकि हर बीज पे जो है वो गुड़ का एक लेयर चल जाए, ताकि राइजोबियम पूरी तरह से उससे जुट जाए। तो इस तरह से उपचार करने के इसके 5 से 6 घंटे के बाद, अगर ये शाम में करते हैं तो अगले दिन सुबह में इसकी बुआई कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीज उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीज उपचार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात रही कि जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन के लिए, तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है करीब करीब जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और जिन खेतों में जिंक की समस्या होती है उन खेतों में जो है 25 किलो जिंक सल्फेट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिंक की समस्या भी हमारे खेतों में प्रायः देखा जाता है, जिसका असर जो है हमारे पौधे पे होता है, और उन बीजों के द्वारा या जो भी अन्न उससे उत्पादन होता है उसमें भी जिंक की कमी होती है, और इसका जो है कमी अगर हमारे अन्न में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी जिंक की उपलब्धता के लिए खेतों में जो है जिंक का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसके साथ उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो इस तरह से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। दूसरी बात रही कि जो है सिंचाई की व्यवस्था, तो इनमें जो है खरीफ फसलों में जो है बारिश तो होती ही है, अगर नमी की कमी हो खेतों में तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है। इसका जो है 2 क्रांतिक अवस्था होती है जिस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है, एक फूल लगने के समय, उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं या खेतों में पर्याप्त नमी है तो आवश्यकता नहीं है, अगर नमी की कमी है तो फूल बनने की अवस्था में जो है एक सिंचाई करना आवश्यक है, और दूसरी जब फलियां बनने लगती है उस समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो 2 कम से कम आवश्यक रूप से करें, ताकि जो है जो हमारा जो अन्न बने जो दाल बने उसमें काफ़ी जो है गुणवत्तापूर्ण बने और उसका पूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम उसका जल का प्रबंधन करते हैं। और जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है कीट और बीमारियों की समस्या होती है, तो कीटों में जो है कुछ बीमारियां लगती है जो फली मक्खी है, जो हमारे विषाणु जनित रोग है उसके वाहक का भी काम करते हैं। दूसरी जो है फली छेदक की समस्या आती है, और बहुत सारे खेतों में दीमक की समस्या आती है। तो अगर फली मक्खी की समस्या आपको खेतों में है तो उसमें एक दवा आती है इमीडा क्लोरोप्रीड, उसकी जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में उसको स्प्रे करते हैं, और आवश्यकता के बाद फिर हम उसको 15 दिनों के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फली मक्खी का उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात रही हमारी जो फली फेदक की समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कीट है, तो सबसे पहले इसकी निगरानी करना जरूरी है, और आरंभिक अवस्था में ही जैसे ही दिखाई पड़े तो प्रारंभिक अवस्था में ही दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए,

उसमें एक दवा आती है प्रोनोफोस, उसकी जो है 1 ml दवा प्रति लीटर पानी, प्रोपेनोफोस दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद उसका एक छिड़काव और कर देते हैं तो इससे कमी आ जाती है। और जिन खेतों में टर्माइट की समस्या है, दीमक की समस्या है, वैसे खेतों में जो है 25 किलो क्लोरोपाइरीफॉस जो कि धूल के रूप में भी मिलता है बाज़ार में, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कीटों का हम इस तरह से इसको रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है, बहुत सारी समस्या बीमारियों की समस्या आती है, तो बीमारियों में जो है खासकर जो है पीली चितेरी रोग पाया जाता है जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रोग है, इससे काफ़ी नुकसान होता है, 70 से 80% तक इसका नुकसान होता है। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो है जो फली मक्खी है इसके रोग वाहक का काम करते हैं, और ये फली मक्खी जो है स्वस्थ पौधों से जो है बीमार पौधे से रस चूसकर और स्वस्थ पौधों में जो है ये फैला देती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला देते हैं। तो इसलिए जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण में है कि पत्तियां जो है हल्की हरी और पीली हो जाती है और चितीदार हो जाती है, इसलिए इसको पीली चितिरी रोग बोलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उस पौधे को हम लोग को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए, उखाड़ के वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या इसको कहीं जला देना चाहिए दूर के क्षेत्रों में, क्योंकि यही हमारा सोर्स का इन्फेक्शन काम करता है, जिससे जो है वायरस को जो है वो हमारे फली सफ़ेद मक्खी है वो अपने आप में अर्जित करती है और स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स जो बीमार पौधे हैं उसको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो दवा मैंने बताया इमिडोक्लोरोप्रीट दवा आती है उसकी 1 ml दवा 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं तो सफ़ेद मक्खी से हम इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो फलियों का नुकसान करते हैं साथ साथ जो बीमारियों का प्रकोप को भी बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से करते हैं तो इस रोग से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विषाणुजनित रोग होती है, जैसे लीफ क्रिंकल रोग जिसमें पत्तियाँ जो है सिकुड़ जाती है और समय से पहले जो है झड़ जाती है और इसमें बहुत कम फलियाँ लगती है और यह पौधे में काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये भी जो है हमारे बीज जनित भी होते हैं, साथ साथ कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा भी फैलते हैं, इसको भी हम उसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी एक लीफ कर्ल आती है, वो जो है थ्रिप से फैलती है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियाँ जो है फफूंद जनक होती है, और ख़ासकर जो उकठा की समस्या है वो प्रायः सभी पौधों में, सभी जो है जितनी भी दलहनी फसलें में है सभी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज का उपचार करना ही इसका कारगर उपाय है। और जो हम जो फसल लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, क्यारी लाइन से लाइन जो है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगर इस तरह से हम करते हैं, लाइन स्विंग करते हैं, तो उसमें जो है हमारी बीमारियां कम आती है, क्योंकि हर पौधे को जो है समुचित प्रबंधन मिलता है तो पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं, और अगर बीज उपचार करते हैं तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां आती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, वो भी एक फफूंद जनित रोग होते हैं, पत्तियों पर जो है छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और किनारे में हल्के लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो इससे हम पता चलता है कि हमारे सर्कोस्पोरा रोग से ग्रसित है और पत्तियां जो है समय से पहले ही झड़ जाती है, इससे भी हमारे उत्पादन में काफ़ी कम होता है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो इसमें एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर आता है, मार्केट में सांप के नाम से भी मिलती है, तो इसका प्रयोग करने से अगर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर देते हैं तो कुछ हद तक जो है इससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी जो है पत्तियों पर होने वाली बीमारी है चूर्णी रोग बोलते हैं, जिसको पाउडरी मिल बोलते हैं, ये प्रायः खेतों में देखा जाता है, इसमें पत्तियों पर जो है सफ़ेद पाउडर रंग का दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे कालांतर में जो है पत्तियाँ पर जो है सफ़ेद से ये हल्के धूसर रंग के हो जाते हैं और पत्तियाँ भी

0: ज़्यादा इसमें झड़ना शुरू हो जाती है, ये भी हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़े खेतों में तो उसमें जो है विटेबल सल्फर घुलनशील गंधक के नाम से मिलता है, ये सस्ती दवा है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह का ये बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां जो है और खासकर जितने भी कवक जनित बीमारियां हैं जो पत्तियों पे होती हैं, उसमें जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजीम और मैनको जो मिश्रित दवा, इसका जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका छिड़काव करते हैं जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उससे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक बीमारियां जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं जीवाणु भूरी धब्बी रोग, ये जेंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें भी पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और कालांतर पत्तियां जो है वो झड़ जाती है और ये भी उत्पादन में कमी लाती है। तो इसका अगर खेतों में अगर दिखाई पड़े तो ऐसे में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी दवा का जो है 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी हद तक जो है हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये सब लगने वाली जो है कुछ कीट व्याधियों की समस्या है। और जहाँ तक रही खरपतवार की समस्या के लिए, तो जैसे ही हम बुआई करते हैं बुआई के 2 दिन के अंदर जो है पेंडीमिथिलिन दवा आती है उसका जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं छिड़काव करते हैं तो आरंभिक अवस्था में इसको रोकते हैं। और महीने 3 के बाद एक अगर निकौनी कर लेते हैं या खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर छोटी जगह पे हो तो, अगर इस तरह से हम कर लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में केमिकल के द्वारा और बाद में जो है निकौनी के द्वारा कर सकते हैं इसके, तो उसके काफ़ी जो है खरपतवार को इसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह से हम पूरी तरह से समग्र क्रियाओं को अगर सम्मिलित करके अगर खेती करें तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और इसमें हम 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक भी हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी हमारा ज़मीन जो खाली रहता है तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना जो है उत्पादन और आमदनी को बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों यहाँ पर पूरी जानकारी मिली आपको, उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपको कि बुआई कब करना है, सिंचाई कैसे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं उनका निवारण आपको कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपको देनी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को एक बार ज़रूर सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। 90.8 MHz।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क।

0: माने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो कीटनाशी के बारे में, यानी कि नैनो पेस्टिसाइड के बारे में। ये क्या है और आजकल क्यों कृषि विशेषज्ञ विशेष सलाह दे रहे हैं कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लंबे समय से किसान भाई बहन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जाता है कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। तो आखिर अंतर क्या है नैनो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: जी, थैंक यू मैम।
3: सर, आपसे सबसे पहला सवाल, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कि नैनो पेस्टिसाइड यानी कि नैनो कीटनाशी क्या है?
5: नैनो पेस्टिसाइड, जिसको कि नैनो कीटनाशी भी बोलते हैं, यह उन्नत इंजीनियरिंग कृत फार्मूलेशन है जो नैनो तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है, और इसमें जो कीटनाशक तत्वों का आकार जो होता है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में समाहित रहता है, या डायरेक्ट इसमें या प्रत्यक्ष रूप से नैनो कण को यूज करते हैं, और साथ ही साथ या जो है ना कुशल एवं लक्षित होता है उसे नैनो कीटनाशी कहा जाता है, जैसे नैनो सिल्वर, नैनो कॉपर, नैनो जिंक ऑक्साइड इत्यादि इनके उदाहरण माने जाते हैं।
3: ये इतना ज़रूरी क्यों है?
5: ज़रूरी अभी के परिप्रेक्ष्य में जो किसान भाई, जैसे पहले परंपरागत जो कीटनाशी होते थे उसमें कुछ बहुत सारे महत्व बिंदु है जिसको कि इसमें नहीं समाहित किया गया है, जैसे कि उपयोग करने का तरीका, उसका मात्रा, यह सब इसमें कम हो गया है। तो जैसे मुख्य सब इनकी विशेषताएं हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करता है, या जहाँ पे चाहिए जितना उतना ही यह काम करता है, या इसका बड़ा मुख्य पहलू है कि नैनो कीटनाशी का। साथ ही साथ यह अत्यधिक कुशल होते हैं, जिसको कि कह सकते हैं कि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं, कि जो परंपरागत जो हम कीटनाशी यूज करते थे उसके तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होते हैं, और इसका जो और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनावश्यक उपयोग जो आने वाले कीटनाशक रसायनों की मात्रा जो होती थी इसमें कम हो गया है, परंपरागत में ज़्यादा होती थी, और अगर मात्रा कम होगा तो यह पर्यावरण पर भी इसका जो है न प्रभाव जो है न पॉजिटिव होगा या निगेटिव कम होगा, और खेतों में नैनो कीटनाशी का अवशेष की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि प्रारंभ में ही इसकी मात्रा कम होती है, और जब ये नियंत्रित जो करते हैं वह पूरा लक्ष्य बेस्ड काम करते हैं, और उपयोग में जो मात्रा होती है बहुत कम, लगभग जो है ना जो परंपरागत कीटनाशी था उसका लगभग 10% अप्रॉक्स हम इसमें यूज करते हैं, और जो है यह धीरे धीरे काम करता है जिससे कि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है, और इसमें अवशिष्ट बचने का चांस कम हो जाते हैं, और निश्चित तौर पे है कि जब हम चीज़ को कम उपयोग करेंगे, कम खर्च होगा, तो इससे जो है ना किसान भाई का जो खर्च आता था कम हो जाते हैं,

0: और जो है ना जो प्रतिरोधकता जो था कि बहुत सारे कीट जो है ना जो कीटनाशी थे उससे प्रतिरोधी हो गए थे, तो इसमें जो है ना प्रतिरोधकता जो है यह भी कम है नैनो कीटनाशी में, और इससे कृषि उपज को बढ़ाने में ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम इसका उपयोग टारगेट वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ यह हम स्थिति परिस्थिति और बुद्धिमता से नैनो कीटनाशी का उपयोग करते हैं।
1: जैसे कि सर आपने बताया कि ये बिल्कुल टारगेटेड काम करता है और बहुत कम मात्रा में बेहतर काम करता है, तो सर आप ये बताइए कि काम कैसे करता है नैनो पेस्टिसाइड?
0: जो कीटनाशी होता है यह सर्वप्रथम जब हम उस पर जहाँ चाहिए जब कीट को मारने के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सर्वप्रथम होता है कि कीट के जो शरीर का हिस्सा है जो बॉडी का पार्ट है उससे जो है ना चिपकता है, और धीरे धीरे उनके बॉडी पे जो क्यूटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं इन कीड़ों पे उसको जो है ना उससे इंट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे कीटों के शरीर के अंदर जाता है, और जो कि जो शरीर जो कीट के शरीर में जो पानी रहता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है, और अंतोगत्वा शरीर में डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है कि वह जो है ना कीट मरने लगता है, क्योंकि जो हम कीटनाशी का जो प्रयोग करते हैं ना इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है जो हम अपने सूक्ष्म आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो और उसका सतह क्षेत्रफल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कार्य क्षमता सतह क्षेत्रफल का ज़्यादा होना इसका मतलब है कि उसका कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और इसीलिए जो है ना इसका यह जो है ना कि वह टारगेटेड होते हुए काम करते हैं। तो ओवर ऑल अगर आप हम देखें तो यह क्या करता है कि जब हम डालते हैं तो लक्ष्य पे काम करता है, या पत्तियों के सतह पे जो कि चिपक जाते हैं तो वहाँ भी इंसेक्ट जब बैठ जाते हैं तो उससे उसका जो है ना इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना सक्रिय तत्व इंसेक्ट के शरीर में जाते हैं और उसका शारीरिक क्रियाएं बाधित होती है और अंतोगत्वा उनका मृत्यु होने लगता है।
1: जी सर, आपने ये तो बताया कि नैनो पेस्टिसाइड काम कैसे करता है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैनो पेस्टिसाइड बनाया कैसे जाता है?
0: नैनो जो पेस्टिसाइड है या कीटनाशी है यह मुख्यतः दो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि हम प्रत्यक्ष नैनोकण का उपयोग करते हैं, जैसे कुछ धातुएं जैसे नैनो जिंक ऑक्साइड है तो आप जिंक ऑक्साइड को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ही लेके उसको जो है ना छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो है ना कीट जो होते हैं मरने लगते हैं, तो यह प्रत्यक्ष नैनोकणों का उपयोग है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो है ना नैनो इनकेप्सुलेशन करते हैं, नैनो का कण लेते हैं उसके अंदर जो कीटनाशी होता है परंपरागत कीटनाशी होता है उसको उसके अंदर में कैप्सूल की तरह रखते हैं, तो इसका क्या होता है कि कैप्सूल में बंद हो जाता है, तो इससे कीटनाशक जो है ना जो निकलता है कैप्सूल से धीरे धीरे निकलता है और इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और कभी कभी जो है ना हम लोग कीटनाशक को नैनो इमल्सन के भी रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ हुआ जैसे तेल वगैरह नैनो के रूप में यूज करते हैं, जो सक्रिय मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं जिससे कि जो है ना मिल के मुख्य सक्रिय तत्व और जो नैनो कण होते हैं या कीटनाशक को के तरह काम करते हैं, और जिससे कि अंतोगत्वा कीट का मृत्यु हो जाता है।
1: सर अब आप ये बताइए कि नैनो पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं?
0: मुख्यतः जो है कीट नैनो कीटनाशी दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक कहते हैं। तो कार्बनिक रूप में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें हम कार्बनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विभिन्न तरह के तेल होते हैं और वह उसके लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है, तो उसको लेके हम यूज करते हैं। दूसरा है कि अकार्बनिक के रूप में, जैसे कि मतलब अकार्बनिक धातु के जो है ना जो होते हैं उसको डायरेक्ट हम जो है ना नैनोकन बनाते हैं। नैनोकन बनाने का मतलब हुआ कि उसका साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के रेंज में लाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं और वह जो है ना धातु के रूप में होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हुआ, जैसे नैनो सिल्वर हुआ, तो यह जो है ना उसमें बहुलता से कारगर सिद्ध होता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है।

0: है और वह प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है जहाँ पे उसको मारना चाहिए।
1: जी सर, तो अभी आपने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और जब नैनो पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो ऐसे भी हम जब आम कीटनाशकों की भी बात करते हैं तो कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो नैनो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के वक्त भी हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, यहाँ मुख्य बात यह है कि यह जो हम पहले परंपरागत कीटनाशी यूज करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते थे, तो मात्रा पे जरूर ध्यान रखेंगे। जो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो परंपरागत है उसका दसवां हिस्सा ही इसमें हो जाता है, तो दसवां हिस्सा से मतलब जितना ज़रूरी हो उतना ही जो है ना इसका जो है ना उपयोग करें। दूसरी बात है कि जो हवा का जो वेग है, डायरेक्शन है, जो उसका बहने का जो हाँ रू है, उसको देखते हुए जो है ना किसान भाई को इसका उपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो है ना जब आप नैनो कीटनाशी यूज करते हैं तो मास्क का जरूर यूज करें, क्योंकि वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि इवन सूक्ष्म होता है और खुली आँखें के द्वारा दिख नहीं पाता और पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चला गया, तो इससे हार्म होने का भी जो है ना विपरीत हेल्थ जो अपना स्वास्थ्य है उस पर जो है ना विपरीत प्रभाव पड़ने का डर रहता है, तो इसलिए जो है ना मास्क का भी जरूर यूज करना चाहिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका उपयोग करें। और मुख्यतः जो है इसका उपयोग जैसे हम पत्ते पे स्प्रे करके करना अच्छा माना जाता है, या दूसरा जहाँ पे देखें कि जो उसका व्यवहार जो होता है कीटों का, जो उसका एक्टिव फेज होता है जहाँ व्यवहार होता है लार्वा वगैरह जो है ना, वहाँ अगर कीट नैनो कीटनाशक का उपयोग करें तो इस तरह जो है ना बहुत कारगर माना जाता है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से जो है ना कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें जिसका कि ध्यान रख के ही किसान भाइयों का नैनो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, नैनो हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए।
1: यानी कि हवा का रुख आप विशेष रूप से ध्यान रखें और जी, जो अनुशंसित मात्रा है
0: जी जी जी जी,
1: और मास्क का भी इस्तेमाल करें क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर गया तो परेशानी हो सकती है
0: जी।
1: तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें और उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी मिट्टी का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना?
6: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के

0: कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय

0: का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
2: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 cm की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम ऐसी कुछ सब्जियों को खाते हैं जो हम अगर बिहार के बाहर जाएं तो बहुत कम लोग जानते हैं और बाहर मिलता भी नहीं है, जबकि उन सब्जियों में भी काफी पोषक तत्व होते हैं और काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होता है। लेकिन बावजूद इसके उन सब्जियों पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो अल्प उपयोगी रह जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी फसलों की भूमिका के बारे में, और इस बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी। आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा, और धन्यवाद मेरे भाई बंधु किसान भाइयों और एवं बहनों। मैं आज आपसे जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड फसलों की भूमिका, इस विषय पर चर्चा करूंगी। तो देखा गया कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी तथा नई नई कीट एवं रोग समस्याएं किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रही है।

0: ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है जो बदलती जलवायु के अनुकूल हो तथा कम संसाधनों में भी अच्छा उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी अथवा अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलों इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है।
1: मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अल्प उपयोगी सब्जी क्या है।
0: अल्प उपयोगी सब्जियां वे फसलें हैं जिनका स्थानीय स्तर पर लंबे समय से उत्पादन और उपयोग होता रहा है, लेकिन आधुनिक कृषि एवं बाजार व्यवस्था में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा है। सो इनमें से देखा जाए तो चौलाई, सहजन, मालाबार पालक, ककोड़ा, विंग्ड बीन, याम बीन तथा राइस बीन जैसे प्रमुख फसलें हैं।
1: मैम, इसका क्या जलवायु परिवर्तन में भी कुछ रोल रहता है?
0: हाँ बिल्कुल, इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जलवायु सहनशीलता ही है। अधिकांश अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कम पानी, अधिक तापमान तथा कम उर्वरक भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन में बढ़ते प्रभावों के बीच इनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं सहजन का पौधा, सूखा और गर्मी दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है। मलाबार पालक, जिसको हम लोग पोईसाक भी बोलते हैं, और चौलाई जैसे पत्तेदार सब्जियां कम अवधि में तैयार हो जाती है तथा विपरीत मौसम में भी किसानों को उत्पादन प्रदान करती है। इसी प्रकार ककोड़ा और विंग्ड बीन जैसे फसलें स्थानीय परिस्थितियों में अच्छी तरह विकसित होती है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकती है।
1: मैम, ये तो बात हो गई जलवायु परिवर्तन की, अगर हम पोषक तत्व के नजरिए से समझे तो पोषक तत्व के नजरिए से इसका क्या महत्व है?
0: हाँ उमा, तो इसमें अल्प उपयोगित सब्जियां पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियां और फलियों पोषण का उत्कृष्ट स्रोत है, जबकि चौलाई में आयरन और खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इनका नियमित सेवन कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है।
1: मैम, आजकल हम लोग काफी ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी अल्प उपयोगी सब्जी महत्वपूर्ण होता है?
0: जी बिल्कुल, इन फसलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। इससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कृषि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब किसान केवल कुछ सीमित फसलों पर निर्भर रहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की सब्जियां का उत्पादन कृषि प्रणाली को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाता है।
1: मैम, अभी जब आपने उदाहरण दिए तो बहुत सारे ऐसे सब्जियों का आपने नाम लिया जो बिहार में पाए जाते हैं, बिहार के लोग खाते हैं, लेकिन बिहार में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इन सब्जियों को?
0: हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। तो बिहार में भी इन फसलों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें हम लोग गृह वाटिका, पोषण वाटिका, समेकित कृषि प्रणाली तथा व्यावसायिक खेती में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सकता है। इसीलिए इनके संरक्षण, उन्नत किस्मों के विकास, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारा बीएयू साबोर विशेष प्रयास कर रहा है।
1: मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों और श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कृषि में विविधता लानी होगी और ऐसी फसलों को बढ़ावा देना होगा जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी या अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पोषण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी इन फसलों के महत्व को समझें, इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दें तथा जलवायु स्मार्ट कृषि के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश

0: के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद उमा।
1: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई बहन और अन्य श्रोता, आपने इस बात को अभी जो मैम ने बताया आपने समझा होगा कि कुछ जो अल्प उपयोगी सब्जी हैं वो कई पैमानों पर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन सब्जियों को आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा, इस तरीके से हम अपनी ओर से इन सब्जियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर,
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत।

0: हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना है कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है। ताकि

0: उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहाँ पर ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा करें।

0: पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की अगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
1: नमस्कार, मैं नीलकंठ कुमार, संकाय सदस्य CIET NCERT हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। यह कविता कक्षा 6 की किताब वसंत भाग 1 से संबंधित है। वसंत भाग 1 की यह पहली ही कविता है। चिड़िया का नाम सुनते ही हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि फुदक फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह पर, एक टहनी से दूसरी टहनी की ओर वो जा रही हो, भाग रही हो। तो आज इस मजेदार कविता के बारे में हम सब जानेंगे और समझेंगे। थोड़ी सी बात इस कविता के कवि के बारे में भी जान लेना बेहतर होगा। कवि केदारनाथ अग्रवाल का बचपन खेत खलिहानों, नदियों, वनों, उपवनों, तालाबों और जानवरों के पीछे दौड़ते भागते हुए बीता था। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा का पूरा बचपन प्रकृति के बीच बीता, चिड़ियों को देखते हुए, पशुओं को देखते हुए, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे उनको प्रकृति से मानो प्यार हो गया, और इसीलिए उनके अंदर की चिड़िया इस कविता में अभिव्यक्त हुई है शब्दों के माध्यम से। दरअसल यह चिड़िया जो आपको कविता में दिखाई पड़ती है वो कहीं न कहीं से कवि के मन के अंदर बैठी हुई चिड़िया भी है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो चिड़िया है कैसी और वो चिड़िया हमसे कैसे जुड़ती है। इस कविता को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि उतार चढ़ाव के साथ हम उस कविता को पढ़ें, उसका पाठ करें। अगर आप उचित लय के अनुसार अर्थ को समझते हुए, भाव को समझते हुए कविता का पाठ कर लेते हैं तो समझिए कि आधे से अधिक कविता का अर्थ आपके समझ में आ गया है। तो आप भी जब मैं पाठ कर रहा हूँगा तो मेरे साथ साथ पाठ करने की कोशिश कीजिएगा।

मेरे साथ साथ भी और मेरे बाद भी। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो विद्यार्थियों, आपने वह चिड़िया जो कविता का एक पाठ सुन लिया। कविता को पढ़ते हुए कुछ न कुछ चिड़िया के बारे में जो बातें हुई हैं वो आपके समझ में भी आई ही होंगी। तो जिन बातों को आपने नोटिस किया, जिन बातों की ओर आपने ध्यान दिया, उसके आधार पर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आप जरा सोचिए अपने मन में कि बहुत सरल और सहज भाषा में लिखी गई केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता में चिड़िया की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो मेरे समझ में तो बात ये आई कि चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को नदी से भी प्यार है, और चिड़िया को विजन से भी प्यार है, और आप कह सकते हैं कि चिड़िया को दूध भरे जुंडी के दाने से भी प्यार है। तो चिड़िया को बहुत सारी चीज़ों से प्यार है। आप इस कविता को पुनः ध्यान से पढ़ते हुए ये देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि इस कविता के आधार पर चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है और चिड़िया की विशेषताएं क्या क्या बताई गई हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि चिड़िया नीले पंखों वाली है, चिड़िया साहसी भी है, और अरे चिड़िया तो संतोषी भी है, क्योंकि दूध भरे जुंडी के दाने को खाकर वो खुश भी होती है, देखती भी है, इधर उधर उड़ती भी है और प्रसन्न रहती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि चिड़िया संतोषी भी है, क्योंकि उसे जो मिल रहा है वो उसे ही खाकर प्रसन्न है। तो चिड़िया के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको एक कविता से मिल रही है, और अगर आपने इन सारी बातों की ओर ध्यान दिया है तो अब हम कविता के अर्थ की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। आपने पाठ सुन लिया, पाठ के आधार पर यह भी जान लिया कि चिड़िया की विशेषताएं क्या क्या हैं, चिड़िया किन चीज़ों को खाकर खुश रहती है। तो आइए इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनको कविता से जोड़ते हुए कविता के अर्थ को आगे बढ़ाते हैं, उसके भाव को विस्तार देते हैं, और साथ ही हम अपनी समझ को भी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कविता का अर्थ करने के लिए पुनः हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप भी कविता को देखिए और मेरे साथ साथ इस कविता का अर्थ और भाव विस्तार करने का प्रयास कीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो चिड़िया अपने बारे में खुद ही कह रही है। आप कह लें कि कवि एक तरह से चिड़िया बनकर अपनी बात कर रहे हैं। तो चिड़िया के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसी चिड़िया हूँ जिसके पंख नीले हैं, और फिर वह चिड़िया कहती है कि मैं चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से और रस से खा लेती हूँ। हमारी और आपकी तरह उनके पास हाथ या पांव नहीं होते, तो वो कैसे खाएंगे? चोंच मार कर।

अब आप अर्थ लगाने का प्रयास कीजिए आगे पीछे के संदर्भ को देखते हुए, आगे पीछे जो कविता में बातें की गई हैं कि दूध भरे जुंडी का क्या अर्थ हो सकता है। जुंडी का मतलब है किसी दाना की ओर, किसी अनाज की ओर संकेत किया गया है। दूध भरे हुए जुंडी के दाने, आपने गेहूं की बाली देखी होगी। अगर आपने कभी खेत खलिहानों को देखा हो तो आपने देखा होगा कि गेहूं में बाली लगती है, तो उस बाली की ओर ही संकेत किया गया है। और दूध भरे जुंडी, जुंडी का अर्थ ज्वार से है, तो ज्वार के दाने चिड़िया खा रही है। और ये भी बताया गया है कि वो ज्वार के दाने कैसे हैं, तो वो दूध से भरे हुए हैं। दूध से भरे हुए दाने कब होते हैं? जब वो पके हुए नहीं होते हैं, थोड़े से कच्चे होते हैं। और उसको चिड़िया कैसे खाती है? रुचि से, रस से वो खा लेती है। जरा आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप वैसी चिड़िया हो, या अपने आप को आप चिड़िया मानते हुए सोचिए कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप कितनी रुचि से और रस से खा लेते हैं। वह छोटी, अब चिड़िया अपने बारे में ही कह रही है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब कि मैं संतोषी हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की इच्छा नहीं है कि मैं यह भी खा लूँ, मैं वह भी खा लूँ। इसलिए चिड़िया अपने बारे में कहती है कि वह छोटी जरूर है लेकिन संतोषी भी है। तो चिड़िया छोटी है, चिड़िया नीले पंखों वाली है, और चिड़िया अपने बारे में खुद ही कह रही है कि मैं संतोषी भी हूँ। अब चिड़िया आखिर में कह रही है जो मैं आपसे पूछ रहा था इस कविता को पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी, कि चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया खुद ही कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मतलब चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने को खा रही है, और जिसके बाद वो कह रही है कि वो संतोषी भी है, और नीले पंखों वाली वही चिड़िया अंत में कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो ऐसी है वो चिड़िया। तो चिड़िया अपनी बात कह रही है, और चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल भी अपनी बात कह रहे हैं। कहीं न कहीं केदारनाथ अग्रवाल को भी अन्न से प्यार है। अब हम आगे की कुछ पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। पुनः चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब आग शुरू की कुछ पंक्तियों को ध्यान से देखिए, और उन पंक्तियों को देखते हुए अनुमान करने का प्रयास कीजिए, अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए कि एक अपरिचित सा जो शब्द विजन के रूप में आपको दिख रहा है, उस विजन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि आप इसके अर्थ का अनुमान अवश्य कर लेंगे। अगर आप बूढ़े वन बाबा को समझते हैं, तो बाबा शब्द का उपयोग कई जगहों पर पुरखों के लिए किया जाता है। पुरखों से आशय यह है कि एक या दो पीढ़ी पहले के लोग, और कई क्षेत्रों में बाबा शब्द दादा के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। वन बाबा मतलब वन की कल्पना दादा के रूप में की गई है। मुझे लगता है कि अब तक आपने विजन शब्द के अर्थ का अनुमान अवश्य कर लिया होगा। विजन शब्द का अर्थ ये है, ऐसी जगह जहाँ पर जन ना हो, ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता ना हो, उसे विजन कहते हैं, विजन या निर्जन जगह। तो विजन शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसी जगह

जो निर्जन है, जहां कोई रहता ना हो, जहां कोई आता जाता ना हो, तो निश्चित रूप से जहां जंगल होता है वहां अधिकांशतः कोई आता जाता नहीं है। हाँ, पशु पक्षी और चिड़िया वहां पर अवश्य आपको मिलेंगे। तो आइए अब पुनः देखते हैं कि चिड़िया क्या कह रही है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो चिड़िया कैसे गाती है? कंठ खोलकर। मतलब कंठ खोलकर गाने का मतलब ये हुआ कि पूरे मन से वो गाती है, पूरे सुर में वो गाती है। तो चिड़िया कह रही है कि कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। अब यहाँ वन बाबा को वन जंगल, जिसकी कल्पना दादा के रूप में की गई है, पुरखों के रूप में की गई है, और जिन्हें बूढ़ा भी बताया गया है, उस वन बाबा की खातिर यह चिड़िया कंठ खोलकर गाती है। तो निश्चित रूप से उसे अपने बूढ़े वन बाबा से बहुत ही प्यार है। आगे की पंक्तियां बताती हैं कि आखिर वो चिड़िया कैसे गाती है। तो इसका जवाब इन पंक्तियों में दिया गया है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। अब रस उड़ेल कर गाने का मतलब क्या हुआ? कि चिड़िया ऐसे गाती है जैसे बिल्कुल प्रसन्नता से भरी हुई पूरे सुर में और मन में वो गा रही है। रस उड़ेल कर गाने से ये आशय है। और आगे फिर एक और विशेषता की ओर संकेत है चिड़िया की। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। अब फिर से चिड़िया कह रही है कि वह मुंह बोली है, मतलब अपने बूढ़े वन बाबा से मुंह लगी हुई है। वो उनके सामने कुछ भी बोल देती है और जो मन में आता है वो गाती है, वो बोलती है। इसीलिए चिड़िया कह रही है कि वह मुंह बोली हुई है, मुंह बोली चिड़िया है। मतलब यह कि वो बूढ़े वन बाबा से मुंह लगी हुई है। बूढ़े वन बाबा की चिड़िया प्यारी भी है, प्रिय भी है। मुंह बोली कहने का आशय ही यह होता है कि कोई किसी का प्रिय हो तभी वो उससे बोल सकता है जो मन में आए। और मुंह बोली कहने का मतलब ही यह है कि चिड़िया को वन बाबा से बहुत ही प्यार है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है विद्यार्थियों कि एक तो जंगल की कल्पना दादा के रूप में क्यों की गई है, बाबा के रूप में क्यों की गई है, पुरखे के रूप में क्यों की गई है, और उन्हें बूढ़ा भी क्यों कहा गया है। यह प्रयोग कवि ने जानबूझकर किया है। वो इसलिए क्योंकि चिड़िया की उम्र बहुत कम होती है और वन, उपवन, जंगल, पेड़ सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुराने होते हैं। तो यही कारण है कि चूंकि पेड़ बहुत पुराने होते हैं, जंगल बहुत पुराने होते हैं, और चिड़िया की कई पीढ़ियां उस एक ही पेड़ पर पैदा लेती है, जैसे वो चिड़िया उसके माता पिता भी हो सकता है उसी पेड़ पर पैदा हुए हों, और उस चिड़िया के आगे आने वाले बच्चे भी हो सकता है, उसकी आगे की संतति, उसकी उनके संतानें भी उसी पेड़ पर पैदा हों। इसीलिए चिड़िया कहती है, चूँकि ये वन बाबा अनंत काल से चले आ रहे हैं, बहुत प्राचीन हैं, पुराने हैं, इसलिए और वहीं पर चिड़िया पली बढ़ी है, खेली कूदी है, इसलिए उस वन को अपना मानते हुए बूढ़े वन बाबा का संबोधन चिड़िया ने दिया है कि ये हमारे अपने तो हैं ही, हमारे परिवार के हिस्सा तो हैं ही, क्योंकि हम सब वहीं पले बढ़े हैं और साथ ही हमारे बाबा भी हैं। बाबा इसलिए हैं कि पुराने हैं, प्राचीन हैं, कई पीढ़ी से वो उनके साथ बने हुए हैं। और मुंह बोली भी चिड़िया इसीलिए है क्योंकि उसी

पेड़ पर हो सकता है चिड़िया ने उड़ना सीखा हो, उसी पेड़ पर हो सकता है चिड़िया ने बोलना सीखा हो, उसी पेड़ के फल दाने फूल को खाते हुए हो सकता है चिड़िया बड़ी हुई हो। इसीलिए वो कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा के मुंह लगी हुई हूँ, मुंह बोली हूँ, तो इनके सामने मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे कोई लिहाज नहीं करना पड़ता है और जो मन में आता है मैं बोलती हूँ। वैसे ही जैसे आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से कुछ भी बोलते हैं दिल खोलकर, तो आप मुंह बोली हैं उनके लिए। अगर आप चिड़िया हैं तो अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता की आप मुंह बोली हैं। तो फिर से वापस आते हैं चिड़िया पर। तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा की प्यारी क्यों है, मुंह बोली क्यों है, आपने समझ लिया। आपने यह भी समझ लिया कि चिड़िया ने बूढ़े वन बाबा का संबोधन क्यों दिया है, जंगल को, वन को बाबा क्यों कहा है। और मजे की बात तो ये देखिए कि जंगल को एक तरह से उसने मनुष्य की तरह चित्रित कर दिया, इंसान बना दिया बाबा कहकर, बूढ़ा भी कहकर और बाबा भी कहकर। तो ये बहुत ही मजेदार प्रयोग इस कविता में है जो चिड़िया कह रही है और चिड़िया के माध्यम से कवि भी कह रहे हैं। कवि को भी वन उपवन से प्यार है, कवि को भी अन्न से प्यार है और कवि का बचपन खेत खलिहानों के बीच, वन उपवन के बीच, तालाब में तैरते हुए, पशु पक्षियों के पीछे भागते हुए बीता था। तो वह चिड़िया आप भी हो सकते हैं विद्यार्थियों, कवि तो हैं ही, और चिड़िया जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिस चिड़िया की विशेषता अब तक आप समझ चुके हैं कि वो नीले पंखों वाली है, वो संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है और अपने बूढ़े वन बाबा की वो मुंह बोली भी है। तो ऐसी ही चिड़िया की चर्चा इस कविता में अभी हो रही है। तो फिर से चिड़िया कह रही है कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और आखिर में वो कहती है कि ऐसे सुनसान निर्जन जगह पर जहाँ कोई आता जाता ना हो, जिसके लिए विजन शब्द का उपयोग किया गया है और विजन शब्द का अर्थ अभी आप सब ने कविता पढ़ते हुए अनुमान किया और जानकारी भी ली कि विजन किसे कहते हैं। तो चिड़िया कह रही है कि उस विजन से उसे बहुत ही प्यार है, विजन उसे प्रिय है, इसलिए कि वहाँ पर वो मुंह खोलकर गाती है, अपने वन बाबा से जो भी मन में आता है बातचीत करती है और वहीं पर वो पली बढ़ी भी होगी। इसलिए वो विजन, वो निर्जन, वो शांत जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो एक प्रकार की शांति उसे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो चिड़िया की ये सारी बातें आपने जान ली, समझ ली कि चिड़िया के मन में क्या क्या चल रहा है और आपके मन में भी चिड़िया के बहाने कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आपके मन की भी चिड़िया कूद कर बाहर निकल जाना चाह रही होगी, है ना? आप भी सोच रहे होंगे कि आपको चिड़िया की तरह क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, आप किसके मुंह बोले या मुंह बोली हैं और आपको किन चीजों से प्यार है। तो चलिए अब हम आगे की कुछ पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस नीले पंखों वाली चिड़िया को, जो संतोषी भी है, जो मुंह बोली भी है, उसे और किन किन चीजों से प्यार है और वो और क्या क्या चीजें करती हैं। आगे की पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो चोच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को नदी से भी प्यार है। अभी अलग अलग चीजों से चिड़िया के प्यार के बारे में आपने सुना, अब आखिर में चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है।

0: क्यों नदी से प्यार है? क्योंकि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, ऐसी नदी जो भरी हुई, चढ़ी नदी कहने का मतलब नदी पूरी तरह गति में हो, भरी हुई नदी हो जिसमें बहुत सारा पानी हो, वैसी नदी के बारे में चिड़िया कह रही है कि चढ़ी नदी का दिल टटोलना, दिल टटोलना दिल व्यक्ति के मध्य में होता है। और इसी तरह नदी का दिल कहने का मतलब कि जहाँ सबसे तीव्र धार हो, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी हो, वहाँ जाकर जल का मोती अपने चोंच में भर लेती है, जल रूपी मोती चिड़िया के लिए वो जल, चूंकि चिड़िया प्यासी है तो जल उसके लिए मोती से कम नहीं है। इसीलिए चिड़िया कह रही है कि मैं अपने चोंच में जल का मोती भर लेती हूँ, वो भी भरी हुई नदी, चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर। और इसीलिए चिड़िया कहती है कि वह छोटी गर्भिली चिड़िया को अपने इस क्रियाकलाप पर, अपने इस बात पर कि वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपने चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, इस बात से चिड़िया को बहुत फख्र है, गर्व है। तो इसीलिए चिड़िया कहती है कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कहने का मतलब यह कि चिड़िया साहसी भी है, इसीलिए कहती है कि मुझे गर्व है और मैं डरती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निडर हूँ। इसीलिए अंत में चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं साहस करके नदी का दिल टटोलती हूँ। इसमें चिड़िया को आनंद भी आता है और चिड़िया की प्यास भी बुझती है, चिड़िया को गर्व भी है साहसी होने का, और इसीलिए अंत में कहती है लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मुझे इस नदी से भी बहुत प्यार है। और चिड़िया के साथ साथ, जैसा कि मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ, कवि को भी कहीं ना कहीं नदी से प्यार है। और अपनी इन्हीं भावनाओं को, जिन चीज़ों से कवि को प्यार है, उसे कवि ने शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया है, और जो आपके सामने है कविता रूप में, वह चिड़िया जो। तो आपने इस कविता का अर्थ जान लिया, समझ लिया। अब आइए कुछ भाषा की भी बात करते हैं। आप इस कविता को जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते हुए चिड़िया की कई विशेषताओं की ओर आपका ध्यान गया होगा, जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया। तो ये चिड़िया छोटी है, चिड़िया नीले पंखों वाली है, चिड़िया संतोषी है, तो ये सारे शब्द चिड़िया की विशेषताओं की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो अलग से आपको विशेषण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस कविता में ही आपने जान लिया कि जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है चिड़िया के लिए, वो सब विशेषण हैं। इसी तरह से चिड़िया को पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि चिड़िया शब्द संज्ञा है, और जब खुद के लिए चिड़िया मैं बोलती है तो वो सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो कविता पढ़ते हुए आप व्याकरण की बात भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब चिड़िया ये कहती है कि मैं रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, तो गाना क्रिया है, आप सब जानते हैं कि खाना गाना क्रिया है। अब वो कैसे गा रही है? रस उड़ेल कर गा रही है। तो गाने की विशेषता कौन बता रहा है? रस उड़ेलना। तो रस उड़ेल कर यहाँ क्रिया विशेषण की तरह उपयोग किया गया है। तो जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्रिया विशेषण। तो आपने क्रिया विशेषण को भी जान लिया कविता को पढ़ते हुए ही। तो मुझे लगता है इस कविता को पढ़ते समझते हुए आपके मन की चिड़िया अब तक बाहर आ गई होगी। कुछ अनुमान और कल्पना कीजिए और पढ़ते रहिए इस कविता को। हम अगली दफा फिर मिलेंगे किसी और पाठ के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद
1: साथियों। अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में। मखाना के पौष्टिक गुणों के बारे में अब तक देश दुनिया में सबको पता है, इसकी मांग भी देश और दुनिया हर जगह है, और बढ़ती मांग यानी कि रोजगार के बढ़ते अवसर। और जब मखाना की बात होती है, मखाना से जुड़े रोजगार की बात होती है, तो हम पाते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करने वाला देश है। और भारत में बिहार, जी हाँ, अकेला बिहार 85 से 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। और फिर बिहार में लोगों को मखाना से जुड़े रोजगार के अवसर के बारे में पता तो होना ही चाहिए, और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है मधुमिता मैम। आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा। तो आज हम बात करेंगे

0: कि मखाना से कैसे आप उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इसके क्या अवसर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं हूँ मधुमिता और मैं आज मखाना के गुणों के बारे में, उसके उद्यमिता के अवसर के बारे में आप लोगों से बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं जैसा कि इसे मखाना को हम सुपर फूड कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। आइए हम कुछ इनके इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे कि हमारे शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को ये हम बचाता है और त्वचा को जमा रखता है। दूसरी चीज़ है हृदय स्वास्थ्य। इसमें मौजूद पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित रखने में मदद करता है और यह दिल के लिए अच्छा है। फिर है वजन प्रबंधन। कम कैलोरी, वसा और उच्च फाइबर के कारण यह हमारा पेट भरा रखता है और वजन घटाने में भी सहायक है। पाचन में सहायक, यह हमारे पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है। डायबिटीज़ के लिए, चूँकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है। यह फाइबर और मैग्नीशियम से युक्त होता है जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है। फिर यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाना में मौजूद कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव के लिए यह काफ़ी लाभदायक है। हमारे त्वचा और बालों के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। मानसिक विकास के लिए ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। नींद और तनाव, यह तनाव कम करके बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं जिसके चलते यह हर एक वर्ग के लोगों द्वारा मांग किया जाता है, पसंद किया जाता है, जिससे कि उद्यमिता के अपार अवसर खुल जाते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां कोई खेती नहीं होती, ऐसी जगहों पर हम मखाना की खेती करके एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि मखाना एक तो वजन को नियंत्रित करता है, बहुत सारे फायदे आपने बताए, उनमें से जो आजकल युवाओं की चाहत होती है वजन नियंत्रित हो और उनकी त्वचा जवा दिखे, और ये दोनों ही फायदे मखाना में भरपूर रूप से हैं। और अभी आप जैसे बता रही थी कि अपने बिहार में 90 एकड़,
0: 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें जल जमाव वाली जमीन भी शामिल है, तो हम
1: वहाँ मखाना
0: लगा करके बिल्कुल है रोजगार के अवसर
1: पैदा कर सकते हैं। तो अभी रोजगार के बारे में आप बात कर रही थी, तो मखाना का उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावनाएं बिहार में हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैम ये बताइए।
0: जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है जिसमें कि रोजगार भी एक मुद्दा है। तो खासकर बिहार के लिए जहाँ पर कि 85 से 90% उत्पादन होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे उद्यम लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर खड़े कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो कि कच्चे मखाने के बजाय उसे प्रोसेस या प्रसंस्कृत करके बेचना अधिक लाभदायक होता है। रोस्टिंग और फ्लेवरिंग, सादे मखाने के बजाय हम पेरी पेरी, पुदीना, पनीर टिक्का या चॉकलेट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना स्नैक्स बना करके बेच सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है हमारे युवाओं के बीच में जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। और है मखाना पाउडर, मखाना को पीसकर पाउडर बनाया जाता है जिसका उपयोग शिशु आहार, एनर्जी बार, हेल्थ सप्लीमेंट और बेकरी उत्पादों जैसे कि मखाना कुकीज़ और विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों में किया जाता है। फिर है मखाना बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स जैसे मखाने का आटा, मखाना फ्लैक्स,

0: पास्ता, मैकरोनी जैसे आधुनिक उत्पाद बना करके भी बेचा जा सकता है, यह भी काफ़ी मांग में है। मखाना खीर मिक्स, यह एक रेडी टू कुक जो कि पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, जिसमें मखाना पाउडर या छोटे मखाना के टुकड़ों के साथ चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स आदि मिश्रित होते हैं। इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। बेकरी उत्पाद, मखाना के आटे के का उपयोग ग्लूटेन मुक्त बिस्किट, ब्रेड और कुकीज़ बनाने में किया जा सकता है। और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद हैं जैसे कि मखाने का उपयोग हम अनेक पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन पफ्स, मखाना भेल, अचार, कलाकंद एवं अन्य मिठाइयाँ, पास्ता और सलाद के टॉपिंग के रूप में। बहुत सारे ऐसे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं जो कि हम मखाना से प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, और ये हमारे युवा और वयस्क वर्ग में काफ़ी ज़्यादा
1: पॉपुलर है,
0: मांग में है।
1: मतलब लोगों के बीच मखाना की मांग तो है, और साथ ही जब मखाना इतने फ्लेवर में आ रहा हो, मखाना इतनी अलग अलग वैरायटी में आ रहा हो, तो मांग काफ़ी होती है और रोजगार के अवसर भी होते हैं। लेकिन मैम, क्या मखाना उत्पादन में, मखाना के उद्यम में क्या सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है?
0: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अगर हमें सरकारी सहायता मिल जाती है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और सरकार भी काफ़ी सारी योजनाओं के साथ युवाओं को मदद कर रही है। जैसे कि हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक है PMFME योजना, जिसको कि हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जानते हैं। इसके तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाती है, PMFME पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। खास करके बिहार में कई जिलों जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में इस में मखाने की इस योजना के तहत चुना गया है, जिसमें कि सरकारी सहायता मिलती है। अब तीसरा है मखाना विकास योजना। ये जो बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना, मखाना विकास योजना, ये बिहार के 10 विशिष्ट जिलों में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह किसानों को प्रशिक्षण देने और मखाना की खेती और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। फिर यह योजना जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत संचालित होती है, जिसमें मखाना बीज वितरण, भंडारण, गृह निर्माण और प्रोसेसिंग पर सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य हम उद्देश्य बता देते हैं मखाना विकास योजना के। इसके तहत जो है किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास दिया जाता है, फिर अनुशंसित मखाना किस्मों के बीज पर सब्सिडी मिलता है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है, और महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और है मखाना बोर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा बिहार में स्थापित एक सरकारी संस्था है, यह मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना होता है, ताकि किसानों की आय बढ़े और यह सुपर फूड मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। यह मखाना उद्योग की विभिन्न चुनौतियों को हल करने, नवाचार लाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए, मखाना के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती हैं, तो युवा बढ़ चढ़कर आगे आएं और इसका लाभ उठाएं और उद्यम लगाएं।
1: मैम मखाना उद्यम के बारे

0: में तो हमने बात कर ली, और बार बार आप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं, और प्रोसेस्ड मखाना की मांग भी ज़्यादा है। मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस का बाज़ार क्या है और किस तरह इस तक पहुँचा जा सकता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग का ही बाज़ार है और बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आजकल लोग जो है, चूँकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और लोग रेडी टू सर्व खाने को पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हेल्दी स्नैक के रूप में इसकी मांग बढ़ रही है और बाज़ार में इसका पकड़ मजबूत हो रहा है। मखाना के बाज़ार एवं संभावनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम घरेलू बाज़ार की बात करें तो मखाना जो है भारत में एक हेल्दी स्नैक के रूप में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इसकी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, खासकर युवा, जिम जाने वाले लोग और डायबिटीज़ और हृदय रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो अपनी डाइट में इसे शामिल कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका निर्यात भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में इसकी भारी मांग है, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। अब हम उद्योग रिपोर्ट की बात करें तो फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में हेल्दी स्नैक्स का बाज़ार 12% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस एक अहम हिस्सा हो सकता है। और विविध उत्पादों की मांग भी है, जैसे कि भुना हुआ मखाना, चॉकलेट कोटेड मखाना, पनीर फ्लेवर मखाना, मसाला मखाना और अन्य फ्लेवर के मखाना की भी काफ़ी मांग बढ़ रही है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग बिजनेस का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नहीं सिर्फ हमारे घरेलू बाज़ार में भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी है। तो हम जो है पैकेजिंग करके और ब्रांडिंग करके एक उद्यमी के रूप में आप स्थानीय किसानों से मखाना खरीदकर उसे ब्रांडिंग करके आकर्षक व लुभावने पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी छोटे उद्यमी वैश्विक बाज़ार में भी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप आधुनिक खेती भी करके जो है अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पारंपरिक तालाबों के बजाय आप मखाने की खेती को खेत प्रणाली से कर सकते हैं, जिससे कि उद्यमी आधुनिक सिंचाई और कटाई की मशीनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग बाज़ार का इसका बहुत ज़्यादा अवसर है, तो लोग, युवा को इसमें आगे आना चाहिए।
0: बिल्कुल, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो मैम, मखाना के स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने बहुत बातें जान ली, लेकिन मखाना की उद्यमियता से क्या लाभ मिल सकता है किसान को, या फिर जो युवा इसमें आना चाहते हैं, इस उद्यम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है?
1: मखाना उद्यमिता के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें प्रसंस्कृत हम अगर इसे कर लेते हैं तो चूंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो ये रोजगार सृजन में मदद करता है, साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि करता है। हम मखाना जो होता है वो धान और गेहूं जैसी फसलों से दोगुना लाभ देता है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की मांग चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा, हम अगर इसमें जाते हैं, अगर इसका उद्यम हम स्थापित करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। निर्यात के भी अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे बताया हमने कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में काफ़ी इसकी मांग है, तो निर्यात की भी बहुत संभावनाएं हैं। फिर ग्रामीण विकास में काफ़ी ये मदद करता है, क्योंकि पलायन रोकने, युवाओं का पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ से भी रोक लगाने में मखाना

0: अपना उद्यम मदद करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और चूंकि सरकारी समर्थन भी इसमें है तो ये बहुत हम इसमें उद्यम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हम आपको एक BAU हमारे जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक प्रभेद है मखाना की, उसके बारे में भी एक संक्षेप में देना चाहेंगे जानकारी। यह एक ऐसी किस्म है सबौर मखाना 1, जो मखाना की एक ऐसी किस्म है, बेहतरीन किस्म है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कि पुराने प्रभेदों की तुलना में 50% ज़्यादा उपज मिलता है। साथ ही यह कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस प्रकार यह प्रभेद किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक उत्तम माध्यम है। अंत में हम बताना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि मखाना जो देवताओं का भोजन माना जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों, उपवास और प्रसाद में इस्तेमाल होता है, उसके बहुमुखी फायदे हैं। यह एक पौष्टिक सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मखाना उद्यमिता से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसका उद्यम कृषि मूल्य संवर्धन, नवाचार और निर्यात के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रबल कारक है। संक्षेप में, मखाना उद्यमिता एक सुपरफूड क्रांति का हिस्सा है जो पोषण, आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इन कारणों से यह एक टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय का सटीक साधन है। धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और मखाना से जुड़ी इतनी सारी बातें आपने बताई। आपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, सरकार से क्या सहायता मिलती है लोगों को मखाना उद्यम के लिए, ये सब कुछ आपने बताया और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज के कार्यक्रम उन्नत कृषि में इतना ही। दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए, ढेर सारी बातों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीका।

0: आपके बच्चों की पीको से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब

0: नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की अगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ, तनाव

0: prší. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपको बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे योजना के बारे में बात करने वाले हैं जो किसान भाई बहनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और अगर वो खास तौर से किसी प्रकार के अनाज की खेती कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। जब किसान भाई बहन बुआई करते हैं और कटाई करते हैं तो उसके बाद उन्हें उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि किस प्रकार से वो अनाजों को सुखाएंगे, उन्हें किस प्रकार से उनका भंडारण करेंगे, और कई बार सुखाने के क्रम में या बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया के क्रम में अनाज दूषित हो जाते हैं, मिट्टी लग जाते हैं या फिर कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि वो चबूतरे पर अनाज को सुखाए, और ऐसे में सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है, चबूतरा निर्माण योजना, यानी कि इसमें आपके लिए किसान भाई बहनों के लिए थ्रेशिंग फ्लोर बनवाया जाता है, और इसके लिए आपको अपनी तरफ से लागत लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। कितना लागत आपको लगाना होता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं श्री निशांत कुमार से। सर आप हैं उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण भागलपुर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी।
0: सर ये योजना क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन इसका लाभ ले सकते हैं?
1: देखिए किसान भाई, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं निशांत कुमार उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण जिला भागलपुर, और आप लोगों का काफ़ी स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस जानकारी के लिए। चबूतरा निर्माण की योजना जो है हमारे कृषि विभाग के द्वारा पुनः 2 साल से शुरू की गई है, और जो किसान पहले से भी कृषि विभाग बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि आज से करीब 4-5 साल पहले भी योजना आती रही है, योजना क्रियान्वित होती रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। चबूतरा निर्माण के लिए किसान, वैसे किसान जो अपने स्वयं के नाम से भूधारी हैं, जिनका खुद के नाम से जमीन है, वो इसका लाभ ले सकेंगे। जिनके खुद के नाम से जमीन नहीं है वो इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। सबसे पहले किसान DBT पे पंजीकृत होना चाहिए, जो कृषि विभाग का DBT पोर्टल है उस पर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि लगभग होता ही है सभी लोगों का, तो वो हो गया। उसके बाद है कि DBT के वेबसाइट पर जाके, जो आप जब खोलेंगे कृषि विभाग DBT, तो DBT पे जा करके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होता है। कृषि विभाग की कोई भी काम, आप खाली यांत्रिकरण हो चाहे आपका चबूतरा निर्माण हो या कोई भी काम, कृषि विभाग का कोई भी योजना जो है ऑफलाइन मोड में नहीं चलता है। अगर कोई बिचौलिया या कोई दूसरा थर्ड पर्सन आपको अगर भ्रमक सूचना दे रहा है या भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि हम आपको लाभ दिला देंगे, आप हमारे साथ चलिए फार्म भर दीजिए, तो उनकी बातों में नहीं आना है। मैं कृषि विभाग से हूं और मैं खुद बोल रहा हूं कि कृषि विभाग की सभी योजनाएं ऑलमोस्ट चली गई हैं ऑनलाइन मोड में, इसलिए आपके हर एक योजनाएं ऑनलाइन मोड में हो गई हैं, आप ऑनलाइन ही आवेदन करें। चबूतरा निर्माण में क्या है कि जिनके नाम से खुद की जमीन होगी उनको अपने जमीन पर 20 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, और ऊंचाई होगी उसकी 2 फीट 2.25 फीट के आसपास, 20x30 और 2.25 फीट ऊंचाई होगी, 2.25 फीट 2.5 फीट के आसपास ऊंचाई रखेंगे, उतना ऊंचाई चबूतरा का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के पश्चात उनका अनुदान मिलता है। इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले किसान भाई जिस चबूतरे पे, जिस जमीन पे उनको चबूतरा बनाना है, उसके जमीन की रसीद या LPC रेडी रखेंगे, जो जिस खाता खेसरा में बनना है, आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आपके पंचायत का जो कृषि समन्वयक है

0: वो कृषि समन्वयक आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप आवेदन करेंगे उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि आवेदन हुआ है फलना जगह से। वो आपके यहाँ स्थल जांच करने के लिए आएंगे कि पूर्व से चबूतरा तो नहीं बना उस स्थल पे। वो जांच करेंगे और ऑनलाइन आपके साथ वो फोटोग्राफी करेंगे। वेरिफिकेशन जब पूर्ण हो जाएगी कि हाँ आपको आवश्यकता है चबूतरे की और आपके पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है जितने में आप चबूतरा बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, तो उसके बाद जो है आप समन्वयक जो है वहाँ फोटोग्राफी करके अपने आईडी से उसको अपलोड कर देंगे। तत्पश्चात वो आपका आवेदन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद उसमें भी लॉटरी सिस्टम में लॉटरी होगी और लॉटरी के बाद आपको स्वीकृति आदेश जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जब आपको स्वीकृति आदेश मिल जाता है तो 15 दिन या 20 दिन का समय होता है, मोटा मोटी मान के चले हुए मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि पिछले बार भी मुझे लगा था 15 दिन का ही था, लग रहा है ऐसा। तो 15 दिन का समय आपको मिलता है, 15-20 दिन के भीतर आप चबूतरा निर्माण पूर्ण कर लीजिए। और चबूतरा निर्माण पूर्ण करने के पहले आपको पराकलन मिल जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा किस प्रकार से वो बनना है और कैसे कैसे आपको कितने एरिया में बनाना है और वो चबूतरा किस प्रकार से बनेगा, क्या क्या मटेरियल लगेंगे, वो सारा चीज़ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसका नक्शा वगैरह सब आप उसको बनवा लीजिए। बनवाने के पूर्व जो है आप अपने कोऑर्डिनेटर जिसको हम समन्वयक कहते हैं उनको खबर कर दीजिए कि हम बनवाना शुरू कर रहे हैं। जिस दिन बनवाना होगा बनवाने के पहले आपके कोऑर्डिनेटर को आप जरूर फोन करके या बुला करके कह दीजिए कि फलाने तारीख को हम काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस काम शुरू करने के पहले जिला से पदाधिकारी जाते हैं, उनकी उपस्थिति में लेआउट होता है। अगर उनकी उपस्थिति में आप लेआउट नहीं कराएंगे तो फिर आपको अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बात सभी किसान भाई जान लीजिए कि अगर आपको चबूतरा में आपने अप्लाई कर दिया और आपको परमिट मिल गया लॉटरी से, आपका नाम आ गया, तो आप जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन की खबर अपने समन्वयक को देंगे और समन्वयक भाई को कह देंगे कि भाई आपके जिले के जो पदाधिकारी आते हैं उनको कृपया आप बुला लीजिए ताकि उनको उपस्थिति में ही लेआउट कराया जा सके। लेआउट एक बार हो जाएगा, वो फोटो अपलोड हो जाएगा उनके लॉगिन से, तो आप काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। शुरू करके जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दीजिए। जैसे ही आप काम ख़त्म कर देंगे उसका सारा बिल वाउचर जो भी होता है, जो भी उसमें लगेगा, गिट्टी बालू सीमेंट जो भी चीज़ें ईंटें जो भी लगेंगी, वो सारी चीज़ों को बिल वाउचर बनवा करके अच्छे से रखेंगे और सबका बिल वाउचर और अपना आपको जो परमिट मिला है उसकी एक कॉपी, अपना आधार कार्ड, आपका पंजीयन रसीद और आपका बैंक खाता का पासबुक की फोटोकॉपी, सब पे साइन करते हुए सारे डॉक्यूमेंट जो है आप जिला कृषि पदाधिकारी को ला के सौंप देंगे। सौंपने के बाद आपके खाते में जो अनुदान की राशि है वो अंतरित कर दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। इस योजना का प्राकलित राशि जो है वो लगभग 1,14,000 रुपया है या 1,00,000 के आसपास में है, कि मतलब आपका ये मान कर चला जाता है कि वो चबूतरा 20x30 का जो आप बनाएंगे वो चबूतरा आपका 1,00,000 रुपये का बनता है, जिसमें कि आपका अनुदान जो है अधिकतम 25,000 रुपया है। तो योजना स्वीकृत हो चुकी है इस वित्तीय वर्ष में और एक बार चेक भी आप लोग कर लीजिए, हो सकता है अनुदान इसका आवेदन भी शुरू हो गया हो, प्रारंभ हो गया हो, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें और कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस चबूतरे का लाभ आप इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि कहीं पानी घुस गया, अतिरिक्त पानी हो गया, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई, तब इस चबूतरे पर भी आश्रय ले सकते हैं। दूसरा इसका एक फायदा सबसे बड़ा क्या है कि आप इस पे कोई भी फसल को झाड़ सकते हैं। इसको हम लोग कहते तो चबूतरा है लेकिन रियल में इसका नाम है थ्रेसिंग फ्लोर, मतलब फसल झाड़ने का एक स्थल जहाँ पे हम फसल को झाड़ते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, दौनी करते हैं। आप इस पे फसल को थ्रेसिंग भी कर सकते हैं, इस पे फसल को सुखा भी सकते हैं, इस पे आप आश्रय भी ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी योजना है, मैं चाहूंगा कि सभी किसान भाई इसका लाभ उठाइए और जो पैसे आते हैं सरकार हमें खर्च करने के लिए देती है वो किसानों के भलाई के लिए होती है, और जब हम लोग पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, किसान उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और सरकार को हमें वापस करना पड़ता है वो पैसा, तो बड़ा अंदर से तकलीफ होता है कि भाई किसानों का पैसा आया था किसानों के हित के लिए और किसानों ने ही इंटरेस्ट नहीं दिखलाया। तो इस योजना का लाभ लीजिए, आपकी योजना है, आप लोगों के लिए, बस इतना ही कहना था इसमें मुझे, धन्यवाद।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर ने कहा, एक बहुत ही विशेष बात, महत्वपूर्ण बात सर ने कही कि जो भी योजनाएं हैं वो सारी ही लगभग योजनाएं ऑनलाइन हो गई है। तो अगर कोई बिचौलिया आपसे कहता है तो बिल्कुल उनकी बातों में आप ना आए, उनके झांसे में ना आए और जिस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई करें, आवेदन करें और योजनाओं का आप लाभ ज़रूर उठाएँ, आप आवेदन करें। और उम्मीद है कि हमारी आज की इस चर्चा से आपको जो भी ज़रूरी बातें आपको जाननी चाहिए वो आपको पता लगी होगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को बताया चबूतरा निर्माण योजना के बारे में। तो किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें।

0: खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ हम कुछ अलग अलग विषय लेकर आते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलता है इससे, क्योंकि उनकी खेती में आने वाली परेशानियों का हल हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम को सुनकर उन्हें मिल जाता है। तो आज भी एक खास विषय हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, गन्ने की वैज्ञानिक खेती द्वारा आमदनी में आप कैसे वृद्धि करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। और इस विषय को

0: आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। ऐसे समझा जाए कि लगभग 10वां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में। और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है। और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है उसमें भी जो खरपतवार नाशी पौधे के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, उस कठोरता के में भी यह जो है ना बहुत आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खरपतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम नैनो खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है। और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके दूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें। तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे है। और ओवरऑल देखेंगे, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए
0: जी। यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खरपतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है, यह जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है कि मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशिक जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है, तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होता है।

0: चाहिए और दोमट मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, और हमारा जो पीएच होता है उदासीन होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है तो अच्छा रहता है। अगर मिट्टी हल्की है तब सिंचाई का हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए, अगर मिट्टी भारी है तो जल निकास का भी समुचित प्रबंध होना चाहिए। रोपाई का मौसम, जैसे हमारा दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो वहाँ रोपाई नवंबर से लेकर अप्रैल तक करते रहते हैं, पर कुछ इलाकों में जून से अगस्त में भी हम गन्ने का रोपाई करते हैं ना, तो पर जो हमारा बारिश में रोपाई करते हैं वो 12 से 18 महीने का फसल हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो दूसरी भी बारिश देख लेती है तो उसका जो है थोड़ा गुणवत्ता प्रभावित होता है रस का ना। तो और दूसरी तरफ अपने इलाके में नॉर्थ इंडिया में विशेषकर बिहार या यूपी इस तरह में, तो हम तीन समय में गन्ने का खेती कर सकते हैं। एक तो जो है शरदकालीन, शरदकालीन का मतलब यह है कि बारिश जैसे हमारा ख़त्म होगा सितंबर अक्टूबर में हम गन्ने का रोपाई करेंगे, तो इस समय क्या होता है कि पर्याप्त नमी होती है और मौसम भी गन्ने के लिए उपयुक्त रहता है, और फसल का जो अवधि होगा थोड़ा लंबी होगी तो उससे हमको उपज अच्छा मिल जाएगा। पर ये शरदकालीन गन्ने की बुआई सिर्फ टोटल जो गन्ने का बुआई होता है उसमें सिर्फ 15% तक ही होता है, क्योंकि अगर इस समय हम गन्ने की बुआई कर देंगे तो किसानों में ये अवधारणा है कि हमारा रबी के फसल का नुकसान होगा, हम गेहूं नहीं ले पाएंगे, आलू नहीं ले पाएंगे, सरसों नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमारे किसान भाई शरदकालीन गन्ने को थोड़ा अवॉइड करते हैं। पर इस मौसम में गेहूं, आलू, सरसों की अंतर्वर्ती खेती किया जा सकता है शरदकालीन में। दूसरा हम जब करते हैं तो रबी फसल की कटाई के बाद फरवरी मार्च में रोपाई करते हैं, तो ज़्यादातर 80 से 85% गन्ने का जो रोपाई होता है हमारा इसी महीने में होता है, और थोड़ा और देर में थोड़ा बुआई करते हैं गेहूं के कट जाने के बाद अप्रैल मई में भी करते हैं, लेकिन अप्रैल मई में जो हमारा बुआई होता है उसमें नमी का तनाव और ज़्यादा तापमान होता है उससे फसल थोड़ा प्रभावित होती है, उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है।
1: जी। और इसके अनुशंसित प्रजातियों के बारे में बता दें।
0: जी, तो जैसे कि हम अनुशंसित प्रजातियों से पहले ये कहेंगे कि जो हमारा गन्ना होता है, गन्ने के तने को हम काट काट के बुआई करते हैं उसको सेट्स बोलते हैं, तो वो सेट्स का जो है गुणवत्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें रोग, कीट या व्याधि ना हो, उसका जो कली होता है, आई जिसको बोलते हैं आँख, वो स्वस्थ हो और उसमें अधिक नमी हो, पर्याप्त पोषक तत्व हो, ये सब चीज़ उसमें होना चाहिए। और सेट्स को कार्बेंडाजिम 0.1% घोल में उपचारित करके ही सेट्स का बुआई करना चाहिए। और अनुशंसित हमारी जो प्रजातियां हैं बिहार के लिए, इसमें दो तरह की प्रजातियां होती हैं, एक तो जल्दी पकने वाली गन्ने की प्रजातियां और एक जो है देर से पकने वाली प्रजातियां। तो अभी जल्द में ही वैरायटी रिलीज हुई है COLK94184, जिसको हम बीरेंद्र कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए अनुशंसित की गई है, जिसका औसत उपज जो है 76 टन प्रति हेक्टेयर है, और इसमें चीनी भी अच्छा पड़ता है, लगभग 9 टन से ज़्यादा का इसका जो है चीनी प्रति हेक्टेयर ये पड़ता है इसमें। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जलमग्न क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, और इसका रटून जिसको पेड़ी कहते हैं भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी एक प्रजाति है COLK12207, तो ये भी प्रजाति लगभग 75-76 टन प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन हमको दे देती है, और इसका पेड़ी भी अच्छा होती है, और गन्ने में एक रोग लगता है लाल सड़न रोग, इसके ये प्रतिरोधक क्षमता इसके पास होती है, इसमें कम लगता है। तो हमारी जो दूसरी और प्रजातियाँ हैं, जैसे देर से पकने वाली गन्ने की प्रजातियाँ हैं, तो COLK8102 ये जो प्रजाति है ये अच्छा उत्पादन देती है, लगभग 78 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उत्पादन हो जाता है, और कल्ले भी अधिक निकलते हैं, और पेड़ी के लिए ये प्रजाति बहुत ही उपयुक्त है, और इस प्रजाति में लाल सड़न रोग नहीं लगता है ना। और दूसरी एक जो बात है, इसमें सूखा सहन करने की भी क्षमता है, और यह प्रजाति बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित की गई है
1: जी।
0: तो किसान भाई इसको भी कर सकते हैं। एक दूसरी और जो प्रजाति है COLK12209, इस प्रजाति का भी औसत उत्पादन 78 टन प्रति हेक्टेयर है, और ये भी पेड़ी के लिए उपयुक्त है, और इसमें जो एक लाल सड़न रोग लगता है जिसको हम लोग रेड रॉट कहते हैं, तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता इसमें कम लगता है, और यह भी यूपी और बिहार, झारखंड इस इलाके के लिए अनुशंसित की गई है।

0: डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा था कि पोषक तत्व प्रबंधन होना चाहिए गन्ने की खेती हम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम पोषक तत्व प्रबंधन गन्ने में?
1: गन्ने में जैसा कि है कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम हमारा पोटास प्रति हेक्टेयर इधर से अनुशंसित किया गया है, तो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तो हम बुआई के समय कूट में ही डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देते हैं, और हमारा जो नाइट्रोजन है उसको हम तीन भागों में जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला जो भाग होगा उसको हम बुआई के समय ही दे देंगे, और बाकी जो बचा भाग होगा तो एक कल्ला निकलने के समय ना, तो ये लगभग 50 से 60 दिन में कल्ला निकलने लगता है, फिर वनस्पतिक वृद्धि होने लगती है 120-125 दिन में ना, तो कल्ले निकलते समय और वनस्पतिक वृद्धि के समय जो है बचा हुआ दो भाग नाइट्रोजन का हम इसमें देते हैं। अगर गन्ने का पेड़ी है तो उसमें हम जो है 25% और ज़्यादा अतिरिक्त नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए।
0: जी, तो ये बातें हुई पोषक तत्व प्रबंधन की, लेकिन पोषक तत्व तभी हमारे जो फसल है उन्हें पूर्णता मिल पाएगा जबकि खरपतवार का हम प्रबंधन करें, तो कैसे करेंगे हम खरपतवार का प्रबंधन गन्ने की खेत में?
1: जैसे कि अगर शाकनाशी का प्रयोग हमको बाद में ही करना चाहिए, पहले और दूसरे ऑप्शंस को देखना चाहिए। एक ब्लाइंड होइंग होती है, अंधी गुड़ाई जिसको कहते हैं, उसको अगर हम करेंगे तो खरपतवार जो है वो समाप्त हो जाएंगे और हमारे गन्ने को उसमें एरेशन होगा ना, प्रॉपर हवा उसमें मिलेगी जड़ में उसके। और इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि इंटरक्रॉपिंग करेंगे ना, अंतर्वर्ती खेती करेंगे, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। और अंत में अगर खरपतवार की समस्या हो तो हम 2,4-D जो है आधा किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1,000 लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं, और ये 60 से 90 दिन तक इसका कर सकते हैं, 60 से 90 दिन तक इसको हम 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और हर्बिसाइड है अटराजिन जिसको बोलते हैं हम लोग, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम 1,000 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना के बुआई के 3 दिन के अंदर ही कर लेते हैं, हम 3-4 दिन के अंदर में छिड़काव कर लेते हैं ना, तो उससे भी हमको खरपतवार नियंत्रण में राहत मिल जाती है।
0: जी जी, अभी आपने इंटरक्रॉपिंग की बात की अंतर्वर्ती फसलों के, तो ये तो की जा सकती है, तो कौन कौन से फसलों का हम चयन करें अंतर्वर्ती फसलों के रूप?
1: जैसे हमारा जो शरतकालीन गन्ना होता है अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, तो उसमें अगर हम गन्ने के साथ 2 कतार आलू का या 2 कतार मसूर का या 2 कतार सरसों का अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कम से कम हमको 200 से 250 कुंटल आलू मिल सकता है, 10 से 12 कुंटल मसूर भी मिल सकती है, और 10 से 12 कुंटल हमारा जो है सरसों भी प्राप्त हो सकती है अगर गन्ने के बीच में करेंगे तो इंटरक्रॉपिंग। और अगर हमारा जो है गर्मी के सीजन में जो फरवरी मार्च में हमारा फसल लगाते हैं बसंत कालीन में, उसमें उड़द और मूंग का भी अगर हम 2 गन्ने के कतारों के बीच में 2 कतार का बुआई करें तो 7 से 8 कुंटल हमारा उड़द या मूंग भी हमको मिल सकता है
0: जी,
1: और हमारा गन्ने का उपज भी प्रभावित नहीं होगा।
0: तो चलते चलते एक और सवाल अंत में डॉक्टर साहब की, जो गन्ने में लगने वाले कीट हैं और रोग हैं उनसे कैसे बचाव करें हम?
1: जैसा कि हम इधर भागलपुर में देखा है कि यहाँ पे रेड रॉट बीमारी लगती है, लाल सड़न रोग लगता है, तो इसका लक्षण यह है कि हमारा जो 3-4 पत्ती होती है ऊपर से वो पीली दिखने लगती है, और बाद में देखेंगे ना पत्ती के जो बाहरी सिरा है वहाँ से वो सूखना शुरू करती है और अंदर की तरफ वो सूखती है ना, सूखने लगती है और अंत में वो मतलब मर जाती है, जिसको कहेंगे समाप्त हो जाता है उसका हरापन ना, तो तने का जो प्राकृतिक रंग है वो भी समाप्त हो जाता है। और जब हमारा गन्ने का जो तना होगा, जब तने को 2 बराबर भागों में हम काट देते हैं खड़े, तो उसमें देखेंगे लाल रंग का उसमें जो पित होगा ना उसमें स्ट्रिप्स पड़ी होगी, सफ़ेद रंग का उसमें बैंड्स पड़ा हुआ होगा, और उसमें स्मेल भी आता है, और उसमें इस प्रभावित गन्ने से उसका रस जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसमें हमको सावधानी ये करनी चाहिए बुआई से पहले गन्ने का, हमारा जो सेट्स होगा जो गन्ना हम खरीद कर लाएंगे वो देखेंगे कि इसमें ना हो ना उसके ये बीमारी ना हो, और अगर हम खेती कर रहे हैं उस खेत में लाल सड़न रोग आ गया है तो हमको ग्रीन मैन्योरिंग और धान उगा लेना चाहिए, थोड़े दिन के लिए गन्ने का खेत को बदल देना चाहिए
0: ना,
1: और वैसे ही ये बीमारी जब आ जाती है तो कोई इसका

0: खड़ी फसल में कोई उपचार नहीं है, पहले से ही है कि हम बीज को उपचारित करके बोएं, स्वस्थ हमारा जो है गन्ने का सेट्स हो, तो यही ज़्यादा अच्छा इसमें है
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों और श्रोताओं, इस प्रकार आप गन्ने की खेती करते हैं तो डेफिनेटली आमदनी में वृद्धि ज़रूर होगी। और आगे चलते हुए आप सभी से फिर एक अलग विषय के साथ मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद
10: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे

0: कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर क्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का

0: जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों,

सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

इसे हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है
1: अच्छा,
0: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
1: मतलब
0: तैयार होती
1: वैरायटी
0: है।
1: टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
0: जी, अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की
1: लाइन की
0: दूरी,
1: दूरी
0: और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस
1: अच्छा
0: प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
1: संभावना होती है।
0: बड़ी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया और क्यारियों के जो दूरी है एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए।
0: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और
1: हाँ
0: पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
1: अच्छा
0: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको, जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं, लास्ट जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में, मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा
0: और इसके अलावा जो एक खरपतवार, जो खाद की जो मात्रा होती है वो, एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 80 80 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश जो है वो आपके मुख्य खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद, जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए, और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में। और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको 2 भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद, आपने जब रोपाई कर दिया रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद, मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छा इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं गोभी की फसल में, अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है, जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो

0: उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है। तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस के लिए, जो हम फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती हो सकती है। तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फास्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगा। और तीसरा जो है बोरॉन, बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा
1: मिल
0: मिल
1: जाएगा।
0: सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे, विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
0: जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा, जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी थी चाहिए। मुख्य
1: हाँ,
0: सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। और
1: अच्छा।
0: दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प, पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले, स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से
1: नियंत्रण
0: नियंत्रण
1: मिल
0: हो
1: सकता
0: सकता
1: है।
0: है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरी इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अब अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो
1: जी
0: फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है। तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और
1: अच्छा।
0: काटने के लिए एक चीज़ का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी फूलगोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूलगोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो
0: हाँ,
1: काट रहे हैं वो
0: जब भी उसको
1: काटनी।
0: काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल को है
1: बैलेंस
0: वो
1: बना
0: कम से,
1: रहता है।
0: हाँ,
1: हाँ।
0: वो फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहरी में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज़्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे। तो इसलिए सुबह
1: सुबह
0: या
1: या
0: शाम में
1: शाम।
0: करनी चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात है कि

0: के चार पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा। अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका रंग
1: ताजा
0: तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
1: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
0: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं, और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में 2-3 तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी।
0: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किसमें उगाएं, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विपटेल।
1: अच्छा,
0: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विपटेल होता है एक मॉलीबिडनम की कमी से।
1: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विपटेल?
0: हाँ, विपटेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है।
1: अच्छा,
0: तो उसको विप टेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज़ करना है।
1: अच्छा,
0: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको, जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूलगोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया,

0: कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
1: नुकसान
0: वो फूल
1: पहुंचाते हैं।
0: देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो
1: अच्छा।
0: इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडाक्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडाक्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ML को, 0.1 नहीं, 1 ML को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव
1: छिड़काव
0: करना है।
1: करना।
0: 1 ML दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, या तो
1: अच्छा।
0: फॉर्मल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं, तो आप उससे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला
1: अच्छा।
0: गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएं होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए, और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो
1: जी।
0: चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को
1: बचा
0: बचा सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देश को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहाँ पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं, तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा।
1: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
5: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
1: मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
5: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
1: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताया, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
5: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया हैं उसको और भी सरल बनाना और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
1: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
5: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण

0: मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
1: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
0: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
1: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
0: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे टीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया। इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे, उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण के तरफ जाएंगे जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा

0: जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका उनके विचार का मूल्यांकन होता है, तो वो देखते हैं। अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है। फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो हैं कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहाँ पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह 8 चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम आपने 8 चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो 6 चरण से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम 6 स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं। हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता 6 स्टेज होते हैं, 6 चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती

0: जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया। ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर।

को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेल।

0: जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
1: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं।
0: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि जहाँ अभी हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, एनजीओ के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी, ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायोकैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है। तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है, दूसरी चीज़ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है, दूसरी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं, तो उनको भी लाभ होता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है, उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहाँ हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहाँ भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस ओर से, इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बुन है, और सिलेक्ट जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
1: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और साथ ही अगर इसे एक रोजगार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, और सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SK चौधरी सर। सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद मैडम।
6: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है।
7: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा। जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है। आजकल धान का उत्पादन लगभग 9 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा बिहार राज्य में इसकी खेती लगभग 31,00,000 हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70,00,000 टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है। इसके कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है। धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा। हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में।
6: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर खर पतवार का प्रबंधन ना करें तो खर पतवार से किस प्रकार से हानि पहुंचता है हमारे धान के फसल को।
7: सबसे पहले तो खर पतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसलों में खर पतवार से लगभग 15-85% तक का नुकसान होता है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 5 से 15 किलोग्राम स्फुर और 15 से 50 किलोग्राम पोटाश तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7 से 14 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है।

0: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
1: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार, और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार। उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसमें नाम है जो जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं, और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में। इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकोलोना कोलोनम भी कहते हैं, उसके बाद एक सावक होता है जो इकाइनोकोलोना क्रुसिगेली होता है, इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका, इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुरमुर नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं, जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस इत्यादि, ये जो जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
0: तो सर कौन से स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
1: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं, इसके अलावा जो वन साग के जो एमरेंथस होता है, वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावित नहीं करता है।
0: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
1: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो सस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके, अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके। इसके अलावा जो है यांत्रिक विधि है, जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानता धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो सस्य क्रिया विधि है, उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है उसके द्वारा स्प्रे करके, उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार

0: खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पटलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पटलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन, जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है, जहां पर खरपतवार की रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो, ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकाव विधि से बोते हैं। छिटकाव विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकाव विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं, धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है, जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है, ऑयल सीड है, अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1-2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5-10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पटलिंग किए गए धान सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30-40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई, क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में नियत पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास डालना चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा भाग फसल को मिल सके।
1: जी सर, ये तो आपने बताया अलग अलग तरीकों से किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन धान के फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। सर, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि रासायनिक विधि से खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और इस विधि के दौरान कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
0: निश्चित ही रासायनिक विधि बहुत ही कारगर, जितने भी विधि बताए उसमें सबसे ज्यादा कारगर रासायनिक विधि को माना जाता है। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं स्वसमय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है। इसलिए पहले साधारण

0: कारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के कारण समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं, जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे, जो धान में मुख्य तीन तरह के खरपतवार पाए जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार। उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है, जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, जिसको मिंचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड, जिसका मात्रा जो है 400 से 500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमरजेंस जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3 से 4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है बिस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है, जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है, जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका दर होता है और ये 25 से 30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750 से 1500 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर की दर से है, जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर, जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है, जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। यह घास मोथा चौड़ी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय में देना बहुत ही लाभदायक। जो कि एक और भी दवा है जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 2,4-D नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है 0.5 लीटर से 1 लीटर ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है और ये सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो है बहुत से दवा है, जैसे ऑल मिक्स, जो दो हर्बिसाइड दो शाकनाशियों का कम्बिनेशन है, जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है, ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है, जिसमें कि चौड़ी पत्ती मोथा कुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को मारना है, उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है, जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, जिसमें चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों सिर्फ मोथा को ही मारना है, उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है, जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं, जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है, इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है उपलब्ध है, उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिल सकता है।
1: जी सर, सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश यही है, जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत जरूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका

0: आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि का हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें, उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसमें काम करें उसका प्रयोग करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों, जिस तरीके से सर ने बताया उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
11: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
9: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
12: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
9: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
13: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
9: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM।

रंगीन और सुंदर है उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मैलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडा

पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी हैं. जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी. आप हैं मैम केवीके सबौर से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. तो मैम चर्चा शुरू करते हैं. सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है.
1: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है. गेंदा का महत्व बहुत ज्यादा है.

0: आज के डेट में हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफ़ी उपलब्ध है इसके लिए।
1: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
0: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों की गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है, और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार की डिमांड पे, मांग पर, इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
1: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
0: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धित प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पूसा अर्पिता है, पूसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बैंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं, और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं, तो उनके पास अपना पौधा रहेगा, और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है, जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए, बालू की मात्रा रहनी चाहिए, क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है। अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है, जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे, और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे, और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे। और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं, एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
1: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
0: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6-7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है, और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उनसे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है

0: वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है, 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं, तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4 × 4 = 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है, और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है, और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर, 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं, मिट्टी चढ़ा सकते हैं, और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें, मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है, और नाले में सिंचाई करें। नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है, और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें
1: जी मैम,
0: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है, लगभग फूल की का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं, और सबसे बड़ा इस पहलू इसका जो सबसे कमज़ोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में, कि यहाँ का जो बाजार है, भागलपुर का जो बाजार है फूलों का बाजार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है, क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाजार पर कलकत्ता के ही बाजार का कब्जा था, और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है, लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं, और जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा, और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है।
1: जी मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें, क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है, और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसकी लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है, और वो अरका भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं, IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र, और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
1: जी मैम,
0: और वो उसको करना प्रारंभ कर दें, और पैसे की कमी नहीं है इसमें
1: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए, और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाज़ार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए, और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए, और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू उमा।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी

0: छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
9: हेलो नमस्कार, हाजिर हूँ मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आप सभी के बीच। किसान भाइयों, श्रोताओं, और आपका सादर अभिनंदन है 90.8 FM ग्रीन पर। वैसे श्रोताओं, अभी बात करते हैं यहाँ पर किसानों के लिए। हर रोज हम लेकर आते हैं कुछ अच्छी बातें और उन्नत कृषि कार्यक्रम खास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए ही पेश होता है। तो जी हाँ, अब यहाँ पर खेती किसानी और फसलों की बात तो होती ही है, और कई बार हम जानते हैं कि कैसे हम फसलों को उगाएं और अच्छे तरीके से उगाएं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। लेकिन जहाँ तक बात है कि हम उन चीज़ों का कैसे ख्याल रखें जो खेती में काम आते हैं, जी हाँ, बीज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ना ही उर्वरक की बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ कृषि यंत्रों की। तो आइए आज जानेंगे कृषि यंत्रों के रखरखाव के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंजीनियर अशोक कुमार जी, और ये हैं कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो आप सभी को बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में कृषि यंत्रों का रखरखाव इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद।
9: और सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम कृषि यंत्रों का चुनाव करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
11: कृषि यंत्रों का चुनाव करते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम, मशीन खेती के कार्य को करने में संतोषपूर्ण ढंग से सक्षम हो। दूसरा, मशीन में लगने वाली ऊर्जा या शक्ति का भरपूर उपयोग कार्य करने के लिए होना चाहिए, जिससे उसकी कार्य कुशलता अधिक से अधिक मिल सके। तीसरा, मशीन चलाने के लिए कम से कम व्यक्तियों की जरूरत हो। चौथा,

0: यंत्र की बनावट मजबूत हो ताकि उसको कई साल तक प्रयोग में लाया जा सके। पांचवा, यंत्रों की मरम्मत का खर्च कम से कम हो, उसे स्थानीय कारीगर से कराया जा सके, उसका रख रखाव भी अत्यंत आसान हो। छठा, मनुष्य में सुरक्षा के प्राप्त प्रबंधन हो जिससे कम से कम दुर्घटनाओं की संभावना रहे। और सबसे अंतिम बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मशीनों की गुणवत्ता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए मशीन प्रसिद्ध निर्माता या उसके प्रतिनिधि से खरीदी जानी चाहिए और उस पर ISI का निशान लगा हो तो जो कि उसकी गुणवत्ता की गारंटी होती है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर मशीनों को खरीदा जाए तो बहुत बहुत बढ़िया होगा, लाभदायक होगा।
1: वैसे डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अगर खेती की बात ना करें तो वैसे जब मशीन होते हैं, यंत्र होते हैं, जब उन्हें हम यूज़ में लाते हैं तब उनका खास ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है कृषि यंत्रों की, तो उनका जो उनके उपयोग में लाने से पहले भी इनका रखरखाव बहुत ज़रूरी है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कृषि यंत्रों को उपयोग में लाने से पहले इनका रखरखाव कैसे करना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात है कि यंत्रों का जब हम प्रयोग में लाते हैं तो सर्वप्रथम कुछ हम उसका मुआयना करते हैं, जैसे कि मशीन का हर भाग निरीक्षण करके वो ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इसकी हमको जांच कर लेनी चाहिए। यदि कोई नट बोल्ट या पुर्जा टूटा हुआ है या अपने से अपने जगह पर वो नहीं है तो उसे बदल कर मरम्मत करवाएं। मशीन का जो भाग चलते चलते घिस जाते हैं उसे थोड़ा शार्प या फिर धार कर लेनी चाहिए। मशीन के उचित गति से कार्य करने के लिए मशीनों में आवश्यक एडजस्टमेंट समायोजन, जिसको कह सकते हैं आप, कर लेने चाहिए। मशीन के ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए कुछ यंत्रों को प्रयोग करने से पहले परीक्षण करना होता है और आवश्यक फेरबदल करने पड़ते हैं। जैसे सीड ड्रिल, जिसे भी आप लोग जानते हैं कि बीज की बुआई कर सकते हैं हम, तो उसमें हम लोग बीज की मात्रा ठीक से गिर रहा है कि नहीं उसका भी समायोजन करना पड़ता है। इसी प्रकार से दवा छिड़कने वाले मशीनों का भी समायोजित करना पड़ता है। अच्छा। ट्रैक्टर द्वारा चालित मशीनों का प्रयोग करने के लिए ट्रैक्टर के ब्रेक आदि को ठीक प्रकार से देख लेना चाहिए। उसे PTO, पुल्ली तथा अन्य आवश्यक पुर्जों का समन्वय ठीक तरह से होनी चाहिए।
1: तो इस तरीके से इसे उपयोग में लाने से पहले इसका रखरखाव करना चाहिए। और जब बात आती है कि ये जब उपयोग में रहते हैं, उस अवधि में रहते हैं, उस उपयोग के समय में इनका रखरखाव कैसे करनी चाहिए?
0: जी बिल्कुल, जब इनको जब चलाया जाता है तो उपयोग के दौरान भी कुछ बातें को ध्यान रखने से उसका जो जीवन है बढ़ जाता है। जैसे कि मशीन के साथ काम करने वाले व्यक्ति को चोट लगने से बचाने के लिए संभावित सुरक्षा उपयोग कर लेनी चाहिए। मशीन के सभी घूमने वाले हिस्से को तार की जाली आदि से ढक लेना चाहिए। अगर मशीन में ये हिस्से लगे हैं तो उनको हटाना नहीं चाहिए, अन्यथा अनजाने में चालक के शरीर का कोई भाग मशीन की चपेट में आने से दुर्घटना हो सकती है। थ्रेसर पर अधिकतर दुर्घटनाएं इसी प्रकार की होती है। मशीन को निर्धारित गति पर ही चलाना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। यदि कम गति से चलाएंगे तो कार्य क्षमता कम हो जाएगी, यदि अधिक गति से चलाएंगे तो मशीन के टूटने फूटने की संभावना रहती है।
1: अच्छा।
0: इसके बाद यंत्रों को घूमने वाले पुर्जे को घिसने से बचाने के लिए समय समय पर निर्धारित तरह के तेल व ग्रीस लगाते रहने चाहिए, इससे उनके बीच घर्षण कम हो जाता है। चालक अपनी सीट पर ही उचित ढंग से बैठकर काम करें, उसे अपनी सीट पर खड़े होना या चलते हुए मशीन की सीट से उतरना नहीं चाहिए, इससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि मशीन के चलते समय उसके किसी भाग का निरीक्षण करना हो तो पहले मशीन को बंद कर दें, फिर मशीन को हाथ लगाएं। यदि मशीन शाम के समय काम में लाई जा रही है तो मशीन के पास रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, उचित रोशनी के अभाव में दुर्घटना होने के अवसर रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई मशीन खेतों में चला रहे हैं। तो
1: ये तो बात होगी उपयोग के समय कैसे रखरखाव कर सकते हैं। अब बाद की बात कर लेते हैं, यानी कि उपयोग के बाद इनका जो रखरखाव है वो किस तरीके से करना चाहिए।
0: उपयोग कृषि यंत्रों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसके बाद ही बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि उस मशीन का उसका जो जीवन है बढ़ जाता है। किसान क्या करते हैं, मशीन को

0: यूज करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे उसका मशीन खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कुछ बातें हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम, यंत्र का प्रयोग करने के बाद प्रतिदिन ठीक प्रकार से साफ कर लेना चाहिए, ताकि धूल मिट्टी आदि उसमें से निकल जाए। खास तौर से मोटर, थ्रेशर, सीड ड्रिल आदि के लिए यह जरूरी है ये सब करना। सीड ड्रिल आदि के उपयोग के बाद टंकी व अंदरूनी भागों को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से यंत्र की सेवा आयु बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
0: दूसरा, मशीन को अच्छी तरह साफ करके शेड यानी कि छाया के अंदर सूखी स्थान पर रखें। मशीन के जिन भागों को नुकसान पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती है उनको निकालकर अलग सुरक्षित स्थान पर रखें। कृषि यंत्रों एवं मशीनों के नट बोल्ट, वाशर आदि को प्रतिदिन देखना जरूरी है। यदि कोई नट बोल्ट ढीले मिले तो उसे कस देना चाहिए, या फिर कोई वाशर कट गया हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। मशीन में तेल, पानी बदलने का उचित प्रबंध होना चाहिए। ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइंड आदि में यह अति आवश्यक है। गियर बॉक्स, इंजन तथा एयर क्लीनर में तेल का माप देखते रहना चाहिए। यदि कम हो या बदलना हो तो उचित किस्म के तेल से पूर्ति करनी चाहिए। मशीन को रेडिएटर में पानी का उचित प्रबंधन रखना चाहिए, इससे मशीन के कार्य के बीच में रुकावट नहीं आएगी। रबर के पहियों में हवा का दबाव भी ठीक प्रकार से है कि नहीं, उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। मशीन तथा यंत्रों के घूमने वाले हिस्सों में यथा समय तेल या ग्रीस लगाना चाहिए। अगर बरसात के मौसम में नुकसान से बचने के लिए मशीन के धातु वाले हिस्सों को जंग प्रतिरोधी पेंट से रंग कर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। जिन मशीनों में रबर के पहिए हों उन्हें जमीन से ऊंचा इस प्रकार रखें कि पहियों जमीन से ऊपर रहे। मशीन के नीचे लकड़ी या पत्थर लगाकर स्थिर कर दें, जिससे उसके गिरने का अंदेशा न रहे और बच्चों तथा जानवरों के साथ दुर्घटना न हो सके। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए किसान अपने कृषि यंत्रों का उपयोग के बाद उसको अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो आपने सुना किसान भाइयों कि किस तरीके से आप जब उपयोग में लाते हैं इन यंत्रों का, तो आप रखरखाव कर सकते हैं। उपयोग के पहले आप रखरखाव कर सकते हैं और उसके बाद रखरखाव कर सकते हैं। अगर आप उपयोग करते समय रखरखाव कर रहे हैं तो यहाँ पर सावधानियों के बारे में भी आपको सर ने बताया, और आपको बता दें कि आप इन यंत्रों का रखरखाव कर पाएंगे तभी आप अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल भी खेती में कर पाएंगे। तो आज यहाँ पर हमारे साथ थे इस विषय पर चर्चा करने के लिए, कृषि यंत्रों का रखरखाव जो हमारा विषय था, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ थे इंजीनियर अशोक कुमार जी, और ये थे कृषि अभियंत्रण विभाग से। तो आज के लिए सर आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे किसान भाइयों को भी हम बताना चाहेंगे। तो अगली बार अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर, तो सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का

0: 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
3: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
10: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
11: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
4: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा,

0: ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखें, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना है कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया

0: जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पर ऊँचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहाँ पर ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन

0: सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार,
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति

0: 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है, आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है, खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती

हैं उनमें तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आपको अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जरूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, B, C, D, E जो भी जरूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है, आपका मूड कैसा होगा। अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती है, उनका मूड कभी काफी अच्छा रहता है, कभी काफी खराब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है, तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन B, C, D, E और बहुत सारे जरूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे
सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए कोई काम कर लीजिए। धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं।

बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठ के रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं कुछ भी करें वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीजों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें। और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगे ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहें 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीका।

0: के बच्चों की पीको से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमारा यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और जी हां, हम लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी उपयोगी बातें। तो आज भी एक ऐसे ही विषय को हम अपने उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं, और हमारा विषय है मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का पहचान एवं इनका नियंत्रण। और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, और सर वैज्ञानिक हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये मक्के में किस सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अमूमन आप किसान भाइयों, जो हम लोग बिहार में देखते हैं कि दो सीजन में मक्के लोग लगाते हैं, एक अभी जो लगाए होंगे खरीफ सीजन में जो इनका अभी चल रहा है, और दूसरा जो है कि रबी सीजन में लगाते हैं। तो उनका जो है वितरण अलग अलग ज़िले में लोग अलग अलग जिनको जैसा लगता है वैसे लगाते हैं। तो ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये आप किसान भाइयों में इसको पहचानने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कीट है एक तना छेदक होता है, तो तना छेदक के जैसा ही ये मिलता जुलता है। लेकिन दोनों में तुलना करना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए कि अगर तना छेदक आपका लगा हुआ है तो उसके लिए अलग उसका नियंत्रण होता है, और फॉल आर्मी वर्म अगर लगा हुआ है तो उसके लिए आपको अलग से उसका नियंत्रण के उपाय करने होंगे, कीटनाशक देने होंगे। तो सबसे पहले दोनों को आपको समझना है कि कैसे इनका कैसे नियंत्रण होता है या कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब तना छेदक मुख्यतः जब होता है, तो आप देखेंगे कि या आपके मक्के के जो पौधे हैं, जब घुटने या उसके नीचे भी जब रहता है, तो आप देखेंगे कि जो मक्का के जो पत्तियां हैं उसमें लाइन से तीन आपको गोला गोला कटे हुए का निशान दिखेंगे। तो ये तना छेदक के चलते हो सकता है। और आप जब देखेंगे कि जो उनका जो बढ़वार होने वाला जो पोजीशन होता है, या जिसको हम लोग मक्के का कंठ कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हो सकता है कि कुछ जो इसके जो शिशु होते हैं वो तनाछेदक के वो उसमें मिलेंगे आपको। तो ये है तनाछेदक का। और ये जो तनाछेदक है, मतलब आपके फसल को थोड़ा धीमी

रफ्तार से क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर फॉल आर्मी वर्म से अगर आपके पौधे अगर आक्रांत हो जाते हैं तो ये आपके पौधे को बड़ी तेज़ी से क्षतिग्रस्त करते हैं, और साथ ही में ये जब आपके मक्के का जो कंट होता है ये भी उसी में छुपे हुए रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये अपना स्क्रीटा या कहें कि उत्सर्जन जो इनका छोटा छोटा जो जैसे कि केचुआ का जो जो बिष्टा होता है मल होता है उसी टाइप से इसके छोटे छोटे आपके उसके कंठ में दिखाई देंगे कि पड़ा हुआ जो काले कलर का मुख्यतः होता है। साथ ही में ये फॉल आर्मी वर्म जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब मुख्यतः जैसे कि दो सीजन में हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग मक्का लगाते हैं, तो अमूमन देखा गया क्या कि ये जो खरीफ सीजन होता है खरीफ सीजन में इसका प्रकोप रबी के तुलना में जो ठंडे सीजन में हम लोग जो करते हैं उसके तुलना में इसमें इसकी समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके आने के कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण ये है कि इस मौसम में वर्षा होती रहती है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, जो इस कीट के बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा होता है। अब है क्या कि कुछ और कारणें हैं कि उसको कैसे आप पहचानिएगा, कैसे मतलब जो कीट है तो तना छेदक है या फॉल आर्मी वर्म का कीट है उसको आप कैसे पहचानिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको सही से पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसका समुचित उपचार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का आक्रामकता भी हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि अलग अलग है, एक थोड़ा धीमी रफ्तार से आपके पौधे को क्षतिग्रस्त करता है, दूसरा जल्दी जिसमें आर्मी लगा हुआ है। आर्मी का काम आप लोग सब लोग को पता है कि आर्मी अपने काम बहुत तेज़ी रफ्तार से करता है, इसीलिए इसमें आर्मी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसको पहचाने कैसे, तो हम आपको फॉल आर्मी वर्म के बारे में बता रहे हैं। अभी तना छेदक को आप रहने दीजिए, उसको जो जितना हम बताएं लगभग उसे तना छेदक आप पहचान जाएंगे। अब फॉल आर्मी वर्म को कैसे पहचानेंगे, तो ये जो कीट होता है तना छेदक की तरह दिखता है लेकिन ये उससे मोटा और लंबा होता है, साथ में ही इनके जो शरीर होता है उस पे काले धारियां आगे से पीछे तक मतलब सर से उसके पूंछ तक काले धारियां रहती हैं। अब एक चीज दो चीज़ और है जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसका जो जिधर जो मुंह होता है या अगला हिस्सा में, तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो इंग्लिश का उल्टा वाई इसके माथे पे निशान होता है, जैसे हर जैसे कि किसी किसी पशु है या जो भी है उस पर कुछ ना कुछ निशान होता है हम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से इसमें जो उल्टा वाई का निशान होता है इसके आगे वाला पोर्शन जिधर सर बोलते हैं उस साइड में, और जब पीछे साइड में जब आप आएंगे तो पीछे साइड में इसके चार काले काले धब्बे होते हैं जो बड़ी आसानी से आप ऐसे ही आँख से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ इसके पहचानने का। अब दूसरी बात क्या है, ये जो पहचानने का है तो इसमें लगभग नहीं 6 इन स्टार होते हैं। अभी आप बताएंगे कि इन स्टार क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जो बच्चे होते हैं तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद वो पहले सोया रहता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर खड़ा होने के बाद वो रफ्तार से चलने लगता है। तो जब तक वो तो ये अलग अलग उनके फेज है हमारे जो मनुष्य हैं उनके बच्चे का, इसी तरह से इस कीट के भी 6 फेज है। तो 6 फेज में जो उनका जो फेज 1 होगा या 2 होगा तो वो अंडा के बाद जस्ट अंडा के बाद जो निकलने वाला वो उसका अवस्था होता है, फेज इंग्लिश में बोले अवस्था होता है। तो उस कंडीशन में उस कीट का साइज छोटा होगा, और साइज जब छोटा होगा तो उसी रफ्तार में वो आपके फसल को भी उस समय में थोड़ा धीमा धीमा रफ्तार करेंगे, और उसको कंट्रोल भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब यही कीट जब है खाते खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीट

खांसी है उसे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया, अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को, मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब चार पांच पत्तियों का हो या कह लें कि एक महीने के जब आसपास होता है उसके आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है। और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं। और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह, जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज़ होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है उस टाइप से आपके पत्तियां दिखेंगे, जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियां को पूरा जो कंठ वाला है जो बढ़ने वाला है उसको तो खा ही गया, और जो दूसरी जो पत्तियां बची हुई हैं उसको आर पार दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मी बम के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से। साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए तो ये 3 से 4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मी बम है ये जब अगर मक्का अगर क्या पौधा अगर नहीं रहे, जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है, तो ये जो फॉल आर्मी बम है ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रैमनी फैमिली के जो हमारे फसल है तो उन पे भी, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपका ज्वार बाजरा ये सब पे भी ये जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है। अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया, मक्का कोई काट लिए तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पे भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो वयस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80 से 100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो वयस्क हैं उनका। इनका जो जो क्षति करने वाला है ये इनके वयस्क क्षति करते हैं जो चलते हैं, जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का के फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके ओर ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए कि सब किसान भाई मिल करके एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा एक टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरी जगह भी ये मूव करें,
और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आप

को दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मी वर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में, खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे, इसका उपचार कैसे करें, तो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बढ़वार ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बढ़वार होता है। उसके जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है, और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है। इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है, ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है, लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है, और इन सारी चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपका प्रकोप होता है, तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्लीनुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है। मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर, तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है। दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है, तो दो कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोहोल 3.9%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में आपको डालना है, मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोहोल 3.9% का देना है। और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें जो है कोई
जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है ताकि वो आपके सर्विस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है।

0: और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम। स्पाइनोटोरम 11.7%, इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टिकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है ये फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को कर करके आप अपने जो मक्के की जो फसल है उसमें कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं अभी आपने फॉल आर्मी वर्म के बारे में जाना और ये कीट की पहचान हम कैसे करेंगे इस कीट की और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम।

0: धन्यवाद उमा, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: मैम, सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।
0: बिल्कुल, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएं हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं तथा 48% जो महिलाएं हैं वह स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40-45% से भी अधिक होती है और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
1: जी मैम,
0: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं ये तेजी से हो रहा है और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है बल्कि वो एक उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय हैं और पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
1: मैम, आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है, लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
0: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा, क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है। तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल। और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है जिसमें कि अगर कहें तो 1,000,000 स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है और अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,000,000 से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
1: तो मैम, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
0: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जानें तो इसका इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया, महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं और इनसे उनका आंतरिक ऋण, बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें जो हमारी महिलाएं हैं तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम बकरी पालन हो गया या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात जैसे अचार, पापड़, मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सामूहिक खेती हो गया या इनपुट के माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी या स्वास्थ्य या पोषण और शिक्षा में सुधार ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो

0: स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
1: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
0: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार है वो बहुत पहल चलाती हैं, और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएं बचत करती हैं और आपस में ऋण भी ले लेती हैं, और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है सामूहिक खेती इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से स्तर को देखें और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य ना केवल शिक्षा और शोध है बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुँचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं या मधुमक्खी पालन के ऊपर या जैविक खेती, ऐसे पशुपालन, ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक, धान उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पर जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं। तो विश्वविद्यालय FM रेडियो जैसे 90.8 FM ग्रीन है और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है महिला सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयासरत है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है, और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपने बताया, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि न केवल हमारा राज्य बल्कि हमारा अपना विश्वविद्यालय भी इतने अच्छे प्रयास कर रहा है। तो मैम, क्या इन पहलों का या इन प्रयासों का कोई प्रभाव दिख रहा है?
0: बिल्कुल उमा, इन पहलों से महिलाओं की आय भी बढ़ी है और वो आत्मनिर्भर भी बनी है, और अब वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुँच है वो बढ़ी है, हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो, और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में, और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
1: तो मैम

0: भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौतियाँ भी होती है, तो क्या चुनौतियाँ भी सामने आती हैं?
1: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी उसके फ़ायदे होते हैं, उसके चुनौतियाँ भी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियाँ भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है, और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है। तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है, और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है, वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके, और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं, तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
0: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं, और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं, और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं
0: जी।
1: और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए, तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है, ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं, और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं, इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें, और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी, बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
0: जी मैम, धन्यवाद। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की, वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद उमा।
0: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही

0: टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अर्का निशांत, इन प्रभेदों की

0: बुआई कर ले, बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखे और बुआई 25 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करे।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोग

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओ, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज

अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहें लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि यह काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं, जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं। साथियों, वो था ग्रेफाइट यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था, हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे। यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ा कर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB। तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक। इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना?
जी। तो श्रोताओं,

ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों

साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं, पर हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूँ माँ।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी माँ, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर, सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह, निशाना साधो।
5: ठीक है जी।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर!
4: सर,
3: ये तो गया, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर!
4: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, ज्यों-ज्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस

0: ना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: सीमा
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।